मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:56:40 हुए हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा। मैं हूं श्रोताओं, इस सभा में आपके साथ जितेंद्र कुमार। सभी श्रोताओं को नमस्कार, शुभ प्रभात।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड

0: की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं समूह स्वर में ये देशगान।

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम की ये अगली प्रस्तुति, हरिओम शरण, और साथियों के स्वर में ये हनुमान चालीसा।

श्रोताओं, पंडित कुमार गंधर्व को अभी आपने सुना इस रचना में। आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया ये भजन।

श्रोताओं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति सुनी प्रदीप चटर्जी और साथियों के स्वर में ये भजन।

0: श्रोताओं, इस भजन के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी ही संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है चिंतन। आलेख डॉक्टर सत्या शुक्ला का है, वाचन आभा गुप्ता का।
1: आज हमारा समाज वैचारिक क्रांति के दौर से गुजर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में अनेकानेक विसंगतियां, विद्रूपताएं हमारी कार्य पद्धति और जीवन शैली को प्रभावित कर रही हैं। सामाजिक समरसता एवं सौजन्यता का अभाव होने से पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती प्रतीत हो रही है। इनके विघटन का रौद्रिक स्वरूप काष्ठ में लगे हुए घुन की तरह हमारी पुरातन परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था को विनष्ट करता जा रहा है। दोहरे मापदंडों के आगोश में आकर व्यक्ति अपने स्नेहिल बंधनों को जर्जर कर रहा है। ये विषाक्त जीवाणुओं के सदृश आक्रामक होकर हमारी जीवन शक्ति को ही मृत प्राय करने में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करते हुए नजर आ रहा है। व्यक्ति का दोहरा चरित्र अर्थात कथनी करनी में दोहरे मापदंड ही वे अग्रगण्य पहलू हैं जो हमारी युवा पीढ़ी में ही नहीं बल्कि प्रौढ़ भी इसकी चपेट में आकर अपने जीवन मूल्यों, अपने चारित्रिक गुणों का ह्रास करते चले जा रहे हैं। नारी पुरुषों के सामयिक व्यवहार, सामाजिक शोषण, व्यक्तिगत प्रवंचना दोहरे मापदंडों की ही मूल प्रवृत्ति है। कन्या भ्रूण हत्या, नारी विमर्श आदि इन्हीं दोहरे मापदंडों की देन है। हमने अपनी पूर्वात्य संस्कृति को भुलाकर पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण शुरू कर दिया है। हमारे धर्म ग्रंथ, महापुरुषों के आदर्श जो लोकोपयोगी बनकर एक ज्वलित मशाल के रूप में हमारे समाज के मार्गदर्शक हुआ करते थे, आज न जाने किस अंध गुफा में सिमट कर रह गए हैं। स्वार्थपरता, जड़ता, हीनता के भयावह सर्प आज मुक्त होकर अपने फन फैला रहे हैं, जिसकी विषाक्त परिणति दोहरे मापदंडों के रूप में हमारे समाज को तहस नहस कर रही है। यदि समय रहते हम जागृत नहीं हुए तो हमारी राष्ट्रीय विचारधारा

0: धारा का प्रवाह अवरुद्ध होकर हमें मानसिक रूप से कुंठाग्रस्त बना देगा, जिसका परिशोधन एवं प्रक्षालन करना यथासंभव नहीं हो सकेगा। प्रत्येक क्षेत्र में मत वैभिन्न, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रताड़ना दोहरे मापदंडों का ही प्रतिफल है। हमारा भारत पुरातन समय में जगत गुरु के रूप में मान्य था, परंपराएं श्रेष्ठता के चरम शिखर को चूमती थीं, लेकिन आज दोहरे मापदंडों ने व्यक्ति के मुखौटे को ही बदल कर रख दिया है। दोहरे मापदंडों से हमारा प्रबुद्ध वर्ग विद्वान मनीषी शुद्ध हैं और अपनी अंतर्भावनाओं को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि इस वैमनस्य पूर्ण जीवन से मुक्ति मिल सके। हमारी दोहरी मानसिकता, जिसे भले ही हम अभिव्यक्त करना न चाहें, हमारे आचार व्यवहार, हमारे चेहरे मोहरे को विकृत बनाए हुए है, जिससे मानव संवेदनहीन होकर पारिवारिक और सामाजिक ढांचे को ही ध्वस्त करने में लगा हुआ है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। भारतीय संस्कृति के पोषक तत्व इसी आधारहीन जीवन के कारण अपनी गुणवत्ता को भुला चुके हैं। आवश्यकता है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति, शिक्षक गण एवं अभिभावक नैतिक शिक्षा को प्रारंभिक जीवन का आधार मानकर तदनुसार शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार कर उस पर अमल करें, तो हमारी मानसिक प्रतिबद्धता और संपूर्ण सामाजिक परिवेश ही विशुद्ध सात्विक विचारधारा में बदलेगा और लोक कल्याण की भावना जागृत होगी।
1: दोहरे मापदंड विषय पर चिंतन में अभी आपने सुना डॉक्टर सत्या शुक्ला के विचार, वाचन आभा गुप्ता का था। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:35 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से भक्तिमय पाठ।

माया नगरी के राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्रीहरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के दो मनमौजी गण भी थे जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था शिवजी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेर कर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूलकर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिवजी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिवजी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो। फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना।

0: श्रोताओ, ये थी आज की श्री रामचरित मानस से संगीतमय प्रस्तुति। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज जानकारी का विषय है वैज्ञानिक विधि से पपीता पौध रोपण। जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, खेती के साथ साथ दूसरी सहायक व्यवसाय जो खेती पर आधारित हैं, पशुपालन, मछली पालन, फलोत्पादन अपनाने चाहिए। यह समय की मांग भी है और हमारी आवश्यकता, क्योंकि जब हमारी धान फसलें किसी कारणवश असफल हो जाती हैं तो आय का कुछ न कुछ स्रोत हो। फलोत्पादन में हम पपीता का उत्पादन कर सकते हैं। पपीता के लिए यहाँ की जलवायु और भूमि दोनों ही उपयुक्त है, इसलिए पपीता उत्पादन काफी लाभप्रद व्यवसाय हो सकता है। पपीता में विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी तत्व और अनेक खले लवण प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके कच्चे फलों का उपयोग पेठा और पपेन बनाने में किया जाता है। पपेन का उपयोग एल्कोहल तैयार करने और बहुत सी बीमारियों के उपचार में भी किया जाता है। इसलिए पपीता की खेती का व्यवसाय आर्थिक और औषधीय दृष्टि से काफी लाभदायक है। पपीता के लिए अच्छी दोमट भूमि जिसमें जल निकास का उचित प्रबंध हो उपयुक्त रहती है। पपीता के पौधे वर्ष में 3 बार लगाए जाते हैं, बरसात के मौसम में अक्टूबर नवंबर और फरवरी मार्च में। पपीता की उन्नतशील प्रजातियां हैं हनी ड्यू, वाशिंगटन, पूसा डेलिशियस, पूसा जैन, पूसा नन्ना। बीज हमेशा प्रमाणित ही प्रयोग करें। नर्सरी डालने के लिए 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारी बना लें। क्यारियां जमीन से कुछ उठी हुई बनानी चाहिए। नर्सरी में पर्याप्त मात्रा में जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। नर्सरी में पौधों में कभी कभी फफूंद जनित बीमारी डैम्पिंग ऑफ लग जाती है, इससे छोटे पौधे मरने लगते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए नर्सरी की मिट्टी को फार्मेलिन से उपचारित कर लेना चाहिए। साथ ही बीजों को फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित करने के बाद ही बुवाई करें। पौध लगाने के लिए 1.5 फुट गहरे चौड़े गड्ढे 3 मीटर की दूरी पर खोद लेना चाहिए। पौध लगाने से पहले प्रत्येक तैयार किए गए गड्ढे में 20 किलोग्राम एक टोकरी पकी गोबर की खाद, साथ ही फास्फेटिक खादें और पोटेशियम खादें प्रति पौधा देना चाहिए। पौधों को कीट और दीमक से बचाव के लिए क्यूनाल फास या फैनवाल चून मिला दें। पपीता के पौधों के बीच में अंतर्वर्ती फसलें मेथी, पालक, मूली, गोभी, धनिया, टमाटर, भिंडी भी उगा सकते हैं, जिससे पौधों में अलग से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पपीता की उन्नतशील प्रजातियां बहुत ही शीघ्र फल देने लगती हैं। पौधों में पुष्प गुच्छों पर अधिक संख्या में फल लग रहे हों तो मध्य

0: भाग से कमजोर फलों को तोड़ देना चाहिए और स्वस्थ फलों को ही रहने दें। पपीता के कच्चे हरे फलों से दूध निकालकर और सुखाकर पपेन तैयार किया जाता है। फलों से दूध निकालने के लिए तेज धारदार चाकू से पूर्ण विकसित फलों में 3 सेंटीमीटर गहरा चीरा कुछ दूरी पर लगा दें। चीरा हमेशा फलों की लंबाई में लगाना चाहिए। दूध को किसी साफ स्वच्छ बर्तन में एकत्रित करके धूप में सुखाना चाहिए, जिससे फलों के अतिरिक्त लाभ कमाया जा सकता है। पपीता के पौधे अधिकतर सीसस से टूट जाते हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। ऐसी परिस्थिति में सीसस भागों पर गोबर का लेप लगाना चाहिए और पौधों में पर्याप्त मात्रा में खादें प्रयोग करनी चाहिए, जिससे पौधों में नई शाखाएं निकलेंगी और फल पौधों पर बनने लगेंगे। पपीता के पौधों में कभी कभी फफूंद जनित बीमारी लगने लगती है, जिससे तना छत बिछत होने लगता है। पौधों को बीमारियों से बचाव के लिए तनों पर बोर्डो पेस्ट से पोताई कर देनी चाहिए, जिससे पौधे स्वस्थ रहेंगे और पैदावार निश्चित रूप से अधिक मिलेगी।
1: श्रोताओं, अभी आपने कृषि चर्चा कार्यक्रम में सामयिक चर्चा सुनी। विषय था वैज्ञानिक विधि से पपीता पौधरोपण। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब सुनिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
1: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: माने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार होंगे।
2: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। वियतनाम देशस्य फुक्वोक द्वीपस्य समीपे जातायाम स्पीडबोट इत्येतस्याम दुर्घटनायाम दिवंगतानाम 15 भारतीय पर्यटकानाम पार्थिवावशेषाः स्वदेशं प्रत्यानीताः। वियतनामस्थेन भारतीय दूतावासेन सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे उक्तं यत् एते पार्थिवावशेषाः हो ची मिन्ह नगरात् वियतनाम विमानयान सेवया मुंबई नगरम अभ्युपगताः। गत शुक्रवासरे फुक्वोक द्वीपस्य समीपे 32 भारतीय पर्यटकान् 4 स्थानीय नौका कर्मचारिणश्च वहन्ती स्पीडबोट इति द्रुत नौका जले निमग्ना जाता। अस्याम दुर्घटनायां 15 पर्यटकाः दिवंगताः। दुर्घटनायां जीविताः 16 जनाः अपि भारतं प्रत्यागताः। एकः पर्यटकः अधुनापि वियतनाम देशे चिकित्सालये चिकित्साम् अधिगच्छति। अस्मिन् मासस्य आरम्भे पश्चिम बंगालस्य तटात् लुप्ता मत्स्यजीविनां नौका बंगालखात्यां निमग्नावस्थायां प्राप्ता। अस्यां दुर्घटनायां 9 मत्स्यजीविनां निधनं सुनिश्चितमस्ति। 6 जनाश्च अद्यापि अन्विष्यन्ते। नौकायाम आहत्य 15 मत्स्यजीविनः आसन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च दुर्घटनाम आलक्ष्य गहनं शोकं प्रकटितवन्तः। तैः दिवंगतानां परिजनेभ्यः शोकसंवेदनाः प्रकटिताः। व्रणितानां शीघ्र स्वास्थ्यलाभाय कामनाश्च कृताः। प्रधानमन्त्रिणा प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय सहाय्य कोषात् प्रत्येकस्य दिवंगतस्य निकटतम परिजनाय 2,00,000 रूप्यकाणां, प्रत्येकस्मै व्रणिताय च 50,000 रूप्यकाणां अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः भारत अमेरिका व्यापार वार्तासु वार्तावाहिन्याः गतिरोध सम्बन्ध प्रतिवेदनानि सर्वथा असत्यानि निराधाराणि च इति कथितवान्। सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे सः अवदत् यत् भारत अमेरिका देशयोः दलद्वयं संतुलितस्य वाणिज्यदृष्ट्या हितकरस्य उद्योगिनां कृषकाणां श्रमिकाणां उपभोक्तॄणां च अनुकूलस्य व्यापारसन्धेः सम्पादनाय सक्रियतया कार्यरतमस्ति। सः अवदत् यत् गतमासे नवदिल्ल्याम् अमेरिका देशस्य व्यापार प्रतिनिधिना जेमिसन ग्रीर इत्यनेन सह अस्मिन् विषये अत्यंत लाभप्रद वार्ता अभवत्। भारत ऋतु विभागेन अद्य पर्यन्तं बिहार ओडिशा प्रदेशयोः प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। ऋतु विभागेन उक्तं यत् अद्य अरुणाचल प्रदेशे, छत्तीसगढ़े, झारखंडे, नागालैंडे, मणिपुरे, मिजोरमे, त्रिपुरायां, पश्चिम बंगाले, सिक्किमे, असमे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता है। ये नाव 2 जुलाई को समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई को नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगे। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हुरमुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुरमुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान ना हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाई जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा सुबह 7:20 पर। समाचार प्रभात 8:00, मॉर्निंग न्यूज़ 8:15 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। आज कार्यक्रम में कलाकार होंगे माधव पुरोहित। ढोलक पर संगत करेंगे योगेंद्र सिकरवार और सारंगी पर संगत करेंगे उस्ताद अब्दुल मजीद खान। गुड मॉर्निंग ग्वालियर ये कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 9:00। 9:30 पर स्टूडियो से हम प्रसारित करेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कमल कामली का वायलिन पर बजाया राग गुर्जरी तोड़ी। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करते हैं सुबह 10:00। 10:05 पर स्टूडियो से आप सुनेंगे व्हाट्सएप फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे 10:58 पर। दिन में 11 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा, बात आपकी गीत हमारे। दिन में 11:58 पर इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे। दिन में 12 बजे फिल्म संगीत का प्रसारण होगा, संग्रहालय से ये कार्यक्रम लेकर आएंगे। दिन में 12:30 पर 1 बजे महिला कार्यक्रम होगा, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित होगा और ये तीनों ही कार्यक्रम इंदौर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। दोपहर 2 बजे सुनेगा फिल्म संगीत, प्रादेशिक समाचार होंगे 2:10 पर, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। चित्रपट संगीत का आनंद ले सकते हैं हमारे श्रोता दोपहर 2:30 पर। अपराह्न 3 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण।

और श्रोताओं, अब एक नज़र डाल लेते हैं हमारी सांधिकालीन प्रसारण सभा के कुछ कार्यक्रमों पर। सांधिकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। 5 बजे आप सुनेंगे इस घंटे

0: की खास खबरें आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। युवा साथी सुनेंगे उनका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। 5:33 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 6:00 NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा। फिल्म संगीत सुनेगा शाम 6:30। 7:00 हिंदी में समाचार होंगे जो दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कार्यक्रम विवरण सुनेगा 7:05 पर। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी भोपाल से। शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल। रात्रि 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में आप सुन पाएंगे। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 9:15 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे उर्दू समाचार। और रात्रि 10:00 कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट, विधानसभा सत्र में विधेयक के आने की संभावना। मध्य प्रदेश में 20,000 करोड़ के निवेश से AI रेडी डेटा सेंटर स्थापित होगा। दतिया उपचुनाव के लिए अंतिम दिन 32 नामांकन पत्र दाखिल किए गए और प्रदेश में आज हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने कल संहिता का प्रतिवेदन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपा। प्रतिवेदन में समिति की रिपोर्ट 3 खंडों में संकलित है। पहले खंड में समिति ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य के विभिन्न विधियों तथा प्रथाओं का विश्लेषण कर अपनी अनुशंसाएं दी हैं। दूसरा खंड मध्य प्रदेश में प्रचलित विधियों एवं नियमों के दृष्टिगत तैयार किया गया है। तीसरे खंड में जन परामर्श प्रतिवेदन है, जिसमें समिति द्वारा जिला स्तर, राज्य स्तर एवं वेबसाइट के माध्यम से किए गए व्यापक जन परामर्श का विवरण है। समिति को 9.58 लाख से अधिक परामर्श प्राप्त हुए थे। समिति ने अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने की अनुशंसा की है। UCC के लिए आए सुझावों में मध्य प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रारूप तैयार करने का कार्य किया गया है। विधेयक के परिमार्जन और वरिष्ठ सचिव समिति की प्रक्रिया के बाद विधेयक मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत मानसून सत्र में ही विधानसभा में रखे जाने की संभावना है। स्पेन का समर ग्रुप मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से AI रेडी डेटा सेंटर स्थापित करेगा। ये जानकारी कल भोपाल में आयोजित MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में दी गई। कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में 51 प्रमुख गतिविधियां संपन्न हुई। इन गतिविधियों से लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश और 34,000 से अधिक रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
2: मध्य प्रदेश की पहचान पहले केवल एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट के माध्यम से पहचानी जाती थी, लेकिन आज बदलते दौर में डिफेंस से लेकर ड्रोन तक, साइंस टेक से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर तक, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। 2024 से टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव की यात्रा से प्रारंभ हुआ।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 2 टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश को 46,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के बाद से टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर आया। इस अवधि में 22 नई औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और 4 नई परियोजनाओं का भूमि

0: पूजन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। लोग टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। वहीं नमो ऐप और माई जीओवी पोर्टल के जरिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस लिंक से सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। इस अभियान में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग की विशेष सहभागिता रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भोपाल के आंचलिक विज्ञान केंद्र में अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की इकाई आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक दीर्घा विज्ञान के लोकप्रियकरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार तथा अनुभवात्मक विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका विकास नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के तकनीकी मार्गदर्शन एवं जिला प्रशासन भोपाल के सहयोग से किया गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में BSNL की रणनीतिक समीक्षा और योजना बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की अस्थायी बढ़ोतरी दर्ज की है।
2: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
3: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं हैं।
2: Other operating income is not included.
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत चल रही निर्वाचन प्रक्रिया के तहत कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था, जिसके तक 28 अभ्यर्थियों द्वारा कुल 32 नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर दतिया के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह प्रमुख तौर पर शामिल हैं। भाजपा उम्मीदवार का पर्चा भरवाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई अन्य मंत्री मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा भरवाने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे थे। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के तहत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सृजकों की पहचान करना, उन्हें आगे बढ़ाना और उनके कौशल को बेहतर बनाना है। सीजन 2 का लक्ष्य ऐसी उद्योग संचालित, सरकार समर्थित और युवाओं पर केंद्रित चुनौतियों को पूरा करना है जो रचनात्मक प्रतिभा की पहचान करें और उन्हें निखारें। इसके साथ ही कौशल को बेहतर बनाने और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दें। इसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्रों में सहयोग के अवसर पैदा करना भी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मीडिया और प्रौद्योगिकी पर आधारित अन्य रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI ने मध्य प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन के लिए दिए गए चावल के कथित दुरुपयोग से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों को गलत बताया है। FCI ने कहा कि करीब 5 लाख मीट्रिक टन चावल के दुरुपयोग की खबरें निराधार हैं। जांच केवल लगभग 242 क्विंटल चावल के कथित दुरुपयोग से जुड़ी है, जिसकी कीमत करीब 5,63,000 रुपये है। FCI ने स्पष्ट किया कि 1,160 करोड़ रुपये की राशि एथेनॉल कार्यक्रम के तहत डिस्टिलरियों को जारी किए गए चावल का मूल्य है, न कि कथित दुरुपयोग की रकम। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए अपना चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री डॉ. S. जयशंकर ने भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त

राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा। इंग्लैंड के खिलाफ टीम ने 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। अब रुख करते हैं मौसम का। मध्य प्रदेश में बारिश का आंकड़ा इस बार जुलाई माह में माइनस में आ गया है। मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में सामान्य से 3% कम पानी गिरा है। पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग में एवरेस्ट से 17 और पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम, ग्वालियर तथा चंबल में 10 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में दस्तक अभियान का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। जबलपुर रेल मंडल ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2,74,000 रुपये का जुर्माना वसूला है। नर्मदापुरम जिले की जनपद पंचायत माखन नगर की सभी 64 पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। डिंडौरी के धमन गांव में एक पेड़ माँ के अभियान के तहत, माँ के नाम अभियान के तहत 30 हेक्टेयर क्षेत्र में 15,000 फलदार पौधे लगाए गए। मंडला के पीएम स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय पद्मी में प्रवेश के लिए 6वीं कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाजापुर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अतिरिक्त सीएलसी राउंड के तहत प्रवेश मेले का आयोजन किया गया और बैतूल में खनिज विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण कर अवैध परिवहन में शामिल वाहनों को जब्त किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

श्रोता साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र। अब समय हो चला है फिल्म संगीत का।

श्रोताओ, अभी आपने सुना किशोर कुमार को इस गीत में, फिल्म का नाम था मंजिल। योगेश का लिखा ये गीत था और इसे संगीतबद्ध किया आरडी वर्मा ने। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, SH बिहारी का लिखा ये गीत है और इसे संगीत से संवारा है OP नैयर ने।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये नगमा।

अशु भोसले को अभी आपने सुना फिल्म एक फूल दो माली में। रवि के लिखे इस गीत को, माफ़ कीजिए, प्रेम धवन के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया रवि ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म गीत गाता चल का ये गीत। स्वर आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह का है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया ये गीत आपने सुना फिल्म काला पानी से। आइए अब मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को सुनते हैं फिल्म मेरा गांव मेरा देश में। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है और इसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: देखो देखो देखो टूटना चूड़ी नहीं है मेरा।
1: श्रोताओं, ये गीत हमने लिया फिल्म गैम्बलर से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में ये गीत था, गोपाल दास नीरज का, नीरज की रचना, और इस गीत को संगीत से सवारा SD वर्मन ने। लीजिए अब आपको सुनाते हैं शमशाद बेगम को फिल्म CID में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है और इसके लिए धुन तैयार की है OP नैयर साहब ने।

0: श्रोताओं, आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी ही समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम पे 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुरमुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
4: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
5: Across 10

0: of the 11 active missions.
1: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी लापता है। उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
3: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान ना हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद फरद। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the third consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, "The world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever."
6: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
5: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception.
6: Peacekeeping has been a crucial element of maintenance of international peace and security since the very inception of the United Nations. And India has always been in the forefront of discharging that responsibility. Our cumulative contribution is nearly 300,000 deployments in about 50.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे माधव पुरोहित का गाया ये चौमासा गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, पर्यावरण गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये भजन। आइए अब महादेव पुरोहित के स्वर में सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत, जो है गजरी।

0: श्रोताओं, इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम को हम यहीं समेटते हैं। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। 8:58 होने को हैं। कुछ ही पलों में इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी भोपाल से सुनेगा।
1: खास खबरें।

भारतीय खाद्य निगम ने मध्य प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन के लिए दिए गए चावल के कथित दुरुपयोग से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों को गलत बताया है। एफसीआई ने स्पष्ट किया है कि 1160 करोड़ रुपए की राशि एथेनॉल कार्यक्रम के तहत डिस्टिलरियों को जारी किए गए चावल का मूल्य है, न कि कथित दुरुपयोग की रकम। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 28 अभ्यर्थियों द्वारा कुल 32 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह प्रमुख तौर पर शामिल हैं। उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है और 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भोपाल के आंचलिक विज्ञान केंद्र में अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण करेंगे। ये लोकप्रियकरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार तथा अनुभवात्मक विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित इस राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग की विशेष सहभागिता रहेगी। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 270 रनों से शानदार जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, जहां आप सुनते हैं लेटेस्ट खबरें, सूचनाएं, विभिन्न समाचार और रोचक जानकारियां, और साथ ही साथ हम आपका मनोरंजन भी करते हैं ढेर सारा गीत संगीत लाकर। तो फिर देर किस बात की है श्रोताओं, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे साथ। दोस्तों, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके दूसरों की सहायता करना हमारी संस्कृति की विशेषता है। भारतीय संस्कृति परोपकार और दूसरों के सुख के लिए त्याग करने की सीख देती है। इसमें दूसरों की भलाई को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारी परंपरा दान, सेवा और सहयोग की भावना पर आधारित है। अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके दूसरों की सहायता करना हमारी संस्कृति की विशेषता है। अतिथि को देवता मानकर उसका सम्मान करना और उसकी सेवा करना हमारे संस्कारों का महत्वपूर्ण अंग है। दूसरों के सम्मान, सुरक्षा और उत्थान के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया काम ही यज्ञ कहलाता है। दोस्तों, जीवन में सफलता और सुख शांति पाने का सबसे सरल उपाय है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। जो बात हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगती, वो दूसरों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम सभी के प्रति प्रेम, सम्मान, दया और ईमानदारी का व्यवहार करेंगे तो लोग हमारा आदर करेंगे, हमारे कार्यों में कम रुकावट आएगी और हमें सफलता मिलेगी। अच्छे कर्म करने से ईश्वर की कृपा भी बनी रहती है, इसलिए हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें और अच्छा इंसान बनने का प्रयास करें।

दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैच द रेन अभियान की। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा एक प्रमुख जल संरक्षण अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी को बर्बाद होने से बचाना और भूजल स्तर को बढ़ाना है। इसकी मूल टैगलाइन है, बारिश को वहीं पकड़े जहां वो गिरे, जब वो गिरे। इसके कुछ उद्देश्य भी हैं दोस्तों, उन उद्देश्यों को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें इमारतों और घरों की छतों पर पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाती है। वाटर हार्वेस्टिंग पिट, पानी को ज़मीन के अंदर भेजने के लिए रिचार्ज पिट्स यानी गड्ढे और रिचार्ज शॉफ्ट बना सकते हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई, दोस्तों तालाबों, कुओं और चेक डैम से स्लिल्ट यानी गाद निकालकर उनकी पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय भागीदारी तो बहुत ही ज़रूरी है। ग्राम पंचायतों और स्थानीय नागरिकों को जागरूक करके सामुदायिक स्तर पर जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये कैसे काम करता है दोस्तों, हम यहाँ पर ये बताते हैं कि कैसे काम करता है। कैच द रेन मानसून के आने से पहले शुरू किया जाता है ताकि बारिश के मौसम में एक एक बूंद का संरक्षण किया जा सके। इसके तहत सरकारी इमारतों, स्कूलों और रिहायशी इलाकों में वर्षा जल संचरण प्रणालियाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। उदाहरण के लिए हम बताते हैं, जैसे दिल्ली में नए निर्माण नियमों के तहत 100 वर्ग मीटर या उससे बड़े भवनों के लिए ये प्रणाली अनिवार्य है और सिस्टम लगाने पर आर्थिक सहायता भी दी जाती है। चलिए दोस्तों, अब समय हो चला है इस गीत का।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के

0: चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर मेरे साथ। दोस्तों, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में गर्म गर्म चाय और साथ में गर्म गर्म पकौड़े मिल जाए तो क्या बात है। चलिए, ये तो रहा मजाक, हम अब सीरियस हो जाते हैं। सीरियस यानी अपनी हेल्थ के लिए। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल रहे हैं। इस वजह से शरीर में कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। लगातार मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन देखने की वजह से सर्वाइकल स्लिप डिस्क, गर्दन में दर्द, लगातार सिर दर्द, ब्रेन हेमरेज, फालिज की परेशानियां अक्सर देखने में आ रही हैं। ऐसे में जीवन शैली में बदलाव करना ज़रूरी है। धूम्रपान छोड़ने के साथ सेहत का ख्याल रखना होगा। प्रतिदिन 10,000 कदम चलने की आदत से शरीर को स्वस्थ आप रख सकते हैं। खान पान में बदलाव करने के साथ ही जंक फूड को पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। इससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर की। IDBI बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के आवेदन आज से यानी 14 जुलाई 2026 से शुरू हो गए हैं। बैंक में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए ये एक बड़ी खबर है। IDBI बैंक की ओर से SO यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिक्त पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का ऐलान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 14 जुलाई से स्टार्ट कर दी जाएगी, जो निर्धारित अंतिम तिथि 26 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथियों के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने पदानुसार किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी संस्थान से स्नातक, लॉ में ग्रेजुएशन संबंधित क्षेत्र में BE, BTech, ME, MTech, MSc या निर्धारित योग्यता प्राप्त की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की अधिकतम न्यूनतम आयु पदानुसार 25 से 35 वर्ष और अधिकतम 35 से 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के अनुसार की जाएगी। पात्रता और मापदंड से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देख लें। आवेदन प्रोसेस और फीस। भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल idbi.bank.in/idbi-bank-careers/current/openings.aspx पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे।

दोस्तों, अब हम बात करते हैं कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत अभियान की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया नशा मुक्त भारत अभियान एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना, रोकथाम, उपचार और नशेड़ियों के पुनर्वास के माध्यम से एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। इस अभियान के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य भी हम आपको बताते हैं। पहला है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। युवाओं, महिलाओं और समुदाय को नशे के

दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जाना है। अगला है त्रिआयामी रणनीति। इस अभियान में 3 मुख्य चरण शामिल हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशे की आपूर्ति पर रोक, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जागरूकता और मांग में कमी, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा उपचार। इसका विस्तार कैसे होगा? शुरुआत में इसे 272 सबसे संवेदनशील जिलों में लागू किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब पूरे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। इस अभियान में भाग कैसे लें या फिर मदद कैसे प्राप्त करें? ई शपथ। आप अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा यानी ई शपथ ले सकते हैं। और दूसरा है सरकारी सहायता। अभियान के तहत देश भर में 730 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों, ये नशा मुक्त भारत अभियान के लिए हमें भी जागरूक होना होगा और साथ ही साथ हमारे समाज को भी जागरूक करना होगा, तभी हमारा समाज नशा मुक्त कहलाएगा। कार्यक्रम में आप सुनते हैं लेटेस्ट न्यूज़, खबरें और रोचक जानकारियाँ, और साथ ही साथ हम कुछ स्वास्थ्य से संबंधित ज़रूरी जानकारियाँ भी देते हैं, जिन्हें आप अगर अपने जीवन में लागू करें तो अवश्य ही फ़ायदा उठाएंगे। चलिए फिलहाल हम आपको सुनवा देते हैं साथिया फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, राजामान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के चित्रकला विभाग द्वारा विद्यार्थियों को वैश्विक कला परिदृश्य से परिचित कराने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में दुबई से आई अंतर्राष्ट्रीय कला विशेषज्ञ श्रुतिका गोसावी ने मुख्य वक्ता के रूप में विद्यार्थियों को चित्रकला की आधुनिक तकनीकों और समकालीन कला के नए आयामों से अवगत कराया। कार्यशाला के दौरान उन्होंने रंगों के प्रभावी चयन, कैनवास पर भावों की अभिव्यक्ति, रचनात्मक सोच और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहे कला रुझानों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि तकनीकी दक्षता के साथ मौलिकता और प्रयोगधर्मिता ही एक कलाकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। उनके व्याख्यान से छात्र छात्राओं को नई कला तकनीकों और वैश्विक दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण जानकारी मिली। कार्यशाला में चित्रकला विभाग के साथ अन्य कला विभागों के विद्यार्थियों और प्राध्यापकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने विशेषज्ञ से संवाद कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया। दोस्तों, शहर के को अधिक हरा भरा बनाने की दिशा में सोमवार को उदयपुर मुरार स्थित नीम शीशम पर्वत पर हरित प्रदेश अभियान के तहत स्थानीय नागरिकों और बच्चों के साथ मिलकर 50 पौधों का पौधरोपण किया गया। जामुन, कटहल, गुलमोहर सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोप कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ पौधरोपण में भाग लिया। उन्होंने न केवल पौधे लगाए बल्कि उनकी देखभाल का भी संकल्प लिया।

दोस्तों, अब समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अगले कार्यक्रम में कुछ नई रोचक जानकारियों, नए संदेशों, खबरों और ढेर सारी गीत संगीत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है कमल कामले का वायलिन पर बजाया राग गुर्जरी तोड़ी।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजे हैं। वो लीजिए, प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख नवीन श्रीवास्तव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। प्रदेश में 19 मार्च से 30 जून तक चलाए गए जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्वालियर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जल सहेजने के कार्य करवाए गए। जिले में 18,704 कार्य हुए, जिसमें लगभग 24 लाख घनमीटर जल संग्रहण क्षमता की बढ़ोतरी हुई है। ग्वालियर में 1,000 अमृत मित्र बनाए गए हैं। इस अभियान के समापन अवसर पर मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों और शासकीय सेवकों को सम्मानित किया। ग्वालियर जिले में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन का शुभारंभ बीते दिनों जनपद पंचायत मुरार की ग्राम पंचायत उदयपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश कुंवर जाटव ने किया। इस कार्यक्रम में वीर नारी स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा गोबर से निर्मित पर्यावरण अनुकूल मालाओं से अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अभिनव पहल ने पर्यावरण संरक्षण और महिला स्वसहायता समूहों की सृजनात्मक भूमिका का प्रभावी संदेश दिया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बीते दिनों मध्य प्रदेश के भ्रमण के उपरांत 22 जून को ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, जल संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सामाजिक न्याय एवं उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा एवं महापौर शोभा सिकरवार ने विदाई दी। पल्स पोलियो अभियान के तहत ग्वालियर जिले में बनाए गए 2,356 बूथों पर जन्म से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को जिंदगी की 2 बूंद पिलाकर पोलियो रक्षा कवच पहनाया गया। जिले के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। पल्स पोलियो अभियान के तहत घर घर जाकर भी पोलियोरोधी दवा पिलाई गई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में उन्नत कृषि पर संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने किसानों के जैविक व प्राकृतिक खेती पर अनुभव सुने, इसके साथ ही उनसे सीधा संवाद किया। डॉक्टर यादव ने ग्वालियर में मूर्त रूप लेने जा रही अत्याधुनिक हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन का भी रिमोट के जरिए भूमि पूजन किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से ग्वालियर के खुरैरी व ग्राम जहांगीरपुर में इस हाईटेक नर्सरी के प्रथम चरण का कार्य होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों को हितलाभ भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में समन्वित कृषि प्रणाली इकाई एवं बहुस्तरीय कृषि पद्धति इकाई का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आम का पौधा रोपा। उन्होंने इस अवसर पर वृहद स्तर पर पौधे रोपने और उनकी सुरक्षा करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सड़क सुरक्षा के उपहार स्वरूप जिले के लगभग 50 लोगों को हेलमेट भी वितरित किए। ग्वालियर जिले में महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी जा रही है। शक्ति दीदी नवाचार के तहत जरूरतमंद महिलाएं पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर का मोर्चा संभालकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस माह भी कई जरूरतमंद महिलाएं शक्ति दीदी बनी हैं। जिले में अब तक 123 जरूरतमंद महिलाओं को शक्ति दीदी नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित प्रदेशव्यापी विशेष साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 के अंतर्गत बीते दिनों ग्वालियर पुलिस द्वारा रोटरी क्लब ग्वालियर और भारत विकास परिषद शाखा ऋषि गालव के सहयोग से विशाल साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सुरक्षित डिजिटल समाज बनाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज अरविंद सक्सेना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजावल सिंह जग्गा द्वारा जिला खेल परिसर कंपू से हरी झंडी दिखाकर किया गया। बीते दिनों प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के

0: तक देश भर में 200 स्थानों पर हुए कार्यक्रमों के साथ ग्वालियर में भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुए मुख्य कार्यक्रम से इस योजना के तहत देश भर के लाभार्थियों के खातों में 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की, जिसमें कर्मचारी, भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर से जुड़े कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के खातों में पहुंची लगभग 4 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है। महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर की 4 बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने शानदार प्रदर्शन से मध्य प्रदेश और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। हाल ही में जापान में आयोजित हुए महिला अंडर-18 हॉकी एशिया कप में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधि करने वाली ग्वालियर की 4 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों नौशीन नाज, नम्मी, गीताश्री, स्नेहा दावड़े और महक परिहार का कलेक्टर रुचिका चौहान ने अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया। ग्वालियर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्वालियर जिले की चिट्ठी, आलेख नवीन श्रीवास्तव का था और वाचक थे अभिषेक कटियार।
2: श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में, जहां आप सुनते हैं अपनी पसंद के कुछ फरमाइशी गीत जो आप व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुँचाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। पहला गीत हमने लिया है फिल्म लैला मजनू से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत है, उसे संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है, ग्राम संदलपुर आंतरी से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, दीपक यादव, चांदनी यादव, सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशा मिश्रा, चौरसिया कॉलोनी से कालू चौरसिया, पालू चौरसिया और रेखा चौरसिया, साथ ही इस गीत को पसंद किया है वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौन, मोहम्मद शादाब खत्री। आइए सुनते हैं फिल्म लैला मजनू का ये गीत।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार आर डी वर्मन।

श्रोताओं, इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी थी डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर, ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे माधव, डॉक्टर प्रशांत राजे माधव, कुमार संचित वयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी साध्वी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षता देशमुख, कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगील, मोरस जंगील, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगील और नंदिनी जंगील। साथ ही इस गीत को पसंद किया मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। शिव मंदिर गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन यूपी से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकत पुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीयू स्वर्णकार। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत जो हमने लिया है फिल्म द डर्टी पिक्चर से। इस गीत को गाया है कमाल खान ने और फरमाइश हमारी इन श्रोताओं की है। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजीव जाधव, छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले, स्वराज विराज। गांव पर डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसप्रीत सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराज जहां।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म मोहरा का ये गीत। इस गीत को गाया उदित नारायण और अलका याज्ञिक ने। गीत रचना इंदिवर की थी और इसे संगीत से सवारा वीजू शाह ने। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी। सुरिंदर संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रतीक्षा संधु और मैक्स, और ये सभी हमें फरमाइश करते हैं गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवाशहर से। साथ ही इस गीत को पसंद किया जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मुन्ना भाई MBBS का ये गीत। श्रेया घोषाल और विनोद राठौर की आवाज़ें हैं। गीत रचना राहत इंदौरी की और इसके लिए धुन तैयार की है अनु मलिक ने। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रमीर। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेयर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह।

अभी आपने सुना फिल्म विधाता का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। इस गीत को गीत रचना आनंद बख्शी की थी और इसे संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को सुनना पसंद किया नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नोहाकर, निर्मला नोहाकर, विशाल नोहाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताहड़े, आशीष मोहर्रेकर। तेलंगाना भूंगिर से मोहम्मद बुरहाद्दीन, मोहम्मद फजान, मोहम्मद फरहान, समायरा आजमीन गुड़िया। साथ ही इस गीत को पसंद किया चर डोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू। सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा गोड़के, रोहिदास चौक पंढरपुर शहर से हमें फरमाइश भेजते हैं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म बॉम्बे का ये गीत। चित्रा का गाया ये गीत है, गीतकार हैं महबूब, संगीतकार AR रहमान।

0: फिल्म मदर इंडिया के इस फरमाइशी गीत के साथ ही आज का व्हाट्सएप फरमाइश फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: इस घंटे की खास खबरें, अरे आजा पकड़ में।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में बताया कि प्रदेश में सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जो कौशल विकास, अनुसंधान, उद्योग सहायता एवं क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि भोपाल आईटी पार्क में नया आईटी टावर भी विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। प्रदेश भर में दो दिन में विभिन्न जिलों में की गई कार्रवाइयों के दौरान लगभग 1,32,00,000 रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ, वाहन एवं अन्य सामग्री जब्त की गई। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण प्रारंभ किया गया है। अभियान में अधिकारियों द्वारा पशुपालकों के घर पहुंचकर पशु पोषण संबंधी जानकारियां दी जा रही हैं। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी है। प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव कल से 13 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इंदौर में आयोजित महोत्सव के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कल कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में संस्कृत रंगमंच को नई पीढ़ी से जोड़ने की दिशा में 27 जुलाई से राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और प्रदेश के करीब 60% हिस्से से मानसूनी बादल छट गए हैं, जिसके चलते अगले 5 दिनों तक कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। 16 जुलाई से एक नए सिस्टम के सक्रिय होने से प्रदेश में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जंजीर का एक गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गुलशन बावरा ने इस गाने को लिखा है। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म शर्मीली से, आवाज़ें हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर की, नीरज ने इस गाने को लिखा है, एस डी बर्मन का संगीत है, सुनिए ये गीत।

ज़माने को दिखाना है, ये फ़िल्म का नाम है। आवाज़ें हैं आयशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, और मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है। आर डी बर्मन का संगीत है, सुनिए ये गीत।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें।
2: Yeah!

अगला गाना लिया है हमने फिल्म शागिर्द से, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की, मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

ये रास्ते हैं प्यार के, इस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है और रवि का संगीत है।

वारिस। ये फिल्म का नाम है, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है, सुनिए ये गीत।

राम बलराम, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। फिल्म का नाम राम बलराम।

0: रामपुर का लक्ष्मण, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों के। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और आर डी बर्मन के संगीत है। सुनिए ये गीत।
1: अरे

प्यासी शाम, इस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

ये गीत था प्यासी शाम का। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और हेमलता की आवाज़ में। परख फिल्म का नाम है, रविंद्र जैन का गीत और संगीत है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नदिया के पार से, आवाजें हैं जसपाल सिंह और हेमलता की, और साथ में आवाज है चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है, फिल्म का नाम नदिया के पार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 होने को हैं।

0: लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप, MyGOV पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 द्वारा अपने सुझाव दे सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इस तीसरे संस्करण में करीब 7000 खरीदार और 20000 से अधिक कपड़ा उत्पादों की भागीदारी देखी जा रही है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक और 20 से अधिक देशों के नीति निर्माता और विचारक सहित लगभग 350 वक्ता भाग ले रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वेव्स 2027 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के तहत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसके उद्देश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मीडिया और प्रौद्योगिकी पर आधारित अन्य रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2025 के राज्य और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया गया है। राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक तृतीय ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप और मिनिस्टर्स की बैठक प्रस्तावित है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए गौरव का अवसर है और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर 3:30 बजे से बर्मिंघम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त जावेद खान। शुरुआत करते हैं फिल्म पूनम के एक गाने से। आवाजें हैं चंद्रानी मुखर्जी और मोहम्मद रफी की। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, अन्नू मलिक का संगीत है और इस गाने की फरमाइश हम आपको बताएंगे इस गाने के बाद।

ये गाना था फिल्म पूनम का, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और चंद्रानी मुखर्जी की। हसर जयपुरी ने इस गाने को लिखा था, अनु मलिक ने संगीत दिया था। और अगला गाना जो है वो मुकेश की आवाज़ में है। हम उस गाने की ओर, जो गाना आपने सुना, दोनों गाने की इकट्ठी फरमाइश हम आपको सुनवा रहे हैं। अगला गाना है मन मंदिर का, आवाज़ मुकेश की है और साथ में लता मंगेशकर हैं। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इन दोनों की मिली जुली फरमाइश इस तरह है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अम्लेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने इस गाने को पसंद किया है। इसी गाने के लिए फरमाइश आइए घंटा घर चौक खंडवा से लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। और ये खत आया है औरंगाबाद से, लिखने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने गूंज उठी शहनाई से, आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है। भरत व्यास ने इस गाने को लिखा है, वसंत देसाई ने इसको संगीत से सजाया है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका, रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया असमा, सालिया शोएब, मुजतबा रऊफ और शाहिद। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से लिखने वाले हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामनी वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

अगला गाना है फिल्म तेरा चेहरा, इस फिल्म का आवाज़ अदनान समी की है, समीर का लिखा हुआ गाना है और संगीत अदनान समी का ही है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवाई से गुलाबदास मणिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लचनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सलिक पुजारी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर चौंधले और आरती चौंधले ने। और ये खत आया है, लिखने वाले हैं अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव और संदीप पाटिल। इन्होंने ये खत लिखा है सारणी जिला बैतूत से। सुनते हैं ये गाना।

अगला गाना लिया है हमने सूरज और चंदा से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है मालवा रेडियो श्रोता संघ से लिखने वाले प्रमल्ला गंज आलोड ज़िला रतलाम से, बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल और साथ में प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने इस गाने को पसंद किया है। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं महर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गायकवाड़ राहे, सरिता गायकवाड़, सिद्धांत गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़ और आकाश हाइट्स बहादुरा नगर नागपुर से लिखने वाले हैं शैलेश गायकवाड़, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गायकवाड़ परी, इन्होंने ये गाने को पसंद किया है। सुनते ही ये गीत

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में एक गाना, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सरोम से आमिर खान, फायजा जफर और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, और बक्सर बिहार से लिखने वाले हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अंसारी, अकरम और अल्ताफ अंसारी। गाना लिया है हमने फिल्म मधुमति से, और आवाज़ मुकेश लता मंगेशकर की है। शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत है, सलील चौधरी का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:25 हुए हैं। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं हंसना मना है, धारावाहिक की 12वीं कड़ी।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हंसने से आपकी कितनी मांस पेशियां तनाव रहित हो जाती हैं? नहीं मालूम ना? वैसे एक राज की बात बताऊं, हमें भी नहीं मालूम। मगर अंदाजा है कि 2-400 मांस पेशियों पर असर तो होता होगा, है ना? खैर छोड़िए, अरे ये क्या, गोपाल तिवारी आपके लिए एक ऐसा आइटम लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको यकीनन आनंद आ जाएगा।
1: आइए शुरू करता हूँ बच्चों के लिए खास कुछ आइटम।

0: छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल रिक्शे में घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर लौटते हैं तो उनकी अपनी बड़ी प्यारी मीठी मीठी बातें होती हैं। उनमें से कुछ बातें मैं आपको सुना रहा हूं। एक बच्चे ने दूसरे से कहा कि मालूम मैं आज ना आ रही थी ना तो ना मैंने ना चींटी देखी। अच्छा कितनी? मैंने ना 3 चींटी देखी। अच्छा 3 चींटी देखी तो कैसी कैसी चींटी थी? एक चींटी ना काली थी, एक चींटी लाल थी और एक चींटी सफेद थी। अच्छा तो एक काली थी, एक लाल थी, एक सफेद थी, तो काली वाली काली क्यों थी?
1: बच्चों के प्रश्न बड़े भोले होते हैं तो उसके जवाब भी बड़े भोले होते हैं।
0: नहीं, काली वाली ना कॉलरीज में रहती थी इसलिए काली थी। हाँ। अच्छा और लाल वाली लाल क्यों थी? नहीं ना, लाल वाली जो थी ना वो पहले लाल नहीं थी, फिर ना वो खूब खून पीती थी तो लाल हो गई। अच्छा ये होता कि वो सफेद वाली सफेद क्यों? मालूम सफेद वाली भी सफेद नहीं थी, वो तो पहले काली थी तो सफेद कैसी हो गई? नहीं, वो लवली बबली क्रीम लगाती थी।
1: तो चींटियों की बात चली। एक और ने कहा कि
0: ए मालूम चींटी पे हमको भी याद है, हमारी एक चींटी सहेली है, उसने एक दिन बहुत बढ़िया बात बताई थी कि मालूम वो ना मतलब बाजार जा रही थी तो दोनों में चर्चा हुई थी उसकी सहेली से। क्या चर्चा हुई थी? वो बोली कि उसका ना एक दोस्त भी बॉयफ्रेंड मालूम। अच्छा चींटी का बॉयफ्रेंड तो चीटा होगा? नहीं, चींटी का बॉयफ्रेंड चीटा नहीं था, हाथी था।
2: अच्छा
0: क्या बोला? तो क्या हुआ, चींटी ना बाजार जा रही थी तो चींटी से हाथी ने पूछा कि दीदी तुम कहाँ जा रही? दीदी बोला वो तो बॉयफ्रेंड, हाँ सॉरी मैं भूल गई थी। हाँ तो बोला कि तुम कहाँ जा रही चींटी? चींटी कहाँ जा रही? तो चींटी ने बोला मैं बाजार जा रही हूँ, मैं अपनी ड्रेसेस सिलवाने के लिए। अच्छा तो कपड़ा कितना लिया? मेरे को जितना लगता है। अच्छा क्या बनवाओगी? मैं फ्रॉक बनवाऊंगी। अच्छा कपड़ा बचे तो मेरे लिए एक निक्कर बनवा लेना।
1: बच्चों की बात अलग और निराली होती है। बच्चों की बात के साथ साथ कुछ और लतीफे भी मैं आपकी नजर करूंगा। और बच्चे जब बात अपनी पेश करते हैं तो एक बच्चे ने कैसी बात रखी?
0: आदरणीय उपस्थित सज्जनों, भाइयों, मेहताओं और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं जो भी पेश करूंगा पूरी सावधानी के साथ पेश करूंगा, अगर इसमें कुछ गलतियां हो तो पैसे दे के सुधरवा सकते हैं। और इसके बाद अब मैं आपको एक एक छोटा सा शेर सुनाने जा रहा हूँ।
1: सुनाइए। अब बच्चे ने शेर सुनाया। सपेरे सपेरे बामियों पे बीन लिए बैठे हैं, सपेरे बामियों पर बीन लिए बैठे हैं, सांप भी सियाने हैं दूरबीन लिए बैठे हैं। बच्चों की बहुत बढ़िया बढ़िया बात। एक और बहुत बढ़िया बात मैं बता रहा हूं आपको कि स्कूल का माहौल, क्लासरूम इस आइटम का नाम है, क्लास लगी हुई है गांव का ये स्कूल और कुछ शहर से जुड़ा हुआ गांव है तो कुछ शहरी कुछ गांव ग्रामीण संस्कृति दोनों उसमें मिली जुली है। आधुनिक युग के बच्चे हैं, टेलीविजन संस्कृति का उन पर क्या असर है ये भी आप देखेंगे। और इस आइटम में अलग अलग क्लासेस हैं पर वो एक साथ भी कभी कभी बैठते हैं, वो देखिए। मास्टर जी का प्रवेश। खड़े हो जाओ।
0: जी गुरु जी।
3: बैठ जाओ। बैठो। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने पापा को बुला के लाए?
0: हाँ अभी 10 मिनट में आते होंगे, हम बुला के लाए।
3: आज नहीं बुलाए तो नाम कटवा देंगे।
0: सर वो हमारे पापा आ रहे, वो आ रहे।
1: और पापा जैसे ही आए,
3: आइए। नमस्कार।
1: नमस्कार सर, आप लोग क्या है, बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग को बुलवाते हैं, फैक्ट्री से छुट्टी लेके आना पड़ता है, कितनी तकलीफ होती है, 400 रुपये कट जाते हैं मालूम है आपको? भाई देखिए, जरूरी हो जाता है तो बुलाना पड़ता है हम लोगों को। आपका बच्चा जो है इस समय बड़ी नटखट शरारत कर रहा है, बुलाना पड़ेगा हमको। क्या की शरारत इसने? सर ये क्या बताएं इसको, बहुत ऐसी शरारतें कर रहा है ये बच्चा जो है आपका, ये दूसरे बच्चों की शीश पेंसिलें चुराता है, रबड़ चुरा लेता है, स्लेट चुरा लेता है, कागज़ चुराता है, भाई पेन वगैरह। जरा तुम

0: जाओ, तुमको एक तुम क्यों चुराते हो बच्चों की चीजें, और इतनी सारी जो शीश और रबर और कागज हम लाते फैक्ट्री से वो कहाँ जाती है? ऐसे बच्चों की बहुत बढ़िया बात, एक और बात बच्चों की बता रहा हूं कि साहब मास्टर बच्चे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। और बच्चों के एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को एक फूल दे दिया, चर्चा शिकायत पहुंच गई मास्टर जी के पास।
1: मास्टर जी, जो है ना अपने अंदर का छुट्टू, इसने ना गुड़िया को गुलाब का फूल दे दिया।
0: अच्छा, जरा तुम छुट्टू इधर आओ, गुड़िया तुम भी इधर आओ, क्या इसने तुमको फूल दिया?
1: जी दिया रहा, फूल दिया रहा।
0: अच्छा फूल दिया रहा, ये तुम्हारा ये फूल वूल का लेन देन कैसे चलने लगा है, कैसा क्या ये?
1: नहीं सर, वो पूरे शहर के लोग मना रहे थे त्योहार, तो हमने भी दे दिया।
0: अच्छा, पूरे शहर के लोग मना रहे थे, बच्चों का त्योहार है क्या ये?
1: नहीं, चाचा नेहरू ने बताया था कि बच्चों को बहुत प्यार करना चाहिए, और बच्चों को भी, बच्चे फूल जैसे होते हैं, बच्चों को फूल से बहुत प्यार होता है। चाचा को भी प्यार था, हमको भी प्यार था, हमने भी प्यार किया।
0: वैसे भी एक बहुत बढ़िया बात कही है कि नाजुक टहनी को किसी फरिश्ते ने छुआ हो जैसे, फूल का खिलना किसी बच्चे की दुआ हो जैसे। बच्चों की तो बात अलग है साहब, और बच्चे ये क्लास लगी हुई है, और मास्टर जी ने कहा अब ये बताइए कि कौन क्या पढ़ के आया है। चलिए तुम खड़े जाओ, तुम्हारा नाम?
2: जी होरी लाल।
0: बहुत बढ़िया होरी, तुम खड़े हो, तुमने क्या याद किया है?
2: सर हमने गिनती याद की है।
0: अच्छा सुनाओ, कौन सी गिनती याद की है?
2: सर वो वाली राम लखन वाली। राम लखन वाली गिनती?
0: हाँ सुनाओ गिनती, अब गिनती सुना रहे। एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार। बड़ा ये इंतजार में इंतजार जी लिखोगे परीक्षा में फेल हो जाओगे, जीरो मिलेगा। पढ़ो, फालतू बात कर तुम। बेटा तुम्हारा नाम, तुम क्या, तुम्हारा नाम क्या है?
2: जी हमारा नाम है खताई।
0: हाँ खटाणे रहो ताई, तुम सुनाओ बेटा, तुमने गिनती याद की?
2: जी सर हमने भी गिनती याद करी है।
0: सुनाओ गिनती सुनाओ। तो उसने भी गिनती सुनाई,

0: 15 16 17
1: अब ये रोन क्यों लगे तुम? गिनती गाते गाते रोन क्यों लगे?
0: शाही चढ़ाई थी वहां बहन में भी।
1: चलो बैठो, तुम लोग हर समय उधम करते रहते। अब तुम सुनाओ बेटा, तुमने गिनती याद करी?
2: हमने भी याद करी, बहुत अच्छी गिनती।
1: तुम सुनाओ गिनती। अब उसने सुनाई, मैं हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ऐसी गिनती बिल्कुल याद कर रहे तुम लोग, बहुत हो गई गिनती विनती। अब ये बताओ कि कौन क्या बनेगा? तुम गड़े हो, तुम्हारा नाम?
2: हमारा नाम है चिलपिला।
1: क्या नाम है?
2: चिलपिला।
1: ऐसा नाम रखते हो यार, हैं? अब तुम ये बताओ कि तुम बड़े होके बेटा क्या बनोगे?
2: हम सर बड़े होंगे ना तो हम डांगडार बनेंगे।
1: क्या बनोगे?
2: डांगडार बनेंगे।
1: डॉक्टर यार बोलना सीखो पहले, डॉक्टर बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, मतलब ऑर्थोपेडिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, कौन से डॉक्टर बनोगे?
2: जी सब नहीं, अपन अलग हटके।
1: अलग हटके? कौन से डॉक्टर?
2: वही वाले जो साबूदाना की गोली बांटते।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तुम खड़े हो बेटा, तुम्हारा क्या नाम है?
3: नाम हमारा नाम है हर हर।
1: कैसा नाम रखते यार हर हर। तुम ये बताओ कि तुम क्या बनोगे?
3: गुरुजी हम तो थोड़ा अलग बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे।
1: क्या बनेंगे?
3: इंजीनियर।
1: इंजीनियर बेटा, इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कौन सा इंजीनियर बनोगे? कंप्यूटर, कौन सा इंजीनियर बनोगे?
0: अरे राज्य पंचायत हो गई बाबा,
1: इतने सारे इंजीनियर हो गए।
3: फिर
0: हम तो वही बनेंगे जो हमारे पापा हैं।
1: अच्छा, वेरी गुड, आपके पापा इंजीनियर है?
3: हाँ हाँ।
1: कौन सा इंजीनियर है?
2: चौका इंजीनियर, रोटी बनाते घर में।
1: लड़प बनेंगे। तुम बेटा, तुम खड़े हो और अपना नाम बताओ।
2: हमारा नाम है बहुरी बाबू।
1: बेटा बहुरी बाबू, तुम खड़े हो गए और बता रहे अपना नाम। अब ये बताओ कि तुम क्या बनेंगे, बनोगे?
2: हम अपने मन से कुछ नहीं बनेंगे।
1: क्यों?
2: जो आप बनवाओगे वही बने।
1: हम क्या बनवाएं? हम तो चाहेंगे कुछ अच्छा बनो,
2: लेकिन कैसे बने?
1: नहीं भाई, हम लोग चाहेंगे कि बच्चे अच्छा बने, कुछ अच्छा बने।
2: बन कहाँ से सकते हैं? आप लोग कोशिश ही नहीं कर।
1: हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, खूब पढ़ाते हैं।
2: कहाँ सर, जब भी हम स्कूल आते कभी आप गधा बनाते कभी मुर्गा बनाते।
1: एक बिटिया पीछे बैठी हुई, उसको भी गुरुजी ने, हाँ तुम्हें भी, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपना नाम बताओ।
4: जी सर, हमारा नाम छवरानी।
1: मरे तुम्हारी नानी। तुम बेटा ये बताओ कि तुम क्या बनोगी?
4: सर सर, मैं ना तिवारी जी के यहाँ गई थी, तो मैंने उनके यहाँ देखा कि शादी हुई ना, शादी होने के बाद फिर फेरे हुए, जयमाला हुआ, इतना अच्छा लगा ना मेरे को। तो मैंने भी सोचा ना सर कि मैं जब बड़ी होंगी ना तो फिर मैं भी शादी।
1: बहुत अच्छी बात, बच्चों का साथ देखो, छोटे बच्चे हैं, आगे तक की सोच रहे हैं, मतलब देखो आप, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा तुम खड़े हो, तुम्हारा क्या नाम?
5: सर मेरा नाम गोपाल।
1: अच्छा बेटा, गैया कहाँ तुम्हारी?
5: बाबू चराने गए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बाबू चराने का गैया। तो बेटा गोपाल तुम बताओ, देखो ये क्लास का बहुत अच्छा विद्यार्थी है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है और स्कॉलर स्टूडेंट है, आप सबको इससे शिक्षा लेनी चाहिए। बेटा तुम ये बताओ कि तुम बड़े होके क्या बनोगे?
3: मतलब हम सोच रहे कि अलग हटके बने, लगे कि अपन कुछ बने।
1: हाँ लगे कि आप कुछ बने, क्या बनेंगे बताइए।
3: सर हम सोच रहे कि हम गिर्रू के बाप बने।
1: बहुत हो गई, बहुत हो गई, क्लास में डिस्टरबेंस बहुत हो गया। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस के आंसर आपको देने पड़ेंगे, समझ गए? सब तैयार हैं?
6: हाँ।
1: चलिए अब मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तुम खड़े हो, तुम्हारा नाम?
7: जी सर, हमारा नाम दीपक है।
1: अच्छा, नाम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम कभी आज तक पास ढंग से नहीं हुए हैं, सप्लीमेंट्री आती हर बार तुमको, फेल हो जाते हो, 4 साल से चौथी में पढ़े हो। नाम दीपक और ज्ञान पंजी का नहीं है।
7: सर वो आपको एक चीज नहीं मालूम।
1: क्या नहीं मालूम हमको?
7: दिया तले अंधेरा होता है।
1: अच्छा, अब हमको पढ़ाओगे तुम? तुम्हारा क्या नाम?
8: सर हमारा नाम बड़वारी लाल। बड़वारी लाल तुम खड़े हो, तुमको क्या दिया था कल होमवर्क? क्या दिया था
1: सर? निबंध लिखने।
8: क्या सब्जेक्ट क्या था?
1: आलस्य।
8: अच्छा लिख लाए?
1: जी सर। कितने पेज में लिखा?
8: 12 पेज में सर।
1: अच्छा लाओ दिखा। इसमें लिखा क्या है यार? कहीं कुछ नहीं लिखा इसमें।
8: अच्छा सर आखिरी पेज में तो देखो आप, आखिरी पेज में। अच्छा विशेष नोट, यही है आलस।
1: अरे तुम गड़प, कैसे कैसी तुम लोग बात करते हो। अच्छा तुम खड़े हो, तुम्हारा नाम?
9: जी बनवारी लाल।
1: बनवारी लाल तुम खड़े हो जाओ और तुम ये बताओ कि हवालात किसे कहते हैं?
10: बाजी बोले भैया चार बार गए कहाँ गए, मैं किसको कहते, उनसे पूछे थे पहले मालूम होता हवालात किसको।
1: सर जल्दी बताओ।
10: सर जब कोई आदमी हवा में लात मारे तो उसे
1: बड़ा तो उसे हवालात कहते हैं। अच्छा ये बताओ कि ऐसा कौन सा चारा है जिसको कोई नहीं खाता?
8: चारा माने घास पत्ती ये सब चारा। हाँ सर वही, हम उसी के बारे में सोच रहे।
1: बताओ जल्दी, ऐसा कौन सा चारा जिसे कोई नहीं खाता? सर भाईचारा। भाईचारा। अच्छा तुम खड़े हो, तुम्हारा नाम?
11: जी बद्री प्रसाद।
1: बद्री प्रसाद ठीक है बेटा। तुम ये बताओ काल यानी कि टेंस कितने होते हैं हिंदी में? बताओ
10: काल माने कितने होते हैं?
1: सर 6, आधा दर्जन।
10: कहाँ पढ़े हैं तुम?
1: हिंदुस्तान में तो अभी तक 3 ही हमने पढ़े थे, ये 3 और कहां से लगा दिए सप्लीमेंट्री?
10: वो 3 आपने पुराने समय में पढ़े होंगे।
1: हाँ हाँ भूत भविष्य वर्तमान, अभी नए कौन से काल हो गए भाई?
10: लेकिन सर हमने इजाद किए हैं अभी, नया इन्वेंशन है।
1: अच्छा कौन कौन से?
10: पहला तो तत्काल, दूसरा अकाल
1: और तीसरा कंकाल।
12: हंसना मना है,
13: हंसना मना है,
12: अरे हंसना

0: मना है,
1: हंसना मना है।
0: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
1: हंसना मना है।
2: एक बेचारा आपको हंसाने में मशगूल है और दूसरा उस बेचारे को कोचने में है। ये दूसरे कौन है? संजय गायकवाड़, जरा इनकी भी तो सुने।
3: शहर में अतिक्रमण हटाया गया, मैं अपने एक दोस्त के यहाँ घर में गया तो वहाँ पे एक माताजी थी जिनका आधा कमरा भी अतिक्रमण में चला गया था। मैंने माताजी से नमस्कार किया तो अम्मा ने कहा, नमस्कार बेटा जी, बताओ कि जी फिर से अतिक्रमण हटाने वाले लोग नगर निगम वाले कब आएंगे? हमने कहा, अम्मा आपका तो आधा कमरा चला गया, आप फिर से बुला रही हूँ। कहने, बेटा पूरा चला जाए कोई गम नहीं। हमने कहा, क्यों अम्मा, ऐसी क्या बात है? कहने, बात कुछ नहीं बेटा, बात तो बहुत अच्छी हुई। पिछली बार जब नगर निगम वाले अतिक्रमण हटाने आए थे तो स्टूल पे नगर निगम का एक कर्मचारी बैठा था, उसने हमारी लड़की से एक बार पानी मांगा तो हमारी लड़की ने दूसरी बार में चाय दी। न जाने कैसी क्या बात हुई कि 13 फरवरी की निकल आई। अब हम सोच रहे हैं कि दोबारा फिर से उन लोग नगर निगम वाले आए तो छोटी वाली को निपटा दें। शिक्षा के साथ में पूरे भारतवर्ष में इस समय सामान्य ज्ञान योग अभ्यास की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। एक गांव के पंडित जी जब शहर में अपने भाई से मिलने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि योग की क्लास चल रही थी, तो अपने भाई से पूछा, कहने, भैया जी सब बताओ क्या है जी, पढ़ाई के अलावा जी आप लोग बैठे हैं, कोई लेटा है, कोई खड़ा है, कोई सांस रोके, ये सब क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि क्या है कि हम लोग योग की क्लास भी लगाने लगे हैं, इससे बच्चे का जो स्वस्थ है और मन है वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है। अरे, कहने, ऐसी बात है तो हमारे गाँव में भी योगा होगा। तुरंत पहुँचे पंडित जी। पहुंचने के बाद में क्लास जो लगी हुई थी तुरंत अपने बच्चों को, क्लास के बच्चों को बोला, चलो रे बंद करो, चलो सब कोई पढ़ाई बंद करो और पीठ के बल लेट जाओ और टांगे ऊपर करो रे सब कोई। हाँ कलुआ, तुम भी टांगे ऊपर करो, और साइकिल कैसे चलाते, ऐसी घुमाओ हाथ, बिल्कुल पैर ऐसे घुमाओ। अब साहब देखा कि सब बच्चे पैर घुमा रहे हैं लेकिन एक लड़का जो था वो पैर नहीं घुमा रहा था, वो केवल पैर उठाए हुए था। उससे पंडित जी ने पूछा, कहले क्यों रे, तू साइकिल क्यों नहीं मार रहा है, पैडल क्यों नहीं मारा है, साइकिल चला, साइकिल चला। कहले पंडित जी, हमारी साइकिल ढलान पे है। हमारे शहर में एक थिएटर ऐसा है साहब जहाँ बहुत छोटे बच्चों का जाना बिल्कुल मना है। हमारे भैया भाभी घर के पिक्चर देखने के बहुत ज़्यादा शौकीन, तो साहब हुआ ये कि नई नई फिल्म लगी, हमारे घर में छोटे से भतीजे ने जन्म लिया, तो हुआ ये कि जब थिएटर पहुँचे तो थिएटर पहुँचने के बाद में भाभी जी ने प्रश्न किया कि आप तो 2 टिकट लेके आ गए हो, लेकिन मैं जब जाने लगूँगी और गेटकीपर ने पूछ लिया कि ये क्या है तो फिर मैं उससे क्या कहूँगी? तो हमारे भाई साहब ने अपना दिमाग दौड़ाया और कहने, कुछ नहीं, तुम टावल में लपेट लो बच्चे को, कपड़े में ऐसा रख लो, समझ गई ना, और गेटकीपर अगर तुमसे पूछता है तो तुम बोल देना उसको कि कुछ नहीं, हम लोग जल्दीबाजी में खाना खा के नहीं आए हैं, टिफिन ले आए हैं, इंटर में बैठ के खाना खाएंगे। कहने, हाँ ठीक है। 2 टिकट जैसे ही मिले तो भैया पहली टिकट में चले गए, दूसरी टिकट में जैसे ही भाभी जी जाने लगी तो गेटकीपर की नज़र पड़ी और गेटकीपर ने तुरंत कहा, एक मिनट बहन जी, एक मिनट, ये क्या है? तो बहन जी ने कहा, ये कुछ नहीं, ये टिफिन है, हम लोग ना इंटर में बैठ के खाना खाएंगे। गेटकीपर तुरंत बोला, अच्छा अच्छा ठीक से पकड़ो, दाल बह रही। पिछले दिनों साहब एक समाचार पत्र में, मैं किसी भी समाचार पत्र का नाम नहीं लूंगा, एक समाचार पत्र में एक वैकेंसी निकली, एक विज्ञापन आया, आवश्यकता है एक ऐसे कर्मचारी की जिसको वेतन नहीं मिलेगा, भोजन मिलेगा। शहर में बहुत सारे बेरोजगार हैं, सुबह के वक्त एक बेरोजगार पहुंचा, कहने, भाई साहब नमस्कार। कहने, नमस्कार नमस्कार। कहने, भैया वो भाई साहब कहाँ रहते हैं जिनने पेपर में विज्ञापन दिया था? अरे, कहने, ठीक तो हमसे टकरा है, वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, हमें ने दिया था वो विज्ञापन। कहने, भैया तो फिर इंटरव्यू कब है? कहने, इंटरव्यू तुम्हारा शुरू हो चुका है। कहने, अरे शुरू हो गया? कहले हाँ, कहले तो आपने वो पेपर में लिखा है कि वेतन नहीं मिलेगा, भोजन मिलेगा, तो वेतन काय को नहीं मिलेगा? कहले वेतन से भोजन ही खरीदोगे ना, हम डायरेक्ट भोजन दे रहे, कौन सा गलत कर रहे हैं? तो कहले भैया फिर कब से आए?

0: दूसरा खुद खाओ, भोजन मिलेगा वेतन नहीं। एक जगह एक प्रोग्राम चल रहा था गीत संगीत का, वहां पे एक गायिका कलाकार आई और उन्होंने शुरू किया, जिमी जिमी आजा आजा, जिमी जिमी आजा आजा आजा रे मेरे पास, हे जागे सारी रात पुकारे तुझको। ये कोई गीत था, वो गा रही थी मैडम, अचानक घर का कुत्ता चैन तोड़ के स्टेज के करीब आ गया और शुरू हो गया। तुरंत अनाउंसर साहब आए, कहले अरे भाई साहब गाना आना बंद हो गया। कहले ये घर का किसका घर का कुत्ता है भाई जो स्टेज पे आ गया? तो एक महाराष्ट्रियन भाव है, मेरा घर का कुत्ता ना वो, मेरा घर का कुत्ता है। अरे कहले भैया तो इसको घर में बांधो ना। कहले घर में ही बांधा था ना, तुम्हारी मैडम क्या बोल रही, जीमी जीमी आजा आजा, वो नाम लेके बुला रही कुत्ता आ गया। कहले आ गया तो भैया भोंक काय को रहा है? कहले वो भोंक नहीं रहा, वो कह रहा तुमने पुकारा और मैं चला आया।
1: राजेश मिश्रा, अपनी बारी आने के पहले ही लतीफों की लंगोट कसकर आपको हंसी के अखाड़े में ले जाने के लिए तैयार हैं। पता नहीं आप चित्त होते हैं या पट हैं। लीजिए राजेश मिश्रा को सुने।
2: लीजिए एक व्यंग और पेश कर रहा हूं कि जिन साहिबानों की शादी हो चुकी है और उनको अगर पत्नी से परेशानी नहीं है तो समझ लीजिए कि ईश्वर की बड़ी असीम कृपा उनके ऊपर है, और जिनको परेशानी है तो वो कभी कोई दूर नहीं कर सकता है, ये उनका भाग्य है। इसलिए अपन उस बारे में ज़्यादा चर्चा न करते हुए कि एक जोक सुना रहा हूँ कि एक शव यात्रा चली जा रही थी। शव यात्रा के पीछे मैंने देखा कि बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि भैया आखिर ये कौन मर गया, काय के लिए लाइन लगी हुई है। एक भाई साहब से मैंने पूछा, भाई साहब कौन मर गया? बोले मुझे नहीं मालूम। राम राम सत्य सत्य बोलो मुक्ति है, श्री राम राम सत्य ही सत्य बोलो मुक्ति है, श्री राम राम सत्य ही। कई बार आपने देखा होगा कि काफी अगर मोटे ताजे व्यक्ति का अगर वजनदार मुर्दा होता हो, कई बार कंधे लोग नहीं बदलते हैं तो लोगों को ये लगता है कि जल्दी से कोई आ जाए वो कंधा बदल ले है, बड़ी देर तक अपना राम राम सत्य सत्य बोलो मुक्ति है, श्री राम राम, जो ही वो बदलते श्री राम राम सत्य सत्य बोलो मुक्ति है, कंधा दूसरे के उसमें चला जाता है। ये लाइन बड़ी अजीब चली जा रही, एक के पीछे एक लाइन लगाए लोग चले जा रहे हैं। मैंने एक से पूछा, भाई साहब कौन मर गया? बोले हल्ला मत करिए, पीछे लाइन में आइए। फिर एक से पूछा, भाई साहब कौन मर गया? राम राम सत्य सत्य, पता नहीं भैया, फालतू बात नहीं, पीछे आओ लाइन में। ये क्रम चलता रहा, किसी ने मुझे नहीं बताया। फिर मैंने सोचा कि मैं सीधे शव के पास पहुंचूं। शव के पास पहुंचा तो मैंने पूछा, भाई साहब कौन मर गया? तो जो सज्जन थे, कहने लगे मेरी पत्नी मर गई है। तो क्या, कैसे मर गई भैया, क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, हमारे यहाँ कुत्ता था तो उसने काट दिया। अरे भाई साहब बड़ी मेहरबानी हो जाती, कुत्ता के काटने से आपकी पत्नी खत्म हो गई? जी हाँ साहब, मुझे दे दीजिए ना 2 मिनट के लिए, मैं 2 दांत गड़वा के अब भी ले आऊंगा। कहने फालतू बहस मत करो। नहीं भाई साहब प्लीज दे दीजिएगा, हम बस अब भी ले जाके आपके कुत्ते अब भी छोड़ जाऊंगा। कुत्ता चाहिए? जी हाँ, पीछे लाइन में आओ।
1: और दोस्तों, हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक हंसना मना है की 12वीं कड़ी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप, माई जीओवी पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 द्वारा अपने सुझाव दे सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इस तीसरे संस्करण में करीब 7,000 खरीददार और 20,000 से अधिक कपड़ा उत्पादों की भागीदारी देखी जा रही है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक और 20 से अधिक देशों के नीति निर्माता और विचारक सहित लगभग 350 वक्ता भाग ले रहे हैं। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2025 के राज्य और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया गया है। राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक तृतीय ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स की बैठक आयोजित होगी। राजधानी भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 16 जुलाई से एक नया सिस्टम सक्रिय होगा, जिसके चलते प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर 3:30 बजे से बर्मिंघम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा सहित तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिलाओं का, महिला कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

बारिश का ये मौसम कुछ याद दिलाता है। बारिश का ये मौसम कुछ याद दिलाता है, किसी के साथ होने का एहसास कराता है। फिजा भी सर्द है, यादें भी ताज़ा हैं। फिजा भी सर्द है, यादें भी ताज़ा हैं। ये मौसम भी आप सब की याद दिलाता है। ठीक कहा ना सखियों, वाकई यादों के साथ जीना मुश्किल है। तो देखिए, आ गए हम आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर महिला सभा। स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर घर, हर परिवार और हर महिला से जुड़ा है, और वो बात है सखियों, सजगता और सतर्कता का ध्यान रखें। जब आप डिजिटल तकनीक, आप समझ ही गई होंगी हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारा मोबाइल, जो आज के समय हमारे जीवन का हिस्सा जो बन चुका है। हो भी क्यों ना सखियों, अब खरीदारी के लिए जेब में नगद पैसे रखना जरूरी नहीं रहा। कोई भी दुकान या ऑनलाइन शॉपिंग अधिकतर जगह हम UPI QR कोड या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आसानी से भुगतान कर देते हैं। वाकई सखियों, सुविधा अच्छी है। सुविधा तभी तक अच्छी है जब तक उसके साथ सजगता और सतर्कता भी जुड़ी रहे, क्योंकि कहा भी गया है सखियों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल यही बात सखियों ऑनलाइन भुगतान करते समय भी पूरी तरह लागू होती है। सखियों, ध्यान से हमारी बातों को सुने, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में बिना देखे QR कोड स्कैन कर देते हैं या स्क्रीन पर दिखाई दे रही जानकारी पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यही छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बनती है। इसलिए सखियों, आप किसी भी दुकान पर

या ऑनलाइन भुगतान कर रही हैं तो सबसे पहले दुकानदार का नाम देखें। यदि नाम अलग दिखाई दे तो तुरंत भुगतान रोक दें और दुकानदार से पुष्टि करें। इसके बाद राशि ध्यान से देखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें सखियों, क्योंकि राशि में एक शून्य भी आपके हजारों रुपए गलत खाते में भेज सकता है। सखियों, ऑनलाइन खरीदारी में हमेशा भरोसेमंद वेबसाइट या आधिकारिक ऐप का ही उपयोग करें। बहुत कम कीमत, भारी छूट देकर किसी अनजान वेबसाइट पर भुगतान ना करें। बात महत्वपूर्ण है सखियों, पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी UPI पिन नहीं डालना पड़ता। पिन केवल तब डाला जाता है जब आप किसी को पैसे भेज रहे होते हैं। इस बात को याद रखें। और जैसा कि आज हमारी सखियां अपने छोटे छोटे व्यवसाय चलाकर ऑनलाइन के जरिए अपने व्यवसाय के शौक को अपना आय का साधन बना रही हैं, और ऐसे में डिजिटल भुगतान उनके काम का हिस्सा बन गया है। इसलिए सखियों, जितनी ज़रूरी मेहनत है उतनी ही ज़रूरी उस मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना है। तो आइए तीन छोटी सी बातें हमेशा याद रखें। पहली, भुगतान से पहले नाम, दूसरी राशि, तीसरी OTP और UPI पिन किसी से भी साझा ना करें, क्योंकि सजग ग्राहक ही सुरक्षित ग्राहक होता है सखियों। और अब इस बारिश के सुहाने मौसम का आनंद लेते हैं इस गीत से।

सखियों, आप बात करते हैं भारत सरकार की महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना की, और वो है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके तहत माता पिता गार्जियंस अपनी बेटी के नाम से बैंक या डाकघर में खाता खुलवा सकते हैं, जो बेटी की शिक्षा और भविष्य के लिए मजबूत

आधार है और इस योजना में बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक खाता खोला जा सकता है सखियों, जो बहुत ही कम राशि से इसमें मध्यम परिवार भी आसानी से लाभ ले सकते हैं। सखियों, इसमें सरकार द्वारा ब्याज दर भी अच्छी दी जाती है और पूरी तरह सुरक्षित। सखियों, सुकन्या समृद्धि योजना का सबसे बड़ा लाभ जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। 18 वर्ष की आयु के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए खाते से कुछ राशि निकाली भी जा सकती है। वाकई सखियों, आज के समय में बेटियों को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाना बहुत जरूरी है, जो केवल बचत योजना नहीं है बल्कि बेटियों के उज्जवल भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो खाता जरूर खुलवाइए। और आपको खाता कहाँ खुलवाना है, तो आप किसी अधिकृत कमर्शियल बैंकों में जाकर या अधिकृत सरकारी डाकघर में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। और एक जरूरी बात सखियों, आप उनकी इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पैसे जमा कर सकते हैं। तो सखियों, इस जानकारी को आसपास के ऐसे लोगों को जिन्होंने खाता नहीं खुलवाया या जानकारी में कमी रह गई, तो पूरी जानकारी जरूर दें ताकि अधिक से अधिक बेटियां इस योजना का लाभ ले सकें। बिल्कुल, हमारी सखियां योजना का लाभ ले रही हैं और सखियां आज आत्मनिर्भर भी हैं। और इसी आत्मनिर्भरता की कहानी कहता है क्रम मेरी उड़ान। आइए सुनते हैं क्रम मेरी उड़ान।

0: सखियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है और इसी लक्ष्य को पाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत और लगन से अपने कार्य क्षेत्र में अपनी योग्यता हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और इसी का परिणाम होता है कि हम अपने काम में परिपूर्ण साबित होते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि एक नाम जो कहीं गुम था लोगों के सामने उभर कर आ ही जाता है और ऐसे ही नाम को उजागर करता है मेरी उड़ान। आज हम बात कर रहे हैं टिफिन सेंटर की संचालिका मनोरमा सेठिया से। मनोरमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी
0: मनोरमा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके मन में कैसे आया कि आप टिफिन सेंटर खोलेंगी।
1: मेरे मन में ये विचार ऐसे आया कि मेरे पास कुछ बिजनेस नहीं था और बच्चों को पढ़ाना, बड़ा करना, हस्बैंड का भी कुछ काम धंधा नहीं था। हमारे पास में एक आंटी टिफिन सेंटर चलाती, उनने मुझे हट किया। तो हमने सोचा टिफिन सेंटर चलाए पर ग्राहक कहाँ से लेकर आएंगे। तो पास में एक भैया रहते थे, चार रोटी सुबह और चार रोटी शाम को वो ले जाते थे। ऐसे करके हमने टिफिन सेंटर चालू किया। हम जगह जगह भटके, हॉस्टलों में, बॉयज हॉस्टल में, हॉस्पिटलों में, वहाँ हमने अपना टिफिन टेस्ट करवाया। लोगों को खाना अच्छा लगा, लोगों ने फिर हमको ऑर्डर दिए। ऐसे करके एक टिफिन, दो टिफिन, हम इतने खुश होते थे कि चलो अपना टिफिन सेंटर बिजनेस आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे करके मैंने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया तो आज 20-25 टिफिन तक मैं बना लेती हूँ, संतुष्ट हूँ।
0: तो घर के साथ साथ इस काम को आप कैसे मैनेज करती हैं?
1: बच्चे थोड़ा सहयोग करते हैं और हस्बैंड है मेरे, उनके पास भी कोई बिजनेस नहीं है तो वो भी पूरा पूरा सहयोग मुझे करते हैं। और अपना क्या टाइम लिमिट बना लो अपन कि भाई नहीं, इतना ये काम अपन को इतनी टाइम में करना है और अच्छे से अच्छा करना है तो ग्राहक संतुष्ट होगा। ऐसे करके मैं इसको मैनेज करती
0: हूँ। आपको सब्जी भाजी भी लाना पड़ती होगी बाजार से, तो इस काम में कौन सहयोग करता है? आपने अपने सहयोगी रखे हुए हैं?
1: हाँ, सहयोगी रखे हैं, बाकी बच्चों के साथ जाके मंडी से मैं ही लेकर आ जाती हूँ सब्जी, ताकि अपन को थोड़ा उसमें फायदा ज्यादा हो।
0: इस काम को करने के लिए घर वालों का कितना सहयोग?
1: पूरा पूरा सहयोग है घर वालों का, क्योंकि करना यही है, इसी बिजनेस पे हम टिके हुए हैं। हमने सोचा और तो कुछ अपन कर नहीं सकते, घर बैठ के ये अच्छा बिजनेस है, घर वालों का पूरा पूरा सहयोग है मेरे साथ।
0: इस काम को आप अकेले करती हैं कि आप अपने साथ किसी को रखी भी हैं, जैसे टिफिन लाना, ले जाना, छोड़ना घर? और
1: हाँ, सहयोगी रखे हैं ना भाई, जैसे कोई गरीब बच्चा है तो उस वो पढ़ाई के साथ साथ टाइम निकाल के दोनों टाइम टिफिन बांट देता है तो उसका भी पढ़ाई का खर्चा निकल जाता है, उसको भी काम मिल जाता है और अपना भी काम हो जाता है। भाइये भी रख रखी है एक दो महीने तो उनको सहयोग मिल जाता है, भाइयों को भी, और उनसे मेरे को सहयोग मिल जाता है ताकि मैं भी मतलब कुछ काम आगे बढ़ा सकूं।
0: मनोरमा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि लगभग कितने टिफिन आप बना लेते?
1: मैं 20-25 टिफिन बना लेती हूँ, ऑर्डर भी लेती हूँ मैं। अगर सब्जी पूड़ी वगैरह या दाल वाफले के ऑर्डर लेती हूँ मैं, 40-50 लोगों का तक बना सकती हूँ मैं दाल वफले लड्डू। और उसके बाद अगर ज्यादा जरूरत लगती है तो मैं सहयोगी रख लेती हूँ।
0: तो आप अपने किचन में भी ऐसे सामान, ऐसे साधन जुटाई होंगी जिसके द्वारा आप बनाती होंगी और जिसमें काम करती होंगी, तो आप उसके बारे में बताएं।
1: सामान तो मैंने बहुत मुश्किलों से इकट्ठा किया है बहुत मुश्किलों से। अच्छा, मेरे को

0: से हेल्प करने वाले भी मिले, परिस्थिति को देखते हुए आगे बढ़ाने वाले भी मिले। मैंने अगर ये बिजनेस चालू किया तो बहुत से लोग हेल्पर ऐसे मिले कि उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग किया। सामान भी मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया।
1: आपके सामान में क्या क्या है किचन में?
0: गैस भट्टा है, बड़ी कढ़ाई है, बड़ा कुकर है। करीब करीब बहुत से सामान ऐसे होते हैं जो मैं नहीं ला सकती थी। पर
2: आपको खरीदने में आपकी पूंजी भी लगी होगी?
0: धीरे धीरे करके मैंने, डाइनिंग टेबल है, थालियां है, ग्लास है, सभी चीजों की जरूरत लगती है। घर पे भी लड़के खाना खाने आते हैं, उनको खाना अच्छा लगा तो ऐसे करके बिजनेस हमारा आगे बढ़ता गया।
2: टिफिन से बहुत लोग खुश भी होते होंगे क्योंकि उन्हें घर जैसा खाना मिलता है, तो आपको कैसा लगता?
0: मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे आंटी जी करके, आंटी जी खाना बहुत अच्छा बनाती है, आंटी जी आप, भाभी जी खाना बहुत अच्छा बनाती है, आप बहुत खुशी होती है। वो उनकी फैमिली वाले आते हैं किचन तक देख के जाते कि आपके यहाँ साफ सफाई कितनी अच्छी है, आप खाना अच्छा बनाते, बच्चे हमारे खुश है आपके खाने से, तो मेरे को बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है।
2: बिल्कुल मनोरमा जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दूसरों को इतना स्वादिष्ट और घर का बना भोजन खिला रही हैं। मनोरमा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस व्यवसाय के बाद अपने आप को आप कितना आत्मनिर्भर समझती?
0: इस व्यवसाय के बाद मैं अपने आप को आत्मनिर्भर इतना समझती हूँ कि अगर मैं बैठ के और अपने निर्देशन में भी भाइयाँ रख के काम करूँ तो अच्छा बिजनेस कर सकती हूँ।
2: मतलब आप भाइयाँ रखी हुई हैं?
0: भाइयाँ मैंने रखी हुई है, टिफिन बांटने वाले रखे हुए हैं, बर्तन वाली है, रोटी वाली है, कोई सब्जी साफ करने वाली है, ऐसी भाइयाँ रख रखी है। अगर मैं नहीं भी करूँ और आराम से बैठकर उनसे काम करवाऊँ तो भी मैं बिजनेस अच्छे से कर सकती।
2: तो अब हमारी ये सखियाँ जानना चाहेंगी कि इसमें आपकी इनकम का क्या?
0: जितना समझ के और जितना समझदारी से अगर आप ये बिजनेस करोगे, आपका घर का खर्चा, खाने का खर्चा निकल जाएगा और वर्करों को भी आप दे सकेंगे, उसके बाद भी थोड़ा अपना हाथ खर्चा निकल जाए, इतना आप कर सकती है। अगर आप बड़े पैमाने पे करें तो उसके लिए आपको अच्छी जगह लेनी पड़ेगी, वर्कर ज्यादा रखने पड़ेंगे। मेहनत तो है इस काम में पर संतुष्टि होती।
2: मनोरमा जी, आपने हमारी सखियों को इतनी अच्छी जानकारी दी, जाहिर सी बात है कि इस काम को आगे करने के लिए हमारी सखियां भी आपसे जुड़ना चाहेंगी, तो वो किस तरह से इस काम की शुरुआत करें और कैसे?
0: अगर कोई महिला ये काम करना चाहती है तो वो दो टिफिन से भी चालू कर सकती। अगर आपके खाने में टेस्ट रहा तो दो से चार होंगे, चार से छह होंगे और परिवार में इतनी हेल्प मिल जाएगी, अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपना खुद का खर्चा निकालने में बहुत सहायता मिलेगी और आप बिजी रहेंगे। बहुत सी महिलाएं मेरे साथ काम करती थी, आज वो देखते हुए उनने खुद ने अपने टिफिन सेंटर डाल लिए, परिवार उनका वो भी चला रही है। बहुत सो के हस्बैंड काम नहीं करते हैं तो भी उनको सहयोग मिलता है कि ये बिजनेस अच्छा है, थोड़ी आइडियाज मेरे से ले लेते हैं वो, तो ठीक है मैं आइडियाज बता देती हूँ और उनको हेल्प मिल जाती है।
2: मनोरमा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारी सुनने वाली सखियों को और हमें भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और अब सुनवा देते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियों, बरसात का मौसम अपने साथ हरियाली और ठंडक तो लाता है, लेकिन नमी और गंदगी भी बढ़ा देता है। ऐसे में चेहरे के साथ साथ हाथों और पैरों के नाखूनों की देखभाल बेहद जरूरी हो जाती है। तो सखियों, घबराने की बात नहीं, रूपलावण में नाखूनों की देखभाल आप कैसे करें इस मानसून में, बात करते हैं सखियों। क्यों बरसात के मौसम में, जैसा कि आप जानती हैं कि नमी, बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ते हैं, ऐसे में नाखूनों की सफाई पर ध्यान न दिया जाए तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सप्ताह में एक बार नाखून अवश्य काटें। दूसरी बात सखियों, यदि नेल पॉलिश लगा रही हैं तो बीच बीच में नाखूनों को बिना नेल पॉलिश के भी रहने दें, ताकि उनकी प्राकृतिक चमक और मजबूती बनी रहे। इसी तरह सखियों, कभी कभी पैरों के नाखून ज्यादातर कड़े और बेजान से लगने लगते हैं, उनको काटना मुश्किल होता है, तो ऐसे में आप कुछ देर हल्के गुनगुने पानी में सेब का सिरका मिलाएं और कुछ देर के लिए डुबोकर रखें, फिर सादे पानी से धो लें। यह नाखूनों के फंगस इन्फेक्शन को दूर कर चमक बढ़ाता है और काटने में आसानी होती है, मुलायम जो पड़ जाते हैं। इसी तरह सखियों, नाखूनों को हमेशा साफ और सूखा रखें इस बरसात के मौसम में, और खास बात, अपनी डाइट में विटामिन ई, बायोटिक और हरी सब्जियां शामिल करें, ताकि नाखून अंदर से मजबूत और चमकदार बने। बात बरसात की है तो फिर सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

कोई भी हो, हर मौसम कुछ अलग कुछ खास लेकर आता है। बात जब बारिश के मौसम की हो तो जगह जगह भुट्टे भुंजने की खुशबू आ ही जाती है। भुट्टे को चाहे सेक कर खाओ या फिर इसके अलग अलग व्यंजन बनाओ, हर बार इसका स्वाद मन को भाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं भुट्टा पुलाव फूड जोन में। तो सामग्री नोट करें सखियों, एक कटोरी चावल, दो बड़े चम्मच भुट्टे के दाने, अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, दो से तीन हरी मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और तड़का लगाने के लिए एक छोटा चम्मच राई और जीरा, दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा और अंत में कड़ी पत्ता और धनिया और नमक चाहिए स्वाद अनुसार, एक बड़ा चम्मच तेल या घी का। और अब बनाने का तरीका हम आपको बता देते हैं सखियों। सबसे पहले चावल को धोकर दो कटोरी पानी में आधा घंटे के लिए भिगो दें। अब प्रेशर कुकर में तेल गर्म करें, राई जीरा कड़ी पत्ता दालचीनी डालकर छौंक लगाएं। अब अदरक हरी मिर्च डालें, साथ ही पानी सहित चावल कॉर्न नमक और लाल मिर्च पाउडर डालें। इसके बाद कुकर बंद करें, 5-10 मिनट बाद प्रेशर बन जाने पर आँच से उतार दें, सीटी निकाल दें, कुकर खोलें। अब अनार व गरम मसाला डालकर सर्व करें, जो आपके खाने को हेल्दी तो बनाता है साथ ही फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है सखियों। तो बनाइए और खिलाइए इस बरसात के मौसम में और हमें भी बताइए बनाकर कैसी लगी। और अब सुनवा देते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में इस भींगते मौसम का आनंद आपने गीतों के माध्यम से लिया। आपको गीत भी पसंद आए होंगे, लेकिन सखियों बारिश गीत तक सीमित नहीं, बल्कि आपको इस बरसाती मौसम में धरती पर गिरती बूंदों को सहेजना है, उनका संरक्षण करना है। यदि हम इन बूंदों को सहेज लें तो वर्ष भर पानी की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। सखियों, ये तो आप भी मानती हैं ना? इसलिए अपने घरों, विद्यालयों और कार्यालयों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था जरूर करें। सखियों, आप चाहें तो बरसात के पानी को अपने घर के आंगन में गड्ढा कर रेत, कंक्रीट, बजरी डालें और छतों की नाली से पानी जो बह रहा है एकत्र कर रिचार्ज पिट या सोखता गड्ढे में भेजें, जिससे वह जमीन में समाकर भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। आपको पर्याप्त पानी की सुविधा होगी और घर में सूख रहे बोर भी भरे रहेंगे। सखियों, थोड़ी जुगत तो लगानी होगी हमारी सखियों, इससे भूजल स्तर बढ़ेगा और गर्मियों में जो हमने पानी की किल्लत झेली है ना, उससे निजात मिलेगी। तो सखियों, देर किस बात की, बारिश की इन अनमोल बूंदों को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी जुगत लगा के और इससे जो आपको खुशी मिलेगी वो आपके लिए अनमोल होगी गर्मियों के मौसम में, जब आपके पास पर्याप्त पानी रहेगा। सखियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने, और अब दे अनुमति अपनी सखी नीलम चौरे को। नमस्कार।

0: Na sansani. Na uttejna. Na shor din raat. नहीं अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: अपनी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए छाया परमार और साथियों द्वारा गाए मालवी लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

अभी आप सुन रहे थे छाया परमार और साथियों द्वारा गाए माली लोकगीत लोक संगीत के कार्यक्रम में। ये आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं वर्षा बंसीवाल द्वारा गाई गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वर्षा बंसीवाल द्वारा गाई गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म रोजा से, आवाज है मिनी मिनी की।

यार रहमान का संगीत पीके मिश्रा के लिखे बोल मिनी मिनी की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म रोजा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है खामोशी द म्यूजिकल।

0: जतिन ललित का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे बोल, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म खामोशी द म्यूजिकल से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस प्रकार सूर्य को उसके प्रकाश के बिना नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार प्रकाश भी सूर्य के बिना नहीं हो सकता। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार सूर्य और उसके प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व और शक्ति एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर है। भोपाल के वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि समान नागरिक संहिता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और 18 जुलाई को होने वाली अगली बैठक में इसका बिल लाया जाएगा।
1: तो समान नागरिक संहिता UCC के ऊपर जो दल गठित किया गया था, उसने अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि यह बिल इस विधानसभा के अंदर लाया जाए और मध्य प्रदेश में इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस हेतु कि इस बार की अगली कैबिनेट 18 जुलाई को भोपाल जिले में जगदीशपुर के अंदर विशेष कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है।
0: कैबिनेट ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी बधाई दी, जिसमें प्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ भी शामिल हैं। एमपी टेक ग्रोथ के तहत 40,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जिससे 34,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में 28,000 करोड़ रुपए की लागत से AI डेटा सेंटर भी स्थापित होगा। कैबिनेट ने वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने पंचायतों के खातों को डिजिटल बनाने के लिए दृष्टि पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 4 दिवसीय भारत टेक्स 2026 में शामिल हो रहे हैं। यहां वे देश विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों से संवाद कर प्रदेश में निवेश के नए अवसर तलाशेंगे। इस दौरान राज्य में टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवेयर क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित करने की पहल की जाएगी। मुख्यमंत्री कई कंपनियों के साथ एकल बैठकें भी करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज कर दिए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। इसके तहत 1.25 लाख एकड़ से अधिक जल निकायों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। भूजल पुनर्भरण के लिए भी बड़े पैमाने पर संरचनाएं बनाई जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि 12,500 एकड़ में हरित क्षेत्र भी विकसित किए जा रहे हैं। भोपाल में आज एक नई अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आंचलिक विज्ञान केंद्र में इसका उद्घाटन करेंगे। ये दीर्घा नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। इसमें ब्रह्मांड और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान और गगनयान तक की उपलब्धियां भी यहाँ प्रदर्शित होंगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में इस मानसून सीजन में जुलाई महीने में पहली बार बारिश सामान्य से कम दर्ज हुई है। अब तक प्रदेश में करीब 9.5 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से 3% कम है। पिछले 5 दिनों से बारिश की रफ्तार थमी हुई है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में तेज धूप रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने पर प्रदेश में फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। बात खेल की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल लॉर्ड्स में इतिहास रच दिया। भारत ने एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रनों से हराया। ये लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में पहला महिला टेस्ट मैच था। इंग्लैंड को 457 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम 186 रन पर आउट हो गई। ये भारत की पिछले 11 टेस्ट मैचों में 7वीं जीत है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने टीम को बधाई दी है। कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी टीम को शुभकामनाएं दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिले भर में दस्तक अभियान का प्रथम चरण आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान के तहत गुना, शिवपुरी और रायसेन जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 5 साल तक के सभी छोटे बच्चों को घर घर जाकर आयरन सिरप, जिंक और ORS के घोल वितरित किए जाएंगे। नर्मदापुरम जिले में मेरा युवा भारत के तहत जिला पेंशन कार्यालय में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कार्यक्रम आयोजित कर स्वयं सेवकों को पेंशन विभाग की कार्यप्रणाली, ऑनलाइन फाइल संचालन और डिजिटल प्रशासन की जानकारी दी गई। और बुरहानपुर जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कल पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप

0: के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुँचा रहे हैं।
3: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए, अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
4: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
5: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू के एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं हम, जहां हम आपके पत्रों को शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपके पसंद के मीठे मीठे नगमे। तो कार्यक्रम में पहला गीत सुनवा देते हैं आपको, जो है फिल्म प्रेम पुजारी से, और इसकी फरमाइश हमें मिली है महेशवाड़ी तालुका मलकापुर से, शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की तरफ से। इसके अलावा ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां ने आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें लिखा है। और एक और पत्र मिला है हमें महादेव घाट अमलेश्वर से, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर की तरफ से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये गीत फिल्म प्रेम पुजारी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़।

एसजी बर्मन का संगीत, नीरज के लिखे बोल, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म प्रेम पुजारी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है सपना संगीता रोड इंदौर से। लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया की तरफ से। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

एस डी बर्मन का संगीत मजरूह के लिखे बोल, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म ज्वेल थीफ से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है सरोज शौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोत्रा मुस्तबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की तरफ से, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा का भी हमें पत्र मिला है। इसके अलावा एक और पत्र मिला है कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति और शिवानी श्रीमाली की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है अगला गीत फिल्म हसीना मान जाएगी से।

कल्याणजी आनंद जी का संगीत अख्तर रोमानी के लिखे बोल, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म हसीना मान जाएगी से। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और फरमाइश ये गीतों के क्रम में अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है गीता दत्त की आवाज में। फिल्म का नाम है साहेब बीबी और गुलाम और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट की तरफ से, रेलवे कॉलोनी भटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और उनके पूरे परिवार की तरफ से। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक की ओर से भी। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

हेमंत कुमार का संगीत शकील बदायनी के लिखे बोल गीता दत्त की आवाज में गीत सुना आपने साहेब बीवी और गुलाम से। फिल्म का अगला और अंतिम गीत अब आपको इस कार्यक्रम का सुनवाएंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है फर्ज और इस गीत की फरमाइश मिली है हमें नेपाल पैलेस सागर से। लिखने वाले श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के लिखे बोल, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म फर्श से। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी तरह अपने पत्र हमें भेजते रहें। हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462002। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि समान नागरिक संहिता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और 18 जुलाई को होने वाली अगली बैठक में इसका बिल लाया जाएगा। कैबिनेट ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी, जिसमें प्रदेश के खिलाड़ी क्रांति गौड़ भी शामिल हैं। समान नागरिक संहिता समिति ने कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अपना प्रतिवेदन सौंपा। मुख्यमंत्री ने समय पर रिपोर्ट देने के लिए समिति के सदस्यों का धन्यवाद किया। ये प्रतिवेदन 3 खंडों में तैयार किया गया है। इसमें प्रस्तावित विधेयक में 4 भाग और 404 धाराएं शामिल हैं। भोपाल में आज एक नई अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आंचलिक विज्ञान केंद्र में इसका उद्घाटन करेंगे। शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज कर दिए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। प्रदेश भर में दस्तक अभियान का प्रथम चरण आज से शुरू हो रहा है। ये अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान के तहत 5 साल तक के सभी छोटे बच्चों को घर घर जाकर आयरन सिरप, जिंक और ORS के घोल वितरित किए जाएंगे। और मौसम विभाग ने आज कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में तेज धूप रहने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। शाम 6:00 सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 7:21 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। सुर्खियों में सुनवाया जाएगा रात 8:00। 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम कहकशा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 पर सुन सकेंगे श्रुति अधिकारी का ध्रुपद गायन राग मालकोस। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है छाया परमार और साथियों द्वारा गाए लोकगीत, और ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे छाया परमार और साथियों द्वारा गाए मालवी लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं वर्षा बंसीवाल द्वारा गाई गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वर्षा बंसीवाल द्वारा गाए गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है हसीना मानजाई की फिल्म से। आवाज़ है संजय दत्त, गोविंदा, अलका याग्निक, सुदेश भोसले और सोनू निगम की।

अनु मलिक का संगीत, नितिन रायकवार के लिखे बोल, संजय दत्त, गोविंदा, अलका याग्निक, सुदेश भोसले और सोनू निगम की आवाज़ में गीत सुनाने फिल्म हसीना मान जाएगी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म हम किसी से कम नहीं से। आवाज़ है अलका याग्निक, सोनू निगम और साथ ही अनु मलिक की।

अनु मलिक का संगीत आनंद बख्शी के लिखे हुए बोल, अलका याग्निक, सोनू निगम और अनु मलिक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हम किसी से कम नहीं से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है आरजू बानो की आवाज़ में, फिल्म का नाम है आंटी नंबर 1।

आनंद मिलिंद का संगीत, समीर के लिखे बोल, आरजू बानू की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म आंटी नंबर वन से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म जोड़ी नंबर वन से।

0: और सुनिधि चौहान की आवाज़ में संगीत था आनंदराज आनंद का और बोल लिखे थे देव कोहली ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि समान नागरिक संहिता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और 18 जुलाई को होने वाली अगली बैठक में उसका बिल लाया जाएगा। कैबिनेट ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी, जिसमें प्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ भी शामिल है। सामाजिक नागरिक संहिता समिति ने कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अपना प्रतिवेदन सौंपा। मुख्यमंत्री ने समय पर रिपोर्ट देने के लिए समिति के सदस्यों का धन्यवाद किया। ये प्रतिवेदन 3 खंडों में तैयार किया गया है। इसमें प्रस्तावित विधेयक में 4 भाग और 404 धाराएं शामिल हैं। भोपाल में आज एक नई अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आंचलिक विज्ञान केंद्र में इसका उद्घाटन करेंगे। शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज कर दिए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। प्रदेश भर में दस्तक अभियान का प्रथम चरण आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान के तहत 5 साल तक के सभी छोटे बच्चों को घर घर जाकर आयरन सिरप, जिंक और ORS के घोल वितरित किए जाएंगे। और मौसम विभाग ने आज कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में तेज धूप रहने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर।
2: कार्यक्रम में आप सब श्रोताओं का आकाशवाणी भोपाल की ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय है हमारा लोक गाथाओं का उद्भव और विस्तार। आज मेरे साथ ऐसे अध्येता हैं जिन्होंने न केवल साहित्य बल्कि लोक साहित्य की अंतर्दृष्टियों को भी देखा है। मैं परिचय कराना चाहूँगा डॉक्टर कैलाश चंद्र पंत, जो हिंदी साहित्य के वरिष्ठ लेखक और साहित्यकार रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे पास बैठे हैं डॉक्टर महेश चंद्र शांडिल्य, जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनजाति और लोक साहित्य पर गहरा अध्ययन किया है, भाषा पर गहरा अध्ययन किया है। और मैं वसंत निर्गुणे आज लोक गाथाओं के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त बात करेंगे, लेकिन वे गाथाएं जो सदियों से हमारे लोक में प्रचलित रही हैं उनके पीछे अवधारणा क्या है, उनकी आज तक की सतत बहती हुई धारा हमारे तक आई है तो उसके पीछे कौन से कारण हैं। तो मैं चाहूँगा कैलाश चंद्र पंत जी से कि हमें बताएं लोक गाथाओं का अवतरण हमारे लोक में किस तरह से हुआ।
3: देखिए निर्गुणे जी, ये बड़े अच्छे विषय को, रोचक विषय को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। और जहाँ तक इसके उद्भव का प्रश्न है, लोक गाथाएं कहाँ से इनका प्रारंभ हुआ, शुरुआत कैसे हुई, तो मनुष्य की वृत्ति कुछ है और वह वृत्ति है कुछ कहने की। कहन को किस ढंग से कहा जाए, जो कहने की बात है उसमें निरंतर सुधार होता रहा। जब मनुष्य ने वाणी पाई होगी और जब एक भाषा ने कोई रूप स्वरूप ग्रहण कर लिया होगा
2: जी,
3: तो उसकी अभिव्यक्ति मचल उठी होगी, कम से कम उन अनुभवों को दूसरे से साझा करने के लिए जो अनुभव उसने प्राप्त किए हैं। और ये अनुभव उसने प्रकृति से प्राप्त किए, उसमें कईयों में रहस्य देखा होगा, उन रहस्यमय बातों को उसने और अच्छे आकर्षक ढंग से अपने अन्य साथियों से साझा किया होगा। इस साझेदारी में ही लोक गाथाओं का विकास और विस्तार हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता रहा कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई एक विशेष व्यक्ति ने कुछ विशेष पराक्रम जैसा किया हो किसी पशु के साथ संघर्ष में उससे विजयी रहा हो, उस कथा को एक नायक के रूप में उस

0: व्यक्ति को बताकर उन्होंने कुछ बात अपनी ओर से जोड़कर की होगी। अनुभव के साथ साथ कल्पनाशीलता जो मनुष्य की थी वह भी व्यक्त होने लगी। वे लोक गाथाएं जितनी आकर्षक बनती गईं वह समाज में उतनी ही व्याप्ति पाती गईं, और समाज में जब वो व्याप्ति पा जाती हैं तो वह परंपरा में चलने लगती हैं। इनका जो विस्तार होता है, आपने देखा होगा किसी संत के बारे में उनका कुछ अनुभव हुआ, वो संत ने किस तरह से शिक्षा दी, तो इन लोक गाथाओं में आपको सामाजिक शिक्षण भी मिलेगा अगर इनका बारीकी से अध्ययन करें। प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण तो है ही उनमें, लेकिन कुछ बारीक ऐसे शिक्षाप्रद अनुभव उन्होंने समाज से बांटे हैं जिनको समाज ने बाद में चलकर मूल्य के रूप में स्वीकार कर लिया।
1: कहने का मतलब जीवन के जितने भी मूल्य हो सकते हैं उनको बनाने के लिए इन गाथाओं का
0: बहुत
1: सृजन हुआ
0: हुआ,
1: और वो भी वाचिक परंपरा। कि मैं डॉक्टर महेश शांडिल्य हमारे साथ हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर लोक कथा, लोक गाथा, लोक गीत, ये सब जो विधाएं और लोक विधाएं हमारे समाज में प्रचलित रही हैं, आखिर लोक गाथा किसे कहेंगे हम?
2: जैसा कि पंत जी ने बताया और आपने भी जिक्र किया नगुणा जी, कि पहले लोकगीतों का ही सृजन हुआ, उसके बाद जैसा कि कहा पंत जी ने कि किसी माध्यम को लेकर या गाथाओं को लेकर, उन लंबी लंबी गाथाओं को लेकर उन्होंने सृजन किया, और चूंकि ये वाचिक परंपरा में रही है तो इनके गायनकर्ता जो रहे हैं उन्होंने भी अपनी ओर से उनमें कुछ जोड़ा जो जुड़ सकता। मान लो पहले 8 लाइन की गाथा थी या 10 लाइन की गाथा थी, तो 2 लाइन जो दूसरा गा रहा था उनने भी जोड़ी अपने तरफ से, तो जुड़ते जुड़ते उस गाथा का एक काफ़ी बड़ा इतिहास तैयार हुआ। और गाथा का मतलब ये है, गाथा में 2 अक्षर हैं, गा और था। गायन, वादन और नृत्य के माध्यम से किसी चरित्र नायक को या किसी गाथा को स्थापना करना, था का मतलब थापना, स्थापना करना, ये गाथा का मतलब है। और गाथा में जैसे बहुत सी जनजातियों में लोक में ये सब चलता रहा, तो जनजातियों में ज़्यादा मिला, जनजातियों से फिर लोक में आया, और लोक से फिर अब आजकल है। लेकिन ये बहुत अच्छा रहा कि इनका दस्तावेजीकरण नहीं हुआ, इसलिए वो वाचिक परंपरा में आज तक जीवित है। अगर वो उसका दस्तावेजीकरण हो जाता, आखिर आजकल तो अपन करने लगे हैं, लेकिन अगर हो जाता तो फिर वो साहित्य में आ जाता, वो लोक साहित्य या जनजाति साहित्य नहीं रहता।
0: नहीं, पर शांडिल जी एक प्रश्न मेरा रहेगा, वो जनजातियों में आया और उसके बाद लोक में आया
2: जी, जी।
0: तो आप क्या जनजातियों को उस लोक से बाहर समझते हैं?
2: नहीं, उनको
1: नहीं, मैं सोचता हूँ जी डॉक्टर शांडिल्य कि सारा जनजाति भी और दूसरा ग्रामीण समाज जिसको शहरी समाज भी हम ले लें,
2: वो लोक में,
1: वो सब लोक में ही आता
2: जी,
1: है
2: जी, जी।
1: लोक के बाहर कोई
0: लोक
1: नहीं,
0: के बाहर
1: है,
0: कुछ
1: लेकिन,
0: नहीं।
1: हाँ,
2: बिल्कुल।
1: लेकिन केवल पंत जी मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि जनजातियों के जीवन का जो आधार है वो आदिमता रही है, और जो शहरी जीवन का आधार है वो बहुत कुछ उनसे अलग उससे रहता है, और उसमें एक बौद्धिकता का पुट जो है लोक में हमें ग्रामीण समाजों में और शहरी समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जनजाति समाज पूरी तरह से अपनी परंपराओं से ही जुड़ा रहता है, और परंपराओं की रक्षा करने के लिए वो अपने जीवन पद्धति को जो वर्षों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, उसी को अपनाता है। मैं सोचता हूँ कि लोक गाथा जो है, पहले तो वो कथा है
0: निश्चित,
1: फिर वो काव्य है, कविता है,
0: कविता है,
1: फिर उसके बाद वो गायन है। तो सबसे पहले उसका धर्म गुण ये होगा कि वो गाया जाता है। अगर हम उसको देखें तो इस संसार में, इस पृथ्वी पर सबसे पहले कोई गीत आया होगा, उसके बाद में आए होगी कथाएं, और कथाओं के बाद में उसके भी विभाजन हो करके लोक गाथा, लोक कथाएं, ऐसी चीज़ें आईं जो मनुष्य की स्मृति में पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका कारण ये है क्योंकि वो स्मृति की चीज़ है, वो लिखित नहीं है ताकि पुस्तक में पढ़ी रहे, लेकिन उसके साथ पुस्तक में पढ़ी हुई काव्य तो हो सकता है, लेकिन उसके साथ गायन नहीं है, उसके साथ संगीत नहीं है, उसके साथ नृत्य नहीं है। बहुत सारी मैंने गाथाओं को देखा जो इसका क्रम, जैसे डॉक्टर शांडिल ने थोड़ा सा संकेत दिया था कि सबसे पहले हम जिसको आदिम मानते हैं, जनजातियों को ही माना जाएगा, ये लोक गाथाओं का स्वरूप हमें जनजातियों की स्मृति की गाथाओं से मिलता है। उसके बाद में हम जो लोक समाज है उन्होंने

0: ने अपने को विस्तारित करने के लिए, जैसे आपने कहा कि एक कोई नायक हो जाता है, नायक
1: जी, मेरा मूल मतभेद इस बात पर है
0: जी
1: कि आप जब जनजाति से जो चला वो लोक में, जनजाति भी लोक के अंतर्गत ही है। हाँ, किसी चीज का संस्कार होता है
0: जी,
1: उनकी गाथाओं को कहीं प्रबुद्ध लोगों ने या समझदार लोगों ने या कुछ अधिक विवेकवान लोगों ने और परिष्कृत करके उसे आगे पहल दिया
0: जी।
1: तो वो गांव तक पहुंच गया, गांव से वो परिष्कृत होकर थोड़ा और आगे आ गया, वो शहरों में। तो शहरी सभ्यता तो बहुत बात की है, जब हम लोक गाथा की बात करेंगे तो हमें उस पूरे समाज का ध्यान रखना पड़ेगा जो वनवासी थे, जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, वे तो आदिवासी हम मानने लग गए, उन्हें सभ्यता के सूर्य का स्पर्श नहीं हुआ ऐसी हमारी मान्यता बन गई, जबकि वो ज्यादा सभ्य हैं हमसे,
0: ज्यादा संस्कृतिवान हैं,
1: संस्कृतिवान हैं, मानवीय गुणों से संपन्न हैं। जिस ढंग से अंग्रेज या यूरोपियंस ने कहा था कि भारतीय समाज एक पिछड़ा हुआ बर्बर असभ्य समाज है और हम उन्हें सभ्यता की रोशनी दिखाने के लिए वहां गए हैं।
0: इसमें मुझे आपने जो बात कही उसमें एक बीच रूप दिखाई देता है कि पहली कल्पनाएं लोक गाथाओं की जनजातियों ने की जंगल में प्रकृति के माध्यम
1: जो भी प्रकृति,
0: उसके बाद में
1: प्रारंभिक
0: फिर आई वो हमारे पुराण, ये पुराणों में,
1: पुराणों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो
0: अभी पुराण कथा को भी गाथाएं ही कहा जाता है,
1: मैं अभी पुराणों की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं केवल ये समझाना की कोशिश कर रहा हूँ कि जनजातियां भी उसी लोक की अंश रही है जो समाज से थोड़ी सी कटी हुई रही, उनका क्षेत्र वन और पर्वत रहे, लेकिन बाकी समाज जिसने जो खेती हर बनाई, ये तो सभ्यता के विकास के साथ हुआ ना कि किसी ने खेती की, कोई पहले जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, फिर झोपड़ियां बनी, फिर मकान बने, ये तो विकास की प्रक्रिया।
0: हाँ, तो जो भाषा बनी, मैं सोचता हूँ कि लोक गाथाओं का स्वरूप क्या हो सकता है। मैं देखता हूँ कि कुछ गाथाएं ऐसी होती हैं जो जनजातियों के जीवन और शैली से निकल करके आती है, उसमें उनके नायक होते हैं, लेकिन कुछ गाथाएं ऐसी होती हैं जैसे युद्ध और प्रेम की गाथाएं, प्रेम परक गाथाएं, उसमें भी नायक होता है, युद्ध में भी नायक होता है, उन नायकों की जो चरित्र विस्तार किया जाता है। इसके साथ साथ ये होता है कि कुछ कथा गीत होते हैं, कथा गीत में और लोक गाथा में अंतर क्या है, बताएंगे आप डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसके बारे में?
2: हाँ, जैसा कि निर्गुण जी आप कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ इस बात से कि उनमें तीन चार प्रकार की गाथाएं जो अभी तक अपने लोक गाथाओं को देखा है तो उनमें तीन चार प्रकार के मिलते हैं। एक तो ये कि वीर गाथाएं जिसमें कोई नायक उनका हुआ हो, ये किसी कोई वीर रहा हो, जैसे कि पंत जी ने शुरू में ही किया था, और प्रेमाख्यान, प्रेम के ऊपर भी उनकी गाथाओं का मिलता है, और चरित नायक, अगर कोई उनके उसमें नायक रहे हैं तो वो चरित्रों के ऊपर भी मिलता है, और सबसे एक है कि लोक देवताओं पर एकाग्र, इन पर भी उन्होंने गाथाओं का सृजन किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो गाथाएं हैं ये चूँकि प्रकृति के बहुत निकट वो लोग रहे हैं, और प्रकृति के निकट होने के कारण प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, ये मूल बात लोकगीतों में भी और लोक गाथाओं में भी, लोक गाथाओं में चरित्र है सारा,
1: उसके अलावा भी प्रकृति से प्राप्त अनुभव,
2: अनुभव
1: जो मुख्य बात है, वो जो अनुभव उनको मिल रहे हैं।
0: किसी विद्वान ने कहा है, पंत जी इस बात पे मुझे याद आया
2: जी,
0: कि अगर किसी भी देश की संस्कृति को जानना हो तो उनकी गाथाओं को देख लीजिए।
1: बिल्कुल सच
0: है ना। तो मैं सोचता हूँ कि गाथाओं में आप काल को किस तरह से देखते हैं, काल उसमें किस तरह से आता है, जो हम देखते हैं कि बहुत पुरानी पुरानी गाथाएं हमारे पास चली आ रही हैं, उसमें समय भी है, जीवन भी है, और वो जीवन है जो आदिम जीवन है या पौराणिक जीवन है या सामाजिक जीवन है, वो सब है, लेकिन आज वो गाथाएं अभी तक जीवित हैं, जीवंत हैं, लोगों के कंठों में गाई जा रही हैं, उसका प्रस्तुतिकरण है, कहीं वो नृत्य में है तो कहीं गायन में है ना। तो इस तरह से आप उसको काल को किस तरह बांधते हैं, उसमें समझते हैं
1: काल को, आप किसी सीमा में हम अपनी सुविधा के लिए बांधते हैं, वह निरंतर है, अबाध है। एक समय ऐसा था, रहा, जब पहली बार मनुष्य ने एक चेतना प्राप्त की और उस चेतना से उसे कुछ ज्ञान अर्जित हुआ। धीरे धीरे मनुष्य ने भाषा का विकास किया, जब भाषा का विकास हुआ तो अभिव्यक्ति की क्षमता अपने आप बढ़ गई। आप देखिए, जो व्यक्ति बोल नहीं पाता उसको देखिए, और जो बोलता है वो बोलने वाला अलग अलग अनुभवों को, अलग अलग अनुभूतियों को नए नए शब्दों में आपके समक्ष रख देता है। काल को आप इस तरह से मत बांटिए कि वो आदिम काल था और वो सभ्यता का काल था। मनुष्य की वृत्तियों के धीरे धीरे विकास हुआ है। जिस मनुष्य को हम आज सभ्य मनुष्य कह रहे हैं उसने एक बहुत लंबी यात्रा की है, लेकिन सभ्यता के जो मूल अंश हैं, अब यहाँ पर वो आपकी बात सही बैठती है कि वो क्या कारण है कि वो गाथाएं आज भी जो आदिम युग में बनी होंगी, जिसे आप आदिम युग कह रहे हैं, उस आदिम युग की गाथाएं आज भी लोगों की स्मृति में हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि हम अपनी जातीय स्मृतियों के प्रति हमारी प्रवृत्तियां बहुत आकर्षक होती हैं।
0: एक बात और मुझे आपकी बात से मन में आ रही है कि लोक गाथाओं में जिन लोगों ने भी उसको बुना है अपनी कल्पना के आधार पर, क्योंकि उसमें भाषा तो काम करती ही है, बोलियां तो काम करती ही थी, अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन बोलियां ही हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारे पूर्वजों ने इन लोक गाथाओं की संरचना की, इनका जो ताना बाना बुना, वो समय के सार को उसमें बुना, ताकि वो सदैव समय में एक सार आज तक हमारे पास आए। जैसे मूल्य बोध है, मान ली जीवन के, तो जो जीवन के मूल्य बोध है वो तो आदिम समय में भी वही है, आज भी वही है, सत्य तो सत्य है। आखिर गाथाओं में जीवन के उस सार को गुंभित किया गया जो मनुष्य को कहीं ना कहीं बहुत ऊर्ध्वगामी ले जाता है,
1: है ना? ये बिल्कुल ठीक।
0: लोकगीतों की जरूरत पड़ी एक आनंद के लिए, एक नृत्य के लिए, फिर अभिव्यक्ति के लिए, छोटी छोटी अभिव्यक्तियों के लिए। जब लंबी अभिव्यक्ति के लिए किसी विधा की जरूरत पड़ी तो वो लोक गाथा का उन्होंने संरचना की, उसमें समय के वे मूल्य भी आए जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, संस्कृति को संस्कृति बनाती है। तो इसीलिए जो वो कहा गया है कि अगर आपको किसी देश की संस्कृति को देखना है तो उसकी गाथाओं को आप देख लीजिए, आख्यानों को देख लीजिए। तो इन आख्यानों में ऐसी कौन सी ताकत है? मैं सोचता हूँ कि उसके पीछे जब गाथा गाई जाती है, गाथा में जब मिथक घड़े जाते हैं, तो उसमें प्रकृति में पहाड़, नदी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब कुछ होते हैं, और गाथा में वे सब एक तरह की उनके पास भाषा होती है, वे बोलने लगते हैं। गाथा में एक पक्षी भी बोलने लगता है, गाथा में एक पेड़ से भी बातचीत हो सकती है। इस तरह से मनुष्य की एक जो अप्रोच है, या एक कहना चाहिए कि सन्निधि, वो प्रकृति के साथ भाषात्मक हो जाती है और वो काव्य रचना शुरू करता है, और वही काव्य जो है हमारे गाथा के रूप में प्रकट होता है।
1: जो निरंतरता की बात है वो बात आपके इस कथन से प्रकट नहीं होती। निरंतरता का कारण यह है कि उन लोगों ने मनुष्य के जीवन के ऊर्ध्वगामी संकेतों को, जो उसे ऊंचा उठाएं, उन संकेतों को जो समझने की कोशिश की है, जिस प्रकृति की पूजा उन्होंने बताई हमें, नदी हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, वृक्ष हो, पौधे हो, पशु हो, इसने मनुष्य के, हम आज इसको बड़े दर्शन में कहते हैं ना कि वह एकात्म मानववाद है। ये जो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यह जो बात कही गई है यह उसी अनुभव से उद्भूत है। बाद में विद्वानों ने इसे भाषा दी, लेकिन उनके जो अनुभव थे जो मनुष्य को ऊर्ध्वगामी विकास की ओर प्रेरित कर सकते थे, जैसे शौर्य, अगर वीर गाथाएँ हैं उनमें तो उसमें शौर्य भी जरूरी था। जिस जीवन को वो जी रहे थे उसमें अगर शौर्य ना होता तो उन्हें पलायन करना पड़ता, तो पलायनवादी दृष्टि नहीं रखी मनुष्य की।
0: एक बात और लोक में मैंने देखी है, डॉक्टर महेश शांडिल, मैं देखता हूँ कि जो लोक नायक बनाए जाते हैं लोक में या स्वीकृत किए जाते हैं, या तो शौर्य काम आता है उसकी वीरता, या प्रेम में इतना डूब जाता है, जो प्रेम, युद्ध और प्रेम दोनों से कोई ना कोई नायक की एक निष्पत्ति होती है। तो हमारे लोक में एक बड़ा एक सिद्धांत तय किया था कि उसे हम लोक देवता बनाए। जैसे हरदोल जू का एक बहुत साधारण उदाहरण है, बहुत सामान्य उदाहरण सबको मालूम है, उसी प्रकार एक इतिहास पुरुष है वो, उसको हमने लोक नायक को बनाया, लोक देवता बना दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परंपरा में इतिहास भी लिखा जाता है।
1: निश्चित निश्चित
0: लोक गाथाओं के माध्यम से परंपरा में एक इतिहास काम करता है, जिसमें पौराणिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, और भी जातीय स्मृतियों का भी हो सकता है, कल्पना का भी हो सकता
1: है। लेकिन प्रेम, और आपने कहा केवल प्रेम और शौर्य, दो बातें ही नहीं थी। काग भड्डूरी का सारा काव्य, जो कहावतें हैं या जो काव्यमय हैं, वो क्या है? आपको कृषि वैज्ञानिक से वो बातें नहीं मिलेंगी जो काग भड्डूरी अपने उन दोहों में कह गए। वो भी लोक काव्य, लोक गाथा है।
0: लोक
1: जी, यह मैंने जो जीवन के अनुभव, उन्होंने जो भी जहां अनुभव आए उनको जो संचित,
0: उन्होंने प्रकृति का सार पकड़
1: लिया।
2: जैसा कि अभी निर्गुण साहब पंत जी ने आपने जो कहा, प्रेमाख्यान वाली बात हो गई और किसी चरित्र को देवता बना देना, इसी प्रकार आलाउदल की जो कथा है वो उनको वीरत्व की भावना वहाँ पर है ना। पर चरित्र की भी जैसे अपन
0: पंत जी, आलाउदल तो विश्व की सबसे लंबी गाथाओं में,
1: सबसे लंबी गाथा निश्चित आला,
0: 52 लड़ाइयों का इतना विस्तार से लोक ने रचा है कि वो संसार की सबसे लंबी गाथाओं में गिनी जाती है।
2: पूरे उत्तर भारत में वो गाया जाता है। अब जैसे कि गाथाएं किस प्रकार गाई जाती हैं, तो हमारे निमाड़ में भी, हर निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सभी जगह है,
0: पूरे देश में
2: गाथाओं का रहा। तो इन्होंने भी यही बात है कि देवता बनाने के लिए, मतलब ये देवत्व वाली कथा है, तो इसको गाया कैसे जाता, थोड़ा सा मैं गुनगुना के आपको बता रहा हूँ कि ये देव मालन की कथा है, जो भीलट और सीलट जो देव हुए हैं उनके, तो ये हमारे हरदा क्षेत्र में हुए हैं, और सिवनी बनापुरा के पास एक नदी का भी नाम हिरणा नदी, तो वो नदी भी आज भी है। तो बड़ा प्रामाणिक जानकारी इनसे प्राप्त हुई है, लेकिन वो गाते कैसे थे, तो ये इसमें वाद्य नहीं बजते हैं। जब ये मथवाड़, इनको मथवाड़ गाथा कहा जाता है, तो इनमें वाद्य नहीं बजता, लेकिन गायन चलता है। 5-7 आदमी बैठते हैं और गायन करते हैं कि ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा बसे रे, शिव जी बस्या।

0: குரு பாவளா, குரு கூங்கா குரு பாவளா, குரு தேவன கா தேவ். அரே குரு கா தோத்தியா தோமா, நதி ஹிரணா கா காட் ரே, தர்ம கா தேவ்.
1: பஹுத் படியா.
2: கோண்ட ஜனஜாத்தியோ மே தீன் மஹா காதாயே காயி ஜாத்தி ஹே பந்த ஜி. ஏக கோண்டவானி, தூசரி பண்டவானி, ஓர் தீசரி ராமாயணி. யே காதாயே அப்னி தரஹ சே गोंड समाज ने या जनजातियों ने इसको स्वीकृत किया है. गोंडवानी में गोंड राजाओं की गाथाएं गाई जाती हैं. बहुत लंबी लंबी गाथाएं रात भर गाई जाती है. बाने पर एक वाद्य होता है उनका बहुत प्राचीन,
3: प्रधान लोग शायद
2: प्रधान लोग गाते हैं
3: जी.
2: और रामायण में उन्होंने राम को नायक नहीं माना है, लक्ष्मण को नायक माना है. पंडवानी में जो महाभारत के नाम से जनजाति रूप है उसमें भी अर्जुन को नायक नहीं माना है बल्कि भीम को माना है. क्योंकि उसका कारण ये है कि दोनों नायक ऐसे हैं जो उनकी जनजातियों के जीवन विचारधारा और
1: उसके अनुरूप
2: संस्कृति के अनुरूप अनुरूप बने हैं.
1: ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. इसके बाद एक सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जो आपके मध्य भारत क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में या जो लोक गाथाएँ हैं, आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए या कुर्मांचल और गढ़वाल में चले जाइए, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, आदिवासी क्षेत्रों में चले जाइए, आपको कुछ न कुछ भाषा के अंतर है लेकिन कथा के सूत्र वही मिलेंगे जो बस्तर की गाथाओं में हैं. वही आपको मेघालय और मिजोरम वहाँ की गाथाओं में मिल जाती.
3: भाषाई अंतर जो है कि भाषाई अंतर भले ही हो लेकिन धुन या उनकी वो एक मिलेगी,
1: एक मिलेगी.
2: लेकिन भाषाई अंतर ने एक बात बहुत बड़ी उत्पन्न की लोक गाथाओं में, उसके स्वरूप में बहुत सारा विस्तार हुआ,
3: विस्तार हुआ.
2: क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय क्षेपक हैं
1: वो जोड़ दिए,
2: वो उसमें जुड़ जाते हैं.
1: वैसे ही राम कथा का क्या हुआ, भारत में जो हम लोग जिस रामचरित मानस से परिचित हैं वह राम कथा तिब्बत में कुछ भिन्न रूप ले लेती है, थाईलैंड में कुछ और भिन्न रूप ले लेती है.

0: इंडोनेशिया में कुछ और ले लेती है, बाली द्वीप में अलग है, सुमात्रा में कुछ अलग है, कोरिया में रामकथा है।
1: इनके प्रस्तुतिकरण के भी अलग अलग
0: तरीके हैं,
2: और यही तो विस्तार है।
0: हाँ। ये विस्तार है
1: जो कहीं वो पहले शैली में,
2: और सर कहीं वो पंत जी, आदरणीय निर्गुण जी, ये कितने बड़े आश्चर्यजनक बात है लोक की, कि एक ही समय में एक ही व्यव काम करती है। ये बहुत
1: समय का
2: गहरा मतलब समकाल जो है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जब लोग आते हैं यहाँ पर, अपन उनके गीत सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि निमाड़ का गीत है ये, इसकी धुन मिल रही है।
1: जैसे ढोला मारू की कथा,
0: अफ्रीकन
1: पंत जी, ढोला मारू की कथा लगभग उत्तर भारत में सब जगह, पूरे उत्तर भारत में गाई जाती है ना। है तो वो मूलतः राजस्थान की, लेकिन पूरी गाथा जो है उत्तर भारत के सभी बोलियों में लगभग गाई जाती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये लोक गाथा का विस्तार जिसको हम कहते हैं ना, ये भाषा के रूप में भी हुआ है, संगीत के रूप में भी हुआ है,
0: नृत्य
1: अभिनय के रूप में भी हुआ है, और नृत्य के रूप में,
0: नृत्य के रूप में। अब ताज्जुब यह है कि उसने देशों की सीमाएं पार की है नृत्य में। तो
1: जी जी जी,
0: जैसे हमारे यहाँ का बांस पर होने वाला नृत्य है पूर्वोत्तर का, वह इंडोनेशिया में वैसा का वैसा ही होता है, भाषा अलग हो गई लेकिन नृत्य। तो ये जो लोक गाथाओं का प्रवाह है उसमें लगता है अनुभवों की समानता रही।
2: बिल्कुल।
0: और जीवन को मनोरंजन देने की भी बातें थी, श्रृंगार भी था उसमें, जीवन की जितनी वृत्तियां हो सकती हैं उन सब को दमन नहीं, शमन, उन्होंने दमन में विश्वास नहीं किया,
2: शमन,
0: शमन में उसको
1: नृत्य। मतलब ये हुआ कि जिस समय विस्तार के भी कोई साधन नहीं थे, तब हमारे देश की रामायण और महाभारत की कथाएं, गाथाएं
0: दूर दूर तक
1: विदेशों में फैली हैं। और उसका कारण क्या है कि उनका आख्यान स्वरूप, गाथाओं का स्वरूप होने के कारण लोगों की जबानों पे, कंठ में, स्मृतियों में वो तेजी से आती चली गई और एक से दूसरी जगह
0: स्थानांतरित
1: हो।
2: जैसे प्रकृति भी निकट में रही है, दूसरी बात अनुभव, जैसा कि पंत जी ने कहा, अनुभव जो उनके रहे प्रकृति के साथ रहने से, जो अनुभव उनको हुए। और अगर आप मान लो इनमें गाथाओं में अनुभव नहीं होते, या किसी चरित्र को लेकर अगर गाथाएं नहीं गढ़ी जाती, तो मेरे ख्याल से ये आज तक इतना विस्तारित होती भी नहीं। उसमें बहुत बहुमूल्य चीज़ें हैं, खाली वो अनुभव तो ही है, लेकिन उसमें इस प्रकार का कि वो रंजक भी लगे और लोगों को मन भाए भी, और लोग उसको विस्तारित भी करें।
1: कहने का मतलब आप ये है कि लोक गाथाओं में सभी रसों का समावेश होता है।
2: हाँ बिल्कुल।
1: और
0: आगे बढ़कर कि रसों की सृष्टि ही इन गीतों को पढ़कर, लोक गाथाओं को पढ़कर हुई है।
1: तो ये लोक गाथाओं में हमें कथा का, गायन का, नृत्य का, संगीत का,
2: जीवन का समग्र,
1: जीवन का समग्र रस।
0: देखिए सामाजिकता जो उसमें बनी हुई है, उस सामाजिकता की बात भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि इन गाथाओं को बैठकर, सामूहिक रूप से बैठकर, इसमें एक जो सामाजिकता थी, आज वो टीवी में आकर अटक गई है।
1: आज लोक गाथाओं का उद्भव और विस्तार पर बहुत ही सार्थक बात हुई। आकाशवाणी भोपाल की ओर से सभी आमंत्रित कैलाशचंद पंत जी का, डॉक्टर महेश्वर सांडिल का, और मैं अपने आप को अभी धन्यवाद करता हूं कि मुझे आकाशवाणी ने इस कार्यक्रम का संचालन के लिए एक अवसर दिया। मैं बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्द सागर। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत अब प्रस्तुत है हंसना मना है की 12वीं कड़ी।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हंसने से आपकी कितनी मांस पेशियां तनाव रहित हो जाती हैं? नहीं मालूम ना? वैसे एक राज की बात बताऊं, हमें भी नहीं मालूम, मगर अंदाजा है कि 2-400 मांस पेशियों पर असर तो होता होगा, है ना? खैर छोड़िए, अरे ये क्या, गोपाल तिवारी आपके लिए एक ऐसा आइटम लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको यकीनन आनंद आ जाएगा।
2: आइए शुरू करता हूँ, बच्चों के लिए खास कुछ आइटम। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल रिक्शे में घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर लौटते हैं तो उनकी अपनी बड़ी प्यारी मीठी मीठी बातें होती हैं, उनमें से कुछ बातें मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बच्चे ने दूसरे से कहा कि मालूम मैं आज ना आ रही थी ना तो ना मैंने ना चींटी देखी। अच्छा कितनी? मैंने ना 3 चींटी देखी। अच्छा 3 चींटी देखी तो कैसी कैसी चींटी थी? एक चींटी ना काली थी, एक चींटी लाल थी और एक चींटी सफ़ेद थी। अच्छा तो एक काली थी, एक लाल थी, एक सफ़ेद थी, तो काली वाली काली क्यों थी? बच्चों के प्रश्न बड़े भोले होते हैं तो उसके जवाब भी बड़े भोले होते हैं। नहीं, काली वाली ना कॉलरीज में रहती थी इसलिए काली थी। हाँ। अच्छा और लाल वाली लाल क्यों थी? नहीं ना, लाल वाली जो थी ना वो पहले लाल नहीं थी, फिर ना वो खूब खून पीती थी तो लाल हो गई। अच्छा ये होता कि वो सफ़ेद वाली सफ़ेद क्यों? मालूम सफ़ेद वाली भी सफ़ेद नहीं थी, वो तो पहले काली थी तो सफ़ेद कैसी हो गई? नहीं, वो लवली बबली क्रीम लगाती थी। तो चींटियों की बात चली, एक और ने कहा कि ए मालूम चींटी पे हमको भी याद है, हमारी एक चींटी सहेली है, उसने एक दिन बहुत बढ़िया बात बताई थी कि मालूम वो ना मतलब बाजार जा रही थी तो दोनों में चर्चा हुई थी उसकी सहेली से। क्या चर्चा हुई थी? वो बोली कि उसका ना एक दोस्त भी बॉयफ्रेंड मालूम। अच्छा चींटी का बॉयफ्रेंड तो चीटा होगा? नहीं, चींटी का बॉयफ्रेंड चीटा नहीं था, हाथी था।
3: अच्छा
2: क्या बोला? तो क्या हुआ, चींटी ना बाजार जा रही थी तो चींटी से हाथी ने पूछा कि दीदी तुम कहाँ जा रही? दीदी बोला वो तो बॉयफ्रेंड, हाँ सॉरी मैं भूल गई थी। हाँ तो बोला कि तुम कहाँ जा रही चींटी कहाँ जा रही? तो चींटी ने बोला मैं बाजार जा रही हूँ, मैं अपनी ड्रेसेस सिलवाने के लिए। अच्छा तो कपड़ा कितना लिया? मेरे को जितना लगता है। अच्छा क्या बनवाओगी? मैं फ्रॉक बनवाऊंगी। अच्छा कपड़ा बचे तो मेरे लिए एक निक्कर बनवा लेना।
1: बच्चों की बात अलग और निराली होती है। बच्चों की बात के साथ साथ कुछ और लतीफे भी मैं आपकी नजर करूंगा। और बच्चे जब बात अपनी पेश करते हैं तो एक बच्चे ने कैसी बात रखी?
2: आदरणीय उपस्थित सज्जनों, भाइयों, मेहताओं और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं जो भी पेश करूंगा पूरी सावधानी के साथ पेश करूंगा, अगर इसमें कुछ गलतियां हो तो पैसे दे के सुधरवा सकते हैं। और इसके बाद अब मैं आपको एक एक छोटा सा शेर सुनाने जा रहा हूँ।
1: सुनाइए। अब बच्चे ने शेर सुनाया। सपेरे
2: सपेरे बामियों पे बीन लिए बैठे हैं, सपेरे बामियों पर बीन लिए बैठे हैं,
1: सांप भी सियाने हैं दूरबीन लिए बैठे हैं। बच्चों की बहुत बढ़िया बढ़िया बात। एक और बहुत बढ़िया बात मैं बता रहा हूं आपको कि स्कूल का माहौल, क्लासरूम इस आइटम का नाम है। क्लास लगी हुई है गांव का ये स्कूल, और कुछ शहर से जुड़ा हुआ गांव है तो कुछ शहरी कुछ गांव ग्रामीण संस्कृति दोनों उसमें मिली जुली है। आधुनिक युग के बच्चे हैं, टेलीविज़न संस्कृति का उन पर क्या असर है ये भी आप देखेंगे। और इस आइटम में अलग अलग क्लासेस हैं पर वो एक साथ भी कभी कभी बैठते हैं, वो देखिए। मास्टर जी का प्रवेश। खड़े हो
2: जाओ जी। गुरु जी
4: बैठ जाओ बैठो। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने पापा को बुला के लाए?
2: हाँ अभी 10 मिनट में आते होंगे। बुला गया।
4: बोला आज नहीं बुलाया तो नाम कटवा देंगे।
2: सर वो हमारे पापा आ रहे, वो आ रहे।
3: और पापा जैसे ही आए,
4: आइए आइए, नमस्कार।
3: नमस्कार सर, आप लोग क्या है, बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग को बुलवाते हैं, फैक्ट्री से छुट्टी लेके आना पड़ता है, कितनी तकलीफ होती है, 400 रुपये कट जाते हैं, मालूम है आपको। भाई देखिए, जरूरी हो जाता है तो बुलाना पड़ता है हम लोगों को। आपका बच्चा जो है इस समय बड़ी नटखट शरारत कर रहा है, बुलाना पड़ेगा हमको। क्या की शरारत इसने? सर ये क्या बताएं इसको, बहुत ऐसी शरारतें कर रहा है। ये बच्चा जो है आपका, ये दूसरे बच्चों की शीश पेंसिलें चुराता है, रबड़ चुरा लेता है, स्लेट चुरा लेता है, कागज़ चुराता है, भाई पेन वगैरह। इधर आओ तुम, आओ तुमको एक, तुम क्यों चुराते हो बच्चों की चीज़ें? और इतनी सारी जो शीश और रबर और कागज हम लाते फैक्ट्री से, वो कहाँ जाती हैं? ऐसे बच्चों की बहुत बढ़िया बात, एक और बात बच्चों की बता रहा हूं कि साहब मास्टर बच्चे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। और बच्चों के एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को एक फूल दे दिया, चर्चा शिकायत पहुंच गई मास्टर जी के पास।
2: मास्टर जी, जो है ना अपने अंदर का छुट्टू, इसने ना गुड़िया को गुलाब का फूल दे दिया।
3: अच्छा,
4: जरा तुम छुट्टू इधर आओ, गुड़िया तुम भी इधर आओ। क्या इसने तुमको फूल दिया?
2: जी दिया रहा, फूल दिया रहा।
3: अच्छा फूल दिया रहा। ये तुम्हारा ये फूल वूल का लेन देन कैसे चलने लगा है?

0: कैसा क्या ये?
1: नहीं सर, वो पूरे शहर के लोग मना रहे थे त्योहार, तो हमने भी दे दिया।
0: अच्छा, पूरे शहर के लोग मना रहे थे, बच्चों का त्योहार है क्या ये?
1: नहीं, चाचा नेहरू ने बताया था कि बच्चों को बहुत प्यार करना चाहिए, और बच्चों को भी, बच्चे फूल जैसे होते हैं, बच्चों को फूल से बहुत प्यार होता है। चाचा को भी प्यार था, हमको भी प्यार था, हमने भी प्यार किया।
0: वैसे भी एक बहुत बढ़िया बात कही है कि नाजुक टहनी को किसी फरिश्ते ने छुआ हो जैसे, फूल का खिलना किसी बच्चे की दुआ हो जैसे। बच्चों की तो बात अलग है साहब, और बच्चे, ये क्लास लगी हुई है, और मास्टर जी ने कहा अब ये बताइए कि कौन क्या पढ़ के आया है। चलिए तुम खड़े जाओ, तुम्हारा नाम?
2: जी होरी लाल।
0: बहुत बढ़िया होरी, तुम खड़े हो, तुमने क्या याद किया है?
2: सर हमने गिनती याद की है।
0: अच्छा सुनाओ, कौन सी गिनती याद की है?
2: सर वो वाली राम लखन वाली। राम लखन वाली गिनती?
0: हाँ सुनाओ गिनती, अब गिनती सुना रहे।
2: एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार।
0: बाप, ये इंतजार में इंतजार ये लिखोगे परीक्षा में, फेल हो जाओगे, जीरो मिलेगा। पढ़ो, फालतू बात कर। तुम बेटा, तुम्हारा नाम, तुम क्या, तुम्हारा नाम क्या है?
2: जी हमारा नाम है खताई।
0: हाँ खटाणे रहो ताई, तुम सुनाओ बेटा, तुमने गिनती याद की?
2: जी सर हमने भी गिनती याद करी है।
0: सुनाओ गिनती सुनाओ। तो उसने भी गिनती सुनाई।

0: 15 16 17
1: अब ये रोन क्यों लगे तुम? गिनती गाते गाते रोन क्यों लगे?
0: स्याही चढ़ाई थी वहां पैर में भी।
1: चलो बैठो, तुम लोग हर समय उधम करते रहते हो। तुम सुनाओ बेटा, तुमने गिनती याद करी?
2: हमने भी याद करी, बहुत अच्छी गिनती।
1: तुम सुनाओ गिनती। अब उसने सुनाई, मैं हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ऐसी गिनती बिल्कुल याद कर रहे तुम लोग, बहुत हो गई गिनती विनती। अब ये बताओ कि कौन क्या बनेगा? तुम गड़े हो, तुम्हारा नाम?
2: हमारा नाम है चिलपिला।
1: क्या नाम है?
2: चिलपिला।
1: ऐसा नाम रखते हो यार, हैं? अब तुम ये बताओ कि तुम बड़े होके बेटा क्या बनोगे?
2: हम सर बड़े होंगे ना तो हम डांगडार बनेंगे।
1: क्या बनोगे?
2: डांगडार बनेंगे।
1: डॉक्टर यार बोलना सीखो पहले, डॉक्टर बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, मतलब ऑर्थोपेडिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, कौन से डॉक्टर बनोगे?
2: जी सब नहीं, अपन अलग हटके।
1: अलग हटके? कौन से डॉक्टर?
2: वही वाले जो साबूदाना की गोली बांटते।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तुम खड़े हो बेटा, तुम्हारा क्या नाम है?
3: नाम हमारा नाम है हर हर।
1: कैसा नाम रखते यार हर हर। तुम ये बताओ कि तुम क्या बनोगे?
3: गुरुजी हम तो थोड़ा अलग बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे।
1: क्या बनेंगे?
3: इंजीनियर।
1: इंजीनियर बेटा, इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कौन सा इंजीनियर बनोगे? कंप्यूटर, कौन सा इंजीनियर बनोगे?
0: अरे राज्य पंचायत हो गई बाबा, इतने सारे इंजीनियर हो गए।
3: फिर
0: हम तो वही बनेंगे जो हमारे पापा हैं।
3: अच्छा, वेरी गुड, आपके पापा इंजीनियर है?
0: हाँ हाँ, कौन सा इंजीनियर है?
2: चौका इंजीनियर, रोटी बनाते घर में।
3: लड़प
1: बनेंगे।
3: तुम बेटा, तुम खड़े हो और अपना नाम बताओ।
2: हमारा नाम है बहुरी बाबू।
1: बेटा बहुरी बाबू, तुम खड़े हो गए और बता रहे अपना नाम। अब ये बताओ कि तुम क्या बनेंगे, बनोगे?
2: हम अपने मन से कुछ नहीं बनेंगे।
1: क्यों?
2: जो आप बनवाओगे वही बने।
1: हम क्या बनवाएं? हम तो चाहेंगे कुछ अच्छा बनो,
2: लेकिन कैसे बने?
1: नहीं भाई, हम लोग चाहेंगे कि बच्चे अच्छा बने, कुछ अच्छा बने।
2: बन कहाँ से सकते हैं? आप लोग कोशिश ही नहीं कर।
1: हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, खूब पढ़ाते हैं।
2: कहाँ सर, जब भी हम स्कूल आते कभी आप गधा बनाते कभी मुर्गा बनाते।
1: एक बिटिया पीछे बैठी हुई, उसको भी गुरुजी ने, हाँ तो मैं भी, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपना नाम बताओ।
4: जी सर, हमारा नाम छवरानी।
2: मरे तुम्हारी नानी।
1: तुम बेटा ये बताओ कि तुम क्या बनोगी?
4: सर

0: सर मैं ना तिवारी जी के यहाँ गई थी, तो मैंने उनके यहाँ देखा कि शादी हुई ना, शादी होने के बाद फिर फेरे हुए, जयमाला हुआ, इतना अच्छा लगा ना मेरे को। तो मैंने भी सोचा ना सर कि मैं जब बड़ी होंगी ना तो फिर मैं भी शादी।
1: बहुत अच्छी बात, बच्चों का साथ देखो, छोटे बच्चे हैं, आगे तक की सोच रहे हैं, मतलब देखो आप, मतलब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा तुम खड़े हो, तुम्हारा क्या नाम?
0: सर मेरा नाम गोपाल।
1: अच्छा बेटा, गैया कहाँ तुम्हारी?
0: बाबू चराने गए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बाबू चराने का गैया। तो बेटा गोपाल तुम बताओ, देखो ये क्लास का बहुत अच्छा विद्यार्थी है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है और स्कॉलर स्टूडेंट है, आप सबको इससे शिक्षा लेनी चाहिए। बेटा तुम ये बताओ कि तुम बड़े होके क्या बनोगे?
2: मतलब हम सोच रहे हैं कि अलग हटके हो ना, लगे कि अपन कुछ बने। हाँ लगे कि आप कुछ बने, क्या बनेंगे बताइए? सर हम सोच रहे कि हम गिर्रू के बाप बने।
1: बहुत हो गई, क्लास में डिस्टरबेंस बहुत हो गया। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस के आंसर आपको देने पड़ेंगे, समझ गए? सब तैयार हैं?
3: हाँ।
1: चलिए अब मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तुम खड़े हो, तुम्हारा नाम?
0: जी सर हमारा नाम दीपक है।
1: अच्छा नाम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम कभी आज तक पास ढंग से नहीं हुए हैं, सप्लीमेंट्री आती हर बार तुमको, फेल हो जाते हो, चार साल से चौथी में पढ़े हो। नाम दीपक और ज्ञान पंजी का नहीं है।
0: सर वो आपको एक चीज नहीं मालूम।
1: क्या नहीं मालूम हमको?
0: दिया तले अंधेरा होता है।
1: अच्छा अब हमको पढ़ाओगे तुम। तुम्हारा क्या नाम?
4: सर हमारा नाम बड़वारी लाल। बड़वारी लाल तुम खड़े हो, तुमको क्या दिया था कल होमवर्क? क्या दिया था?
5: सर निबंध लिखने।
4: क्या सब्जेक्ट क्या था?
5: आलस्य।
1: अच्छा लिख लाए? जी सर। कितने पेज में लिखा?
5: 12 पेज में सर। अच्छा लाओ दिखा।
1: इसमें लिखा क्या है यार, कहीं कुछ नहीं लिखा इसमें।
5: अच्छा सर आखिरी पेज में तो देखो आप, आखिरी पेज में। अच्छा विशेष नोट, यही है आलस।
1: अरे तुम गड़प, कैसे कैसी तुम लोग बात करते हो। अच्छा तुम खड़े हो, तुम्हारा नाम?
6: जी बनवारी लाल।
1: बनवारी लाल तुम खड़े हो जाओ और तुम ये बताओ कि हवालात किसे कहते हैं?
0: बाजी बोले भैया चार बार गए, कहाँ गए, किसको कहते, उनसे पूछ लेते, पहले मालूम होता हवालात किसको।
1: सर जल्दी बताओ।
0: सर जब कोई आदमी हवा में लात मारे तो उसे
1: तो उसे हवालात कहते हैं। अच्छा ये बताओ कि ऐसा कौन सा चारा है जिसको कोई नहीं खाता?
4: चारा माने घास पत्ती ये सब चारा। हाँ सर वही, हम उसी के बारे में सोच रहे। बताओ जल्दी, ऐसा कौन सा चारा जिसे कोई नहीं खाता?
1: सर भाईचारा।
4: भाईचारा।
1: अच्छा तुम खड़े हो, तुम्हारा नाम?
7: जी बद्री प्रसाद।
1: बद्री प्रसाद ठीक है बेटा। तुम ये बताओ काल यानी कि टेंस कितने होते हैं हिंदी में? बताओ
0: काल माने कितने होते हैं?
1: सर छह, आधा दर्जन।
4: कहाँ पढ़े हैं तुम?
1: हिंदुस्तान में तो अभी तक तीन ही हमने पढ़े थे, ये तीन और कहाँ से लगा दिए सप्लीमेंट्री?
4: वो तीन आपने पुराने समय में पढ़े होंगे।
1: हाँ हाँ भूत भविष्य वर्तमान, अभी नए कौन से काल हो गए भाई?
4: लेकिन सर हमने इजाद किए हैं, अभी
1: नया इन्वेंशन है। अच्छा कौन कौन से?
4: पहला तो तत्काल,
1: दूसरा अकाल और तीसरा कंकाल।
8: हंसना मना है,
9: हंसना मना है,
8: अरे हंसना मना है,
9: हंसना मना है।
8: कोशिश कोई लाख करे कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
9: हंसना मना है।
8: एक बेचारा आपको हंसाने में मशगूल है और दूसरा उस बेचारे को कोचने में है। ये दूसरे कौन है? संजय गायकवाड़, जरा इनकी भी तो सुने।
10: शहर में अतिक्रमण हटाया गया, मैं अपने एक दोस्त के यहाँ घर में गया तो वहाँ पे एक माताजी थी जिनका आधा कमरा भी अतिक्रमण में चला गया था। मैंने माताजी से नमस्कार किया तो अम्मा ने कहा, नमस्कार बेटा जी, बताओ कि जी फिर से अतिक्रमण हटाने वाले लोग नगर निगम वाले कब आएंगे?

0: हमने कहा अम्मा आपका तो आधा कमरा चला गया, आप फिर से बुला रही हूँ। कहने बेटा पूरा चला जाए कोई गम नहीं। हमने कहा क्यों अम्मा ऐसी क्या बात है? कहने बात कुछ नहीं बेटा, बात तो बहुत अच्छी हुई। पिछली बार जब नगर निगम वाले अतिक्रमण हटाने आए थे तो स्टूल पे नगर निगम का एक कर्मचारी बैठा था, उसने हमारी लड़की से एक बार पानी मांगा तो हमारी लड़की ने दूसरी बार में चाय दी। न जाने कैसी क्या बात हुई कि 13 फरवरी की निकल आई। अब हम सोच रहे हैं कि दोबारा फिर से उन लोग नगर निगम वाले आए तो छोटी वाली को निपटा दें। शिक्षा के साथ में पूरे भारतवर्ष में इस समय सामान्य ज्ञान योग अभ्यास की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। एक गांव के पंडित जी जब शहर में अपने भाई से मिलने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि योग की क्लास चल रही थी, तो अपने भाई से पूछा, कहने भैया जी जब सब बताओ क्या है जी पढ़ाई के अलावा, जी आप लोग बैठे हैं, कोई लेटा है, कोई खड़ा है, कोई सांस रोके, ये सब क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि क्या है कि हम लोग योग की क्लास भी लगाने लगे हैं, इससे बच्चे का जो स्वस्थ है और मन है वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है। अरे कहने ऐसी बात है तो हमारे गाँव में भी योग होगा। तुरंत पहुँचे पंडित जी। पहुंचने के बाद में क्लास जो लगी हुई थी तुरंत अपने बच्चों को, क्लास के बच्चों को बोला, चलो रे बंद करो, चलो सब कोई पढ़ाई बंद करो और पीठ के बल लेट जाओ और टांगे ऊपर करो रे सब कोई। हाँ कलुआ तुम भी टांगे ऊपर करो, और साइकिल कैसे चलाते ऐसी घुमाओ हाथ, बिल्कुल पैर ऐसे घुमाओ। अब साहब देखा कि सब बच्चे पैर घुमा रहे हैं लेकिन एक लड़का जो था वो पैर नहीं घुमा रहा था, वो केवल पैर उठाए हुए था। उससे पंडित जी ने पूछा, कहले क्यों रे तू साइकिल क्यों नहीं मार रहा है, पैडल क्यों नहीं मारा है, साइकिल चला साइकिल चला। कहले पंडित जी हमारी साइकिल ढलान पे है। हमारे शहर में एक थिएटर ऐसा है साहब जहाँ बहुत छोटे बच्चों का जाना बिल्कुल मना है। हमारे भैया भाभी घर के पिक्चर देखने के बहुत ज़्यादा शौकीन, तो साहब हुआ ये कि नई नई फिल्म लगी, हमारे घर में छोटे से भतीजे ने जन्म लिया, तो हुआ ये कि जब थिएटर पहुँचे तो थिएटर पहुँचने के बाद में भाभी जी ने प्रश्न किया कि आप तो 2 टिकट लेके आ गए हो लेकिन मैं जब जाने लगूँगी और गेटकीपर ने पूछ लिया कि ये क्या है तो फिर मैं उससे क्या कहूँगी? तो हमारे भाई साहब ने अपना दिमाग दौड़ाया और कहने कुछ नहीं, तुम टावल में लपेट लो बच्चे को, कपड़े में ऐसा रख लो, समझ गई ना, और गेटकीपर अगर तुमसे पूछता है तो तुम बोल देना उसको कि कुछ नहीं हम लोग जल्दीबाजी में खाना खा के नहीं आए हैं, टिफिन ले आए हैं, इंटर में बैठ के खाना खाएंगे। कहने हाँ ठीक है। 2 टिकट जैसे ही मिले तो भैया पहली टिकट में चले गए, दूसरी टिकट में जैसे ही भाभी जी जाने लगी तो गेटकीपर की नज़र पड़ी और गेटकीपर ने तुरंत कहा, एक मिनट बहन जी एक मिनट, ये क्या है? तो बहन जी ने कहा, ये कुछ नहीं, ये टिफिन है, हम लोग ना इंटर में बैठ के खाना खाएंगे। गेटकीपर तुरंत बोला, अच्छा अच्छा ठीक से पकड़ो, दाल बह रही। पिछले दिनों साहब एक समाचार पत्र में, मैं किसी भी समाचार पत्र का नाम नहीं लूंगा, एक समाचार पत्र में एक वैकेंसी निकली, एक विज्ञापन आया, आवश्यकता है एक ऐसे कर्मचारी की जिसको वेतन नहीं मिलेगा भोजन मिलेगा। शहर में बहुत सारे बेरोजगार हैं, सुबह के वक्त एक बेरोजगार पहुंचा, कहना भाई साहब नमस्कार, कहना नमस्कार नमस्कार, कहने भैया वो भाई साहब कहाँ रहते हैं जिनने पेपर में विज्ञापन दिया था? अरे कहने ठीक तो हमसे टकरा है, वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, हमें ने दिया था वो विज्ञापन। कहने भैया तो फिर इंटरव्यू कब है? कहने इंटरव्यू तुम्हारा शुरू हो चुका है। कहने अरे शुरू हो गया? कहने हाँ। कहने तो आपने वो पेपर में लिखा है कि वेतन नहीं मिलेगा भोजन मिलेगा, तो वेतन काय को नहीं मिलेगा? कहने वेतन से भोजन ही खरीदोगे ना, हम डायरेक्ट भोजन दे रहे, कौन सा गलत कर रहे हैं? तो कहने भैया फिर कब से आए? कब से नहीं, अभी से ड्यूटी शुरू, इंटरव्यू ख़त्म, वहाँ देखो खुटी में क्या टंगा है। कहने झोला। कहने झोले में 2 टिफिन होंगे? कहले हाँ भैया 2 ही टिफिन है। कहले बाहर निकलो, कोई भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहाँ भी लंगर भंडारा चल रहा हो वहाँ से 2 टिफिन भरवाओ, एक हमें दो दूसरा खुद खाओ, भोजन मिलेगा वेतन नहीं। एक जगह एक प्रोग्राम चल रहा था गीत संगीत का, वहाँ पे एक गायिका कलाकार आई और उन्होंने शुरू किया, जिमी जिमी आजा आजा जिमी जिमी आजा आजा आजा रे मेरे पास, हे जागे सारी रात पुकारे तुझको। ये कोई गीत था, वो गा रही थी मैडम। अचानक घर का कुत्ता चैन तोड़ के स्टेज के करीब आ गया और शुरू हो गया। तुरंत अनाउंसर साहब आए, कहले अरे भाई साहब गाना आना बंद हो गया। कहले ये घर का किसका घर का कुत्ता है भाई जो स्टेज पे आ गया? तो एक महाराष्ट्रियन भाव गया, मेरा घर का कुत्ता ना वो, मेरे ही घर का कुत्ता है। अरे कहले भैया तो इसको घर में बांधो ना। कहले घर में ही बांधा था ना, तुम्हारी मैडम क्या बोल रही, जिमी जिमी आजा आजा, वो नाम लेके बुला रही, कुत्ता आ गया। कहले आ गया तो भैया भोंक काहे को रहा है? कहले वो भोंक नहीं रहा, वो कह रहा तुमने पुकारा और मैं चला आया।
1: राजेश मिश्रा, अपनी बारी आने के पहले ही लतीफों की लंगोट कसकर आपको हंसी के अखाड़े में ले जाने के लिए तैयार हैं। पता नहीं आप चित्त होते हैं या पट हैं। लीजिए राजेश मिश्रा को सुने।
2: लीजिए एक व्यंग और पेश कर रहा हूं कि जिन साहिबानों की शादी हो चुकी है और उनको अगर पत्नी से परेशानी नहीं है तो समझ लीजिए कि ईश्वर की बड़ी असीम कृपा उनके ऊपर है, और जिनको परेशानी है तो वो कभी कोई दूर नहीं कर सकता है, ये उनका भाग्य है। इसलिए अपन उस बारे में ज़्यादा चर्चा न करते हुए कि एक जोक सुना रहा हूँ कि एक शव यात्रा चली जा रही थी। शव यात्रा के पीछे मैंने देखा कि बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि भैया आखिर ये कौन मर गया, काय के लिए लाइन लगी हुई है। एक भाई साहब से मैंने पूछा, भाई साहब कौन मर गया? बोले मुझे नहीं मालूम। राम राम सत्य सत्य बोलो मुक्ति है, श्री राम राम सत्य ही सत्य बोलो मुक्ति है, श्री राम राम सत्य ही। कई बार आपने देखा होगा कि काफी अगर मोटे ताजे व्यक्ति का अगर वजनदार मुर्दा होता हो, कई बार कंधे लोग नहीं बदलते हैं तो लोगों को ये लगता है कि जल्दी से कोई आ जाए वो कंधा बदल ले है। बड़ी देर तक अपना राम राम सत्य सत्य बोलो मुक्ति है, श्री राम राम, जो ही वो बदलते श्री राम राम सत्य सत्य बोलो मुक्ति है, कंधा दूसरे के उसमें चला जाता है। ये लाइन बड़ी अजीब चली जा रही, एक के पीछे एक लाइन लगाए लोग चले जा रहे। मैंने एक से पूछा, भाई साहब कौन मर गया? बोले हल्ला मत करिए, पीछे लाइन में आइए। फिर एक से पूछा, भाई साहब कौन मर गया? राम राम सत्य सत्य, पता नहीं भैया, फालतू बात नहीं, पीछे आप लाइन में। ये क्रम चलता रहा, किसी ने मुझे नहीं बताया। फिर मैंने सोचा कि मैं सीधे शव के पास पहुंचूं। शव के पास पहुंचा तो मैंने पूछा, भाई साहब कौन मर गया? तो सज्जन थे कि मेरी पत्नी मर गई है। तो क्या, कैसी मर गई भैया, क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, हमारे यहाँ कुत्ता था तो उसने काट दिया। अरे भाई साहब बड़ी मेहरबानी हो जाती, कुत्ता के काटने से आपकी पत्नी खत्म हो गई? जी हाँ साहब, मुझे दे दीजिए ना 2 मिनट के लिए, मैं 2 दांत गड़वा के अब भी ले आऊँगा। कहना फालतू बहस मत करो। नहीं भाई साहब प्लीज दे दीजिएगा, हम बस अब भी ले जाके आपके कुत्ते अब भी छोड़ जाऊंगा। कुत्ता चाहिए? जी हाँ पीछे लाइन में आओ।
1: और दोस्तों हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक हंसना मना है कि 12वीं कड़ी, DTH के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही पलों में हमारा प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

पंचायतों के ऑडिट को आसान बनाने के लिए दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे की सुविधा भी शुरू हो गई। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज सदन पहुंचे। उन्होंने कहा कि सत्र में सप्लीमेंट्री बजट और नए कानूनों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया जाएगा। और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज किए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानने की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
3: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
3: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
2: जी।
3: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक

0: प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी?
1: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
0: श्रोताओं जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
1: जी,
0: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पटिया हो, तो
1: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
0: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
1: जी,
0: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
1: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियाँ, कहानियाँ और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि किलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने किलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये किलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
0: आज का प्रश्न है, किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: वाह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में।

0: बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
0: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
3: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
4: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: जी मैम।
5: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह।
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
1: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी

0: जानकारी
1: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
5: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
4: जंगल के साथी।
6: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
7: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ। जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: को ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी।

0: हाँ, सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ, एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ, दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू, तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे, आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
2: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम। खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
5: जगबंधु,
4: चेतना
5: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आपने सुना NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम कैच द रेन। वाचन स्वर धारणा सचदेव का है।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम कैच द रेन, पानी की हर बूंद भविष्य की गारंटी। आलेख वरिष्ठ पत्रकार अलीम बज़मी का, वाचन स्वर धारणा सचदेव। नमस्कार दोस्तों, सोचिए अगर बारिश की हर बूंद जो छत से टपकती है, सड़क पर बहती है या नाले में बहकर गुम हो जाती है, अगर वो हर बूंद जमीन के अंदर उतर जाए तो क्या होगा? जवाब है, हमारा कल सुरक्षित हो जाएगा। और यही सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन, जहां वर्षा हो जब वर्षा हो अभियान के पीछे। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये है एक जन आंदोलन। और इस आंदोलन में मध्य प्रदेश ने जो मिसाल पेश की है वो पूरे देश के लिए एक सीख है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 योजना के तहत देश भर के शहरों में जल संरक्षण का बीड़ा उठाया है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक शहर इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। सोचिए करीब 1.25 लाख एकड़ में फैले तालाब, कुएं और झीलें, जो कभी उपेक्षा के शिकार थे, आज फिर से जिंदा हो रहे हैं। और साथ ही 12,500 एकड़ में हरे भरे पार्क और हरियाली भी विकसित हो रही है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है जमीन के नीचे। भूजल यानी वो पानी जो हम बोरिंग और कुओं से खींचते हैं, वो लगातार घट रहा है। इसे बचाने के लिए 79 शहरों में करीब 2 लाख भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाई जा रही हैं। बर्दवान और विजयनगरम जैसे शहरों में तो बारिश के पानी को सीधे गहरी जमीन तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि साल भर पानी की कमी ना हो। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे अभियान में सबसे प्रेरक कहानी कहाँ से आई है, तो जवाब है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया। ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं था, पूरे 100 दिनों तक 19 मार्च से 30 जून तक ये अभियान चला। और नतीजा क्या रहा? 2 लाख से ज्यादा जल संरचनाओं का निर्माण और नवीनीकरण। जरा सोचिए, नदियां, तालाब, कुएं, बावड़ियां जो बरसों से सूखी पड़ी थी या गाद से भरी थी, वो फिर से जीवंत तो हो उठी। और सबसे खूबसूरत बात ये रही कि ये सिर्फ सरकारी योजना नहीं रही, ये जनता का आंदोलन बन गया। गंगा दशहरा के मौके पर 8 लाख से ज्यादा जलदूत और आम नागरिक इस अभियान से जुड़े। सोचिए 8 लाख लोग एक साथ एक मकसद के लिए, पानी बचाने के लिए। ये उपलब्धि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सराही गई। कई देशों के राजनयिकों ने मध्य प्रदेश के इस जल संरक्षण मॉडल की तारीफ की। भोपाल में रिचार्ज पिट यानी पुनर्भरण गड्ढों के निर्माण पर खास जोर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ लोगों को जागरूक करने का काम भी लगातार जारी है, ताकि हर घर हर मोहल्ला वर्षा जल संचयन की अहमियत समझे। वहीं ग्वालियर में एक अनोखी पहल हुई, बंद पड़े हैंडपंपों का पुनरुद्धार किया गया। सोचिए वो हैंडपंप जो बरसों से खराब पड़े थे, उन्हें फिर से चालू किया गया। इससे न सिर्फ भूजल स्तर बढ़ा बल्कि स्थानीय लोगों को पानी की सतत उपलब्धता भी सुनिश्चित हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी मेहनत, इतना निवेश क्यों किया जा रहा है? जवाब सीधा सा है, पानी हमारे भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, जिस तरह भूजल का दोहन हो रहा है,

0: अगर आज हमने कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। मंत्रालय ने भी यही कहा है, आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों की जल सुरक्षा में किया गया एक महत्वपूर्ण निवेश है। आंकड़े खुद बोलते हैं, मध्य प्रदेश में 100 दिनों के भीतर 2 लाख से अधिक जल संरचनाएं तैयार हुई। शहरों में 1.25 लाख एकड़ जल निकायों का पुनर्जीवन हो रहा है। लाखों लोग इस मुहिम से सीधे जुड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं रहा, ये जनता का अपना काम बन गया। यही तो असली सफलता है किसी भी अभियान की, जब वो सरकारी फाइलों से निकलकर लोगों के दिलों में जगह बना ले। अगली बार जब बारिश हो तो सिर्फ छाता लेकर बाहर नहीं निकलिए, ये भी सोचिए कि क्या आपके घर, आपकी गली, आपके शहर में बारिश का पानी सहेजने का कोई इंतजाम है। क्योंकि जैसा कि ये अभियान कहता है, जहां वर्षा हो वहां वर्षा जल पकड़िए, जब वर्षा हो तभी जल संचयन कीजिए। यही है असली कैच द रेन।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम कैच द रेन। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म कलंक का ये गीत। अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजें हैं। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, मीत ब्रोस, जोनिता गांधी और नकाश अजीज की आवाज़ों में, कुमार का लिखा गीत, मीत ब्रोस का संगीत और फिल्म का नाम है ड्रीम गर्ल।

नवराज हंस और हर्षदीप कौर की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से। गुरप्रीत सैनी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था रोचक कोहली ने। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं मीका सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। शब्बीर अहमद के लिखे बोल, तनिष्क बागची का संगीत और फिल्म है पति पत्नी और वो।

तुषार जोशी की आवाज़ में सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और प्रीतम के संगीत वाला यह गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म छिछोरे से।

श्रोताओं, फिल्म छिछोरे के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।

बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही तथा व्यापार जारी रखने का आह्वान किया।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इन हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मौसम और मिट्टी के अनुसार कृषि विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इसको तैयार करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य के कृषि मंत्री दूत कुमार मंडल, पंचायत मंत्री दिलीप घोष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उस अंतरिम आदेश की मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 47वें ओवर में 8 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण लेकर मैं हूं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर प्रवीण कुमार बर्डे की भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा फल बगीचों में समसामयिक कार्य। रात्रि 8:00 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:15 और रात्रि 10:00। उर्दू कार्यक्रम कहकशां का प्रसारण 9:30 पर किया जाएगा और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज आप सुनेंगे राग मालकौंस पर श्रुति अधिकारी का संतूर वादन। इसका प्रसारण रात्रि 10:30 पर किया जाएगा। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल यानी बुधवार 15 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे बिहारी लाल यादव द्वारा गाई गजलें और 9:30 पर सुनिए प्रदेश की सुर्खियों में। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम महिला संसार और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेंगे पंडित आसकरण शर्मा का गायन, राग होगा भैरव। इसका प्रसारण 10:30 पर किया जाएगा। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत होगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुबह 11:00। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण दोपहर 12:00 और दोपहर 2:30 पर किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक हंसना मना है का 13वां भाग आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान से प्रसारित होंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2:00, शाम 5:33, 6:30 और रात्रि 8:30 पर। शाम 6:00 सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे मशरूम उत्पादन तकनीक कम लागत अधिक मुनाफा विषय पर भेंट वार्ता। रात्रि 8:00 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर आप सुनेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर केंद्रित पूर्वावलोकन कार्यक्रम। कार्यक्रम चर्चा का विषय है का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे नाटक आलिफ लैला की कहानी, जिसके लेखक होंगे डॉक्टर हामिद हुसैन और प्रस्तुति होगी शाकिर अली की। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे माधुरी ओक का गायन, राग होगा काफी कांडा 10:30 पर। श्रोताओं, ये थे कल यानी 15 जुलाई 2026 बुधवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आयुष संस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार सोश्रुतम का उद्घाटन करेंगी। आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर होगी चर्चा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, करीब 10,500 करोड़ रुपए के विकास प्रस्तावों को मिली मंजूरी। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस का नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान शुरू, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। और भोजशाला विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय रोजाना करेगा सुनवाई, नमाज के लिए वैकल्पिक जगह देने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आयुष संस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार सोश्रुतम का उद्घाटन करेंगी। ये सेमिनार आचार्य सुश्रुत की जयंती के मौके पर आयोजित हो रहा है। इसमें आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर देश विदेश के विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। इस मौके पर करीब 14.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी आधुनिक MRI प्रणाली का भी उद्घाटन होगा। सेमिनार में थाईलैंड, इसराइल और श्रीलंका सहित कई देशों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। भोपाल के वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में करीब 10,500 करोड़ रुपए के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे बड़ी राशि शहरी अधोसंरचना विकास के लिए रखी गई है, जिसके तहत 8,445 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही किसानों के हित में मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपए की निःशुल्क सरकारी गारंटी को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राजगढ़ की कुंडलिया सिंचाई परियोजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया, जिससे राजगढ़ और आगरमालवा जिले में 1,39,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। साथ ही टेक होम राशन के उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी अब महिला और बाल विकास विभाग को सौंपी गई है।
2: एक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया है वह है महिला बाल विकास के संदर्भ में। आंगनवाड़ियों के अंदर जो 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को उनको टेक होम राशन प्रदान किया जाता था, और यह टेक होम राशन आजीविका मिशन के माध्यम से 5-6 संयंत्रों से बनता था। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि टेक होम राशन को वहां से आजीविका मिशन से हटा करके यह कार्य महिला बाल विकास स्वयं करेगा।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में कई नए सुधारों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। अब कंटेनरों में उर्वरक और फ्लाई ऐश का परिवहन किया जा सकेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। मंत्री ने बताया कि वैगन का डिजाइन अब उद्योग जगत भी तैयार कर सकेगा। उन्होंने कौशल प्रमाणन प्रणाली को 24 महीने में सभी परियोजनाओं में लागू करने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज पंचायतों के ऑडिट को आसान बनाने के लिए दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे की सुविधा भी शुरू हो गई। इस प्लेटफॉर्म से प्रदेश की 23,000 से अधिक ग्राम पंचायतों का ऑडिट अब घर बैठे किया जा सकेगा। ऑडिटर कहीं से भी पंचायतों के आय व्यय के रिकॉर्ड देख सकेंगे। पेमेंट गेटवे के जरिए नागरिक अपने बिलों का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान शुरू किया है। इसका शुभारंभ आज भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। ये अभियान 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इसका मकसद युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के नुकसान के प्रति जागरूक करना है। अभियान में सामाजिक न्याय, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग भी सहयोग करेंगे। जिलों में जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और संगोष्ठी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को कल समान नागरिक संहिता समिति ने अपना प्रतिवेदन सौंपा। मुख्यमंत्री ने समय पर रिपोर्ट देने के लिए समिति के सदस्यों का धन्यवाद किया। ये प्रतिवेदन 3 खंडों में तैयार किया गया है। इसमें प्रस्तावित विधेयक में 4 भाग और 404 धाराएं शामिल हैं। समिति को इस दौरान 9.5 लाख से अधिक जन परामर्श प्राप्त हुए थे। समिति ने अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने की सिफारिश की है। ये प्रतिवेदन अब विधि विभाग को भेज दिया गया है और विधेयक मानसून सत्र में विधानसभा में रखे जाने की संभावना है।
4: यूसीसी की रिपोर्ट कल हमको समिति ने भेंट कर दी है। हम विधानसभा में पेश करके उसके बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी अंदर की सच्चाइयों के बारे में बताएंगे। लेकिन कॉमन रूप से जरूर बोलना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, बाकी सारे लोगों ने अपने खुल करके अपनी अपनी बातें कही है, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर राजनीतिक दल के नाते से आकर के अपनी बात तक स्पष्ट करना उचित नहीं समझा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भोजशाला विवाद पर आज रोजाना सुनवाई करने पर सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने भोजशाला परिसर में पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग फिलहाल ठुकरा दी है। पीठ ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि परिसर के पास शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए वैकल्पिक खुली जगह उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने साफ किया कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। भोपाल में आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक नई अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण किया। ये दीर्घा नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। इसमें ब्रह्मांड और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान और गगनयान तक की उपलब्धियां भी यहाँ प्रदर्शित होंगी। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज सदन पहुंचे। उन्होंने कहा कि सत्र में सप्लीमेंट्री बजट और नए कानूनों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया जाएगा। सरकार इस सत्र में करीब 11 विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसमें समान नागरिक संहिता का विधेयक भी शामिल है। इसी बीच विधानसभा सचिवालय में करीब 1 दशक बाद 181 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज किए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। इसके तहत 1.25 लाख एकड़ से अधिक जल निकायों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। भूजल पुनर्भरण के लिए भी बड़े पैमाने पर संरचनाएं बनाई जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि 12,500 एकड़ में हरित क्षेत्र भी विकसित किए जा रहे हैं। इस साल अल नीनो के असर से अनियमित बारिश और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने किसानों से खरीफ फसल का बीमा कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक कराया जा सकता है। ये बीमा सूखा, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा देता है। किसान बैंक शाखा, ग्राहक सेवा केंद्र, फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप के जरिए बीमा करा सकते हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में इस मानसून सीजन में जुलाई महीने में पहली बार सामान्य से कम बारिश हुई है। अब तक प्रदेश में करीब 9.5 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से 3% कम है। पिछले 5 दिनों से बारिश की रफ्तार थमी हुई है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने पर प्रदेश में फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज 2026 प्रतियोगिता 7 अगस्त को होगी। शिवपुरी जिला प्रशासन द्वारा सभी विवादित प्लॉटों के कर क्रय विक्रय और नामांतरण पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। छतरपुर और धार जिले में आज दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान 2026 का विधिवत शुभारंभ किया गया। मंडला में स्कूली वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग का 10 दिवसीय विशेष जाँच अभियान जारी है। झाबुआ और बैतूल जिला प्रशासन द्वारा जन सुनवाई में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। भोपाल में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती रैली में प्रदेश के 15 जिलों के पात्र पुरुष अभ्यर्थी विभिन्न पदों के लिए शामिल होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान भैयन को प्रेमचंद भैया की राम राम। और सुनाओ भैया, कैसे हो आप? सभी कुशल मंगल हो कि नहीं? भैया हम तो जो ही चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपन को अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने हैं। कहे खेती किसानी से अपन को काम पड़ते हैं और खेती किसानी को कामकाज भैया घर में बैठ के तो होते नहीं है। ई के लाने भैया अपन को घर से बाहर निकलने पड़ते हैं। लेकिन ई समय भैया मौसम भी आप देख रहे हैं, कह के भैया देखो आषाढ़ को महीना चल रहा है और जब मान लो कि बारिश कछु दिनों से बिल्कुल रुक सी गई है और बारिश रुकवे को असर भी अपन देख रहे हैं कि उमस भी बहुत हो रही है भैया और गर्मी भी दोबारा से भैया बहुत अपन को लग रही है। तो जो मौसम में जो बदलाव है इको देखत भाई थोड़े अपन को स्वास्थ्य को भी ध्यान रखने हैं। कह के जरा सी भी लापरवाही करी ना भैया ई मौसम में तो जब मान लो कि अपन को बीमार होने होने हैं। कह के इस समय भैया पसीना भी बहुत आ रहा है और गर्मी भी बहुत है, तो ई को देखा तो भैया थोड़ा सा अपना जो पीवे को पानी है उसको जो नियमित अंतराल पे अपन को लेते रहने हैं और खान पान की जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि ठंडक बनी रहे और ठंडी तासीर मिले वह भी अपन को लेने हैं। और संगे संगे भैया कोशिश जा करने हैं कि संजय बनिया अपन को ज़्यादा भोजन नहीं करने हैं, जितनी भूख है भैया उसे अपन को थोड़ो कम खाने हैं और तलब हो भोजन अपन को कम खाने हैं। जो छोटी छोटी बातें हैं अगर भैया अपन को ध्यान रखें तो अपन स्वस्थ भी रह सकते हैं, इसे अपने घर गृहस्थी के कामकाज अपने खेती किसानी के कामकाज भी सही समय पे और सही ढंग से पूरे भी हो जाए। और संगे संगे भैया बारिश के मौसम में अपन को जो ज़रूरी बातें हैं वो भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि बारिश के जो पानी हैं वो की एक एक बूंद को भैया अपन को सहेजने हैं। कैच फॉर रेन कहते ना भैया कि बारिश की जितनी ज़्यादा अपन पानी को अपन सहेज लें उतना ही भैया अपन को बरस भर पानी के लाने परेशान नहीं होने पड़े। अपन देखा था कि चैत वैसाखी गर्मी में भैया अपन एक एक बाल्टी के घड़ा पानी के लाने कितनी दूर तक अपन को परेशान होने पड़ा था। तो हम तो आपसे यही कहें कि अभी कछु दिन बारिश रुकी है भैया, मौसम झमाझम नहीं हो रहा हो, इससे पहले भैया अपने जो आसपास के जो अपने चेक डैम हैं, अपनी जो कुआ बावड़ी हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, अगर उनको भैया जो माटी है उनमें ज़्यादा जम गई है, उनमें गाद है, अगर थोड़ा सा श्रमदान करके अगर उनको साफ़ सफाई कर लें, गहरीकरण कर लें, तो जब मान लो कि बारिश को पानी अपन बहुत अधिक मात्रा में उनमें सहेज पाएँ, इकट्ठा कर पाएँ। लेकिन ई के लाने भैया अपन को प्रयास मिलजुल के करने पड़े, क्योंकि भैया एक को काम तो है नहीं है। और गांव देहात में अगर इन कोनों ऐसी जगह है भैया ढलान वाली जहाँ पानी बह के आते हैं, तो अगर उतर अपन छोटो चेक डैम बना दें तो ई से भी भैया अपन को बहुत राहत मिल जाए। क्योंकि बारिश को पानी जितना ज़्यादा अपन सहेज लें उतना अपने जो नलकूप से अपन को बरस भर में पीवे को पानी मिलत रहा। क्योंकि भैया देखो पीवे को पानी तो अपने पास सीमित मात्रा में, वैसे पृथ्वी पे अपने पानी बहुत है लेकिन जो पीवे को है वो अपने पास सीमित मात्रा में है। और हम तो आपसे यही कहें कि जो नलकूप कुआ है उनको अगर अपन को जलस्तर बढ़ाने हैं, साल भर अपन खून से पानी लेवे को प्रयास रखने हैं, तो भैया अपन को पानी की एक एक बूंद को सहेजने पड़े, इकट्ठो करने पड़े, रोकने पड़े। कहीं हम देख रहे थे कि बारिश के पानी पक्की सड़पन पे ऐसे बह के निकल जाते हैं और इससे अपन को नुकसानी हो जाते हैं, खेत को खानी खेत में रहे तो इसे भी अपन को बहुत फ़ायदा हुई है। तो कुल मिला के जाए कि बारिश के एक एक बूंद को अपन को स्वयं प्रयास करने हैं और आसपास के लोगों को जागरूक करने हैं

0: भैया देखो, अबे आप लोग सुनो जो 900 लोकगीत। भैया देखो, आज कछु खास भी है, काहे कि आज है मंगलवार, और मंगलवार को भैया हम आपको सुनवाते हैं आंचलिक अनुसंधान केंद्र मुरैना से फ़ोन पर ली गई मौसम की जानकारी और कृषि सामयिक सलाह। तो आज भैया जो जानकारी दे रहे हैं वो डॉक्टर हरभजन सिंह हैं, और उनसे सुन लेते हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी।
1: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से डॉक्टर अरविंद सिंह का सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको मौसम के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही संभावित मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। किसान भाई, सबसे पहले पिछले सप्ताह के मौसम के बारे में जानिए। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना स्थित मौसम वेधशाला की गणना के आधार पर पिछले सप्ताह में मुख्यतः छुटपुट से घने बादल रहे तथा हवा लगभग 5.5 से 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम उत्तर व पश्चिम दक्षिण दिशा से बही तथा अधिकतम तापमान 34 से 37 और न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, एवं आपेक्षिक आर्द्रता सुबह 62 से 76 और शाम को 48 से 52% के बीच दर्ज की गई। किसान भाइयों, आगामी 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार से है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यमकालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी 5 दिनों में मध्यम से घने बादल रहने तथा वर्षा नहीं होने का अनुमान है, एवं हवा लगभग 22 से लेकर 26 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से बहने की संभावना है तथा न्यूनतम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 38 से लेकर 38.8 और न्यूनतम तापमान 30 से लेकर 30.7 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की संभावना है। आपेक्षिक आर्द्रता सुबह 62 से 64 और शाम को 44 से 51% रहने का अनुमान है। किसान भाई, संभावित मौसम में आगामी 5 दिनों में वर्षा नहीं होने को देखते हुए जो आपको कृषि कार्य करने की सलाह दी जाती है इस प्रकार से है। किसान भाई, मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस सप्ताह में वर्षा नहीं होने को देखते हुए पर्याप्त नमी होने पर खरीफ फसलें जो कम अवधि वाली खरीफ फसलें हैं उनकी बुवाई करें, क्योंकि काफी समय हो गया है, आज लगभग 15 जुलाई होने को जा रही है, तो कम अवधि में जो पकने वाली खरीफ प्रजातियां हैं बाजरा की और आपकी मूंग मसूर वोट जो भी है तो ऐसी प्रजातियों का चयन कर बुवाई करें। साथ ही आगामी 5 दिन में वर्षा नहीं होने को देखते हुए जो आपकी इस समय खरीफ फसलें खड़ी है या जिसमें और सब्जियां खड़ी हैं उनमें जो पानी की यदि आवश्यकता हो तो इस समय जीवन रक्षक सिंचाई इस समय कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, फसलों की बात करें तो मक्का और मूंग के साथ कुछ किसान भाइयों की पकी हुई मक्का और मूंग जो है खलिहान पर इकट्ठी थी, क्योंकि बरसात की वजह से वो उसकी गाई नहीं हो पाई है, नहीं कर पाए थे, तो इस समय बिल्कुल उचित समय है और इस समय अपनी फसलों को इनको सुखा करके इसकी गाई करें। साथ ही किसान भाई, खरीफ फसलों की बात करें तो इस समय अरहर की बुवाई हेतु उन्नत किस्में जैसे RBA 28, ICPL 88039 आदि का चयन करके और पर्याप्त नमी होने पर इनकी बुवाई करें। साथ ही किसान भाई, इस समय बात करें जैसे जिस प्रकार का मौसम चल रहा है, अभी वर्षा भी कम इस तरह बताई जा रही है और कम है भी, तो इस समय तिल की खेती आप लगा सकते हैं और संभावित मौसम में तिल की बुवाई हेतु बिल्कुल उचित समय है तथा पर्याप्त नमी होने की दिशा में इस समय आप तिल की बुवाई करें। साथ ही किसान भाई, इस समय उर्द और मूंग जो किसान भाई इनको लगानी है खरीफ फसल में, तो उर्द और मूंग की बुवाई इस समय कर सकते हैं, बाजरा की बुवाई इस समय कर सकते हैं। और साथ ही किसान भाई, सोयाबीन की ज्यादातर फसल किसान भाइयों की बो चुकी है और जिनको अभी बुवाई करनी है तो वो तत्काल शीघ्रता से करें, क्योंकि सोयाबीन की बुवाई का कार्य इस समय समाप्त हो रहा है और पर्याप्त नमी होने पर ही इसकी बुवाई करें। साथ ही किसान भाई, सब्जियों की बात करें तो इस समय भिंडी की फसल में फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अगर दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु डाई मेथोलेट 750 ml दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 के पानी में घोल बनाकर 10-10 दिन के अंतराल से 2 से 3 बार छिड़काव करें, क्योंकि आगामी 5 दिन में वर्षा नहीं होगी तो छिड़काव के लिए बिल्कुल सही उचित समय है। साथ ही किसान भाई, बात करें बैंगन टमाटर खरीफ प्याज और अजेती फूल गोभी की, जिसकी किसान भाइयों की पौध तैयार है तो वो इस समय पौध की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही किसान भाई, मिर्च की बात

0: अवस्थाने कुछ बाबूला रोग की संभावना हो सकती है, अगर दिखाई देने पर इसके नियंत्रण है क्यों का पच्चीस पानी गोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई बैंगन और टमाटर में तना छेदक और फल छेदक की संभावना हो सकती है, सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु निरोनाकोन 1 लीटर दवा को 500 से 600 लीटर पानी गोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई पशुपालन की बात करें तो जैसा की तापमान में वृद्धि देखी जा रही है तो इस समय पशुओं को दिन के समय छायादार स्थान पर या हवादार और छायादार स्थान पर बांधे, साथ ही दिन में 2 से 3 बार पानी पिलाएं और आवश्यकता अनुसार सुबह अथवा शाम को इनको नहलाएं। और साथ ही किसान भाइयों क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है और इस समय जो खुरपका का मौका पका जो बीमारी हुई है उसका अधिक संभावना रहती है तो उसके बचाव हेतु अभी से उसका टीकाकरण कराएं। साथ ही किसान भाई मुर्गियों में परजीवी से बचाव हेतु तुफराजिन दवा अनुसार पिलाएं। इसी के साथ आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र रैना से मैं डॉक्टर हरबिंद सिंह।
1: भैया देखो अभी आप सुन रहे थे आंचलिक अनुसंधान केंद्र मुरैना से डॉक्टर हरबिंद सिंह को, उनका उन्होंने भाई अच्छी जानकारी दी कि अभी देखो अभी वर्षा कुछ दिन रुकी भई है और जो उनको बुआई वाई को काम भी करने हैं तो भैया वो भी अपने जल्दी से निपटा लें। तो भैया आप सुन लेते हैं बाबूलाल कुशवाहा और उनके संगे साथी उनके स्वर में जो उन्होंने सो लोकगीत।

भैया देखो, हरियाली कौन को अच्छी नहीं लगता है। हर कोई चाहता है कि भैया अपने आसपास हरियाली हो, पेड़ पौधा हो, और इससे भैया अपना मन भी प्रसन्न रहता है और अपना जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, वह भी अच्छा रहता है। लेकिन भैया हरियाली के लाने प्रयास भी अपन को करने हैं। कहीं के अपन देखा था कि अपने आसपास अगर गाँव में कोनो जगह खाली पड़ी है अपनी पंचायत के आसपास, तो भैया बस काय को सीजन आन बारो है। और इस समय में भैया अगर अपन बीज रोप दें ज़मीन में, तो भैया वे अपने आप बारिश के मौसम के बाद छोटे छोटे पौधा पेड़ भी बन सकते हैं, अगर थोड़ी सी अपन देखभाल कर लें तो। इसे अपने को आसपास को हरियाली को बढ़ाने में अपन मदद भी कर सकते हैं। तो हम तो आपसे यही कहें कि बसकाए के मौसम के अपन को पेड़ लगाना चाहिए और पर्यावरण को बचाने को प्रयास करना चाहिए। कहे कि बिना हरियाली के भैया अपना जीवन बहुत मुश्किल भी हो सकता है। कहे कि जो अपनी प्राणवायु ऑक्सीजन है भैया, वो अपन को पेड़न से ही मिलते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो ऑक्सीजन अपन को देते हैं, उससे अपना जीवन सुखमय होता है। तो ई के लाने अपने आसपास अगर अपन को खाली जगह दिख रही है, मेड़न के आसपास, पंचायत में, गांव में कोनो खाली जगह है, तो अपन उतने बीज जरूर रोपें और उन पौधन को भैया बारिश के बाद थोड़ा सा और देखभाल करें, तो वह पेड़ पौधा भी बन सकत में पौधा आगे पेड़ बन सकते हैं और ई से भैया अपन को मदद मिल सकते हैं। ई लेकिन छोटे थोड़ा श्रमदान अगर अपन कर लें, तो भैया अपन हरियाली को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब भैया देखो, बतकाओ तो और भी करें, पहले सुन लेते हैं संदेश।

0: भैया अभी आपने सुना बादाम सिंह और उनके संगे साथी इनके स्वर में जो 900 लोकगीत। भैया हमको जा लोकगीत से कुछ सीखने भी है। भैया अपन को अपने बेटा बेटी में कोनों प्रकार को भेदभाव बिल्कुल नहीं करने हैं। अब तो भैया स्कूल भी खुल गए हैं, जैसे अपन अपने बेटा को पढ़ावे को प्रयास करते हैं, तो हम तो आपसे यही कहें कि अपनी बिटिया को भी अपन को शिक्षा देने हैं। भैया कहते हैं ना, बेटा तो पढ़ लिख के भैया एक कुल को नाम रोशन कर रहा था, लेकिन बेटी अगर पढ़ लिख जाए तो भैया वो दोनों कुल को नाम रोशन कर देते हैं। तो अपन को अपनी बेटी को घर के कामकाज के, जो कहते हैं ना कि घर के कामकाज जरूरी हैं, वे भी जरूरी हैं, लेकिन भैया शिक्षा पे सबको समान आँखें। अपन को अपने घर में अगर लड़का बेटिया दोनों हैं तो उनको स्कूल भेजने हैं और उनको उच्च शिक्षा दिलवावे को प्रयास करने हैं, जिससे कि वे पढ़ लिख के आगे बढ़ें। आजकल तो भैया बेटी का नहीं कर रही है, आज बेटी डॉक्टर है, इंजीनियर है, अंतरिक्ष में तक बेटी पहुँच गई है। हर काम में भैया वो समाज में अपना योगदान दे रही है और पुरुष के कंधा से कंधा मिला के आगे भी बढ़ रही है। ये सब कुछ हो सका था भैया शिक्षा के द्वारा। तो हमें अपनी बिटिया को उच्च शिक्षा दिलाने हैं, वो आगे बढ़े इको प्रयास करने हैं, और बेटा बेटी में जो भेद है वो अपन को बिल्कुल मन से निकालने हैं। अपनी जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी ना भैया, कि बेटा बेटियाँ उनको समान नहीं समझने हैं, बिल्कुल अपन को सोच त्याग देने हैं। बेटी और बेटा भैया दोनों ही एक हैं, उनको अपन को बराबर शिक्षा देने हैं, बराबर उनको बढ़ावे को प्रयास करने हैं। तो भैया आप सुन लेते हैं अंशना सक्सेना के स्वर में जो 900 लोकगीत।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

भैया देखो अभी आप सुन रहे थे जौन नौ सौ लोकगीत, और भैया देखो स्टूडियो की घड़ी भी हमको इशारा कर रहे कि हमें अपने सभी श्रोता भैयान से लेने आए पिता। तो चलत हैं सभी श्रोता भैयान को प्रेमचंद भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: कार्यक्रम सुर्खियों में इसके अंतर्गत सुनिए भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी के विस्तार से व्यापार प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन की यात्रा पर हैं। वो स्पेन के साथ साथ फिनलैंड और बेल्जियम की भी यात्रा करेंगे और भारत और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने, व्यापार बढ़ाने, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। हमारे साथ शरद कोहली जी मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। शरद जी, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत और यूरोप के संबंधों में काफी बदलाव आया है। अगर हम 10 सालों की बात करें, दोनों के बीच जो व्यापार है वो 80% से ज्यादा बढ़ा है। अब आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? क्या आपको लगता है कि यह रिश्ता पारंपरिक व्यापार से भी आगे बढ़कर एक व्यापक रणनीतिक और प्रौद्योगिकी साझेदार का रूप ले रहा है?
2: नमस्कार हर्ष, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। पहले तो मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में भारत और EU के बीच जो संबंध है उन्होंने एक नई शक्ल ली है, क्योंकि हम यूरोप को देखें तो 27 नेशंस को मिला के EU बनता है, और पिछले कुछ वर्षों में आप पन्ने पलट कर देखें तो उसमें EU की जो आर्थिक रफ्तार रही है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं रही। वहां पर उनकी अपनी समस्याएं थी, आर्थिक उनका एजिंग पॉपुलेशन थी, लोग बुजुर्ग हो रहे थे, वर्कफोर्स की दिक्कत थी, मार्केट उतनी ग्रो नहीं कर रही थी। चाइना ने वहां पर अपना एक तरह से वर्चस्व जमाया हुआ था। चाइना से जो सामान आता है यूरोप में वो काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आता है, इसलिए यूरोप में ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं लग रही थी। यूरोप में बहुत सारे देशों में ऐसा देखा जा रहा था कि भाई अब जब चाइना से सामान आ जाता है तो यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। तो वहां भारतीय सामान, हालांकि भारत का काफी विस्तार हुआ है अगर हम द्विपक्षीय व्यापार को देखें या भारत के सामान को वहां देखें, पर अभी वो जो कटिंग एज थी भारत के सामान पे वो आनी बाकी थी। तो मुझे लग रहा है ये जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के डेलिब्रेशन चल रही है, TTC जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए हमारे माननीय कॉमर्स मिनिस्टर वहां पर गए हुए हैं, इसको अब एक नया, और 27 जनवरी को ये हमारा साइन हुआ था जो यूरोप के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई थी। और हम सब जानते हैं कि 27 देश मिलके यूरोपियन यूनियन बनता है, हर एक की अपनी पार्लियामेंट है, हर एक का अपना एक प्रोसीजर है। 27 में से 20 तो यूरो मानते हैं करेंसी को, बाकी के जो 7 देश हैं उन्होंने अपनी अपनी करेंसीज रखी हुई हैं। ये भी स्वतंत्रता यूरोपियन यूनियन का जो चार्टर है वो देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वो देता है। तो हर एक देश की अपनी प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा। तो मुझे लग रहा है इस साल के अंत तक या 2027 के शुरू तक ये सारे क्लियरेंसेस हो जाएंगे और इसकी पूरी पुख्ता शक्ल निकल के आएगी। और बहुत बड़ा फायदा मुझे लगता है हर्ष होने वाला है, क्योंकि आप अगर आबादी के लिहाज से देखें तो लगभग 450 मिलियन की, 45 करोड़ के आसपास की यूरोप की आबादी है। अगर मैं GDP को देखता हूँ, सारे देशों को जोड़ दूं, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जो लोग शायद जानते नहीं होंगे, लैटविया है, लिथुआनिया है, लक्समबर्ग है, माल्टा है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, बाकी आप जर्मनी फ्रांस वगैरह तो सब जानते हैं, इटली इनको जानते हैं, पर उस 27 में बहुत सारे देश आ जाते हैं। $20 trillion की हर्ष वहां पर टोटल GDP अगर हम ऐड करें तो बन जाती है। तो बहुत बड़ी मार्केट भारतीय सामान के लिए है। इधर यूरोप से जो भारत सामान आता है उसमें भी यूरोप भारत को एक बहुत बड़ी मार्केट देख रहा है। आज भारत की जो मिडिल क्लास है वो अमेरिका की पॉपुलेशन से दुगनी है। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी विश्व में इतनी बड़ी मार्केट एक ब्लॉक को मिलेगी एक साथ। तो दोनों देशों के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों देश इसके पूरक एक तरह से देखे जाने चाहिए।
1: बिल्कुल, अगर हम कुछ डेटा की बात करें शरद जी, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो व्यापार था 2025 में, पिछले साल, वो तकरीबन 118.4 अरब यूरो का रहा था, और EU ने भारत से लगभग 69.5 अरब यूरो का पूरा आयात किया था, लेकिन भारत को लगभग 48.9, आप 50 अरब यूरो कह सकते हैं कि भारत ने निर्यात किया था, यानी कि भारत ट्रेड सरप्लस में था, हम इसे कह सकते हैं। और हमने अभी एक आंकड़े का और जिक्र किया था कि पिछले एक दशक की अगर बात करें तो दोनों पक्षों के बीच, यानी यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच, 80% से ज्यादा वस्तु व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इस संदर्भ में शरद अगर देखें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, इनकी स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड यात्रा को कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए भारत और यूरोप आर्थिक संबंधों के संदर्भ में?
2: बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि ये 27 देश हैं, हर देश का स्वचालित है, हर देश की अपनी पार्लियामेंट है, हर देश के अपने इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से उनको क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं। तो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो, एक तो देखिए आप यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक बात करते हैं, पर हर देशों की अपने अपने कंसर्न्स हैं। तो वो फिनलैंड जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं, तो वहां जो कंसर्न्स हैं उनको वो दूर कर रहे हैं, और हर देश से भी नेगोशिएशन बनती है और पूरे ब्लॉक के साथ भी नेगोशिएशन बनती है। तो ब्लॉक के साथ इन प्रिंसिपल नेगोशिएशन हो चुकी,

0: ये वो फाइनल हो चुका है। अब जहां जहां थोड़े से अंग्रेजी में एक शब्द होता है ट्विक्स, जहां जहां थोड़े थोड़ी लूज एंड्स है उसको बांधना है, कहीं उनको कोई स्पष्टीकरण चाहिए किसी विशेष वस्तु पर, अगर उनको उनको सफाई चाहिए कि भाई आपको किस तरीके से आप उसको भेजेंगे, किस रेट पे ये बनता है, क्या क्वालिटी होती है, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं। और क्योंकि अगर आप आइटम्स देखें, हर्ष आपने भी बात करी, और मैं आपको ये बता दूं जो आपने आंकड़े बताए कि यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक भारत का इस समय सबसे बड़ा गुड्स के मामले में ट्रेड पार्टनर है, वरना हम चाइना अमेरिका से भी काफी व्यापार करते हैं, पर अगर गुड्स के मामले में आप देखें, खाली मर्चेंडाइज जिसको हम कहते हैं, तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अभी से है, और इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की पूरी के पूरा कयास है, ये सारा एफर्ट हो रहा है। तो मैं आपको आइटम्स की बात कर रहा था, मुझे लग रहा है बहुत जरूरी हो जाता है जिक्र करना, क्योंकि हमारे जो श्रोता एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट लाइन में है या जो एक्सपोर्ट की लाइन में आना चाहते हैं, ये जान के 93% बल्कि हमारा सामान वहां पर अब टैरिफ फ्री हो जाएगा, वो ये जानना चाहेंगे कि कौन से क्षेत्र के वो एक्सपोर्टर्स हैं जिनको इसको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं कुछ सेक्टर्स का नाम यहां पर लेना चाहूंगा हर्ष, उसमें टेक्सटाइल्स है, अपैरल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल्स है, केमिकल्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मरीन प्रोडक्ट जिसमें भारत की बहुत महारत हाथिर है, भारत का बहुत बड़ा एक कोस्टल एरिया है, लेदर गुड्स है, और इसमें एग्रीकल्चरल प्रोसेस गुड्स भी हैं जो कि सिलेक्टेड कैटेगरीज में वहां जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई जब हमारा ये ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है तो क्या भारतीय किसानों को इसमें कोई नुकसान होगा, क्योंकि यूरोप तो कृषि के लिए भी बहुत सारे यूरोप के ऐसे ऐसे हैं जहां कृषि में प्रोड्यूस होता है। इस एग्रीमेंट में भी पूरा ध्यान रखा गया है कि हमारे किसानों का हित कहीं पर भी प्रभावित नहीं होगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और यही जब एग्रीमेंट की फाइनल रूपरेखा निकल के आएगी, हालांकि एग्रीमेंट साइन हो चुका है, पर इंडिविजुअल देशों के साथ, जो देशों के साथ होगा, उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं भी कृषि क्षेत्र को कोई आंच नहीं आने वाली है। हर्ष,
1: और यहां हम अपने श्रोताओं के लिए यह भी बता दें कि भारत वहां से क्या क्या आयात करता है यूरोप से, आपने बहुत सारी वो चीजें बताई जो कि भारत के निर्यातक वहां निर्यात कर सकते हैं, और भारत जो आयात करता है उसमें भी मशीनरी कुछ है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, मेडिकल खास तौर पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ केमिकल्स वहां से आते हैं, हम आयात करते हैं। शरद, आपने अभी बात की FTAs की, FTA के बाद और आराम हो जाएगा हमारे निर्यातकों को, जो टैरिफ है एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं क्या, कुछ बाधाएं भी मौजूद हैं क्या, थोड़ा विस्तार से इसको बताएं कि अगर कुछ बाधाएं हैं तो क्या है और कैसे उनसे निपटा जा सकता है।
0: जी हाँ, देखिए जो भी ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, और यही चैलेंजेस की वजह से आपको जो हमारे मंत्री वहां जा रहे हैं उन चैलेंजेस को वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक उस पर समन्वय बन पाए उस पर बनाया जाए। और दो तीन चीजें मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल उठाया है। देखिए अभी तक चाइना का जो वर्चस्व था यूरोपियन यूनियन में, वो कीमत के मामले में हम उनको हर चीज में कॉम्पीट नहीं कर पाते थे, ये हमें स्वीकार करना होगा, वहां से सामान सस्ता बन के आता था, और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी खराब होती थी, चाइना में हर तरीके का सामान बनता है। तो दो मानक पहले मैं लूंगा यहां पर, एक मैं लूंगा क्वालिटी का, दूसरा मैं लूंगा प्राइसिंग का, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में, मुझे लग रहा है अब हमारे एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को ये दो चीजों पर ध्यान देना होगा, एक तो क्वालिटी, क्योंकि यूरोप के जो अलग अलग देश हैं, जैसा मैंने कहा हर देश में नियम अलग हैं, हर देश में जो पैमाने हैं सामान को एक्सेप्ट करने के, इस्तेमाल करने के, वो अलग अलग हैं। तो एक्सपोर्टर्स जिस भी इन 27 नेशंस के ब्लॉक में भेजेंगे उनको उस देश के जो जो ये पैमाने हैं उनको दिमाग में रख के चलना होगा, और सबसे ज्यादा ध्यान, जो मैंने शुरू में दो बात कही, कि क्वालिटी और प्राइस पर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हम चाइना से कॉम्पीट कर रहे होंगे। अब इस टैरिफ के हटने के बाद, 93% सामान पे टैरिफ हटने के बाद, हमारा जो सामान है वहां प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, इसका मतलब कीमतों के मामले में हम चाइना से कुछ कुछ आइटम तो ऐसे होंगे हम बेहतर हो जाएंगे। तो अगर यहां पर अगर हम क्वालिटी को भी हम अप टू द मार्क रखते हैं, क्वालिटी को हम बिल्कुल उच्चतम रखते हैं, और दूसरी तरफ हम कीमत कम रखते हैं, तो मुझे लग रहा है वो जो चाइना प्लस वन पॉलिसी है, मुझे लगता है वो जगह हम धीरे धीरे ले पाएंगे। आज हम कुल अगर निर्यात देखें अपने देश का हर्ष, तो $850 billion से ऊपर हम पहुंच चुके हैं, इसको इस साल तक 2027 तक $1 trillion ले जाने का हमारे माननीय जो मंत्री हैं उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो मुझे लग रहा है ये जो FTA हैं ये उस ओर कदम हमारे ले जाएंगे, क्योंकि यहां से आपका निर्यात बढ़ेगा और यहां से जो टैरिफ लगने की वजह से जो सामान महंगा हो जाता था वो अब वो महंगाई उस सामान में से हट जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहां से जो एक्सपोर्ट जाएगा और हमें जो एक्सपोर्टर सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम को, वो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि उस देश की क्वालिटी के हिसाब से वो सामान को बनाएंगे। बाकी जो एनवायरनमेंट कंसर्न्स हैं वो तो ध्यान में रखना ही होगा, उसके बिना तो वो सामान को वहां आने ही नहीं देंगे। तो देखिए, सरकार का काम होता है हर्ष एनेबलर का, यानी कि सरकार आपको एक माहौल बना के दे दीजिए। अब इसका जो लाभ उठाना है, वो लाभ उठाना तो लोगों के हाथ में, लाभ उठाना तो बिजनेस कम्युनिटी के हाथ में, लाभ उठाना एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी के हाथ में। दूसरी एक जरूरी बात मैं हर्ष इसमें जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि हम इसको कोऑपरेशन को खाली हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चश्मे से हमें नहीं देखना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट है, जैसे एक देश से दूसरे देश में जो निवेश आएगा वो भी इस एफटीए के बाद आसान हो जाएगा। अच्छा, प्रोफेशनल सर्विसेज जो देनी होती है, भारत तो सर्विसेज के लिए जाना जाता है, आपको पता है भारत का तो बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी का सर्विसेज से बनता है और हमारा लोहा दुनिया मानती है खासकर आईटी सर्विसेज में, वहां पर भी उसका भी इसमें जिक्र होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बहुत सारी होती है दोनों देशों से, वो भी इस एफटीए में शामिल की जाएगी। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात आती है, उसका भी जिक्र आएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत ने जब महारत हासिल करी है वो डिजिटलाइजेशन में हासिल करी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब फाइनल रूपरेखा इसकी निकल के आएगी, जब ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उसमें भारत के जो डिजिटल स्ट्रेंथ है उसका जरूर जिक्र आएगा। और पीपल टू पीपल रिलेशंस हो गए, भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं वहां जाके काम करते हैं उनके वीजा की प्रक्रिया सरल हो जाएगी, यूरोप से लोग यहाँ आके जब जरूरी होगा काम कर पाएंगे, भारत के लोग वहां जाके काम कर पाएंगे। एफटीए का जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम होता है हर्ष बहुत बड़ा होता है, इसका जो पूरा घेराव होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। जी
1: बिल्कुल शरद, आपने चीन की बात की और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, यूरोप लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम हो और जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं जिसकी आपने बात की, इसको किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जाए। यानी कि अब यूरोप की जो कोशिशें थी इसमें भारत की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है।
0: बिल्कुल, भारत की बहुत बहुत बड़ी भूमिका होगी और यूरोप का भारत के साथ इस प्रकार आके पूरे के पूरे ब्लॉक का, मुझे लगता है इतने सारे देश एक साथ आके भारत के साथ, इसको आप दूसरे नजरिए से देखें तो, अब यूरोपियन यूनियन अगर मैं इसको ना बोलूं तो 27 देश एक साथ आके भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? उनको भारत की मार्केट दिख रही है और वो चाइना के अलावा एक और चेन खड़ी करना चाहते हैं। हमारे साथ और देश हैं, इसमें वियतनाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबलाइजेशन का और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत तरक्की करी है। भारत की, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है, सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल देश भी भारत है, यानी कि जहां यूथ जो है बड़ा कुछ करके दिखाना चाहता है, तो मुझे लग रहा है अब वो समय आ गया है, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां से भारत के एक्सपोर्टर्स अब विश्व की तरफ देखने लगेंगे। जो मैं तो आह्वान करना चाहूंगा हर्ष, आज इस शो के माध्यम से
1: जी,
0: उन बिजनेसमैन का जिन्होंने आज तक कभी एक्सपोर्ट नहीं किया है, मैं समझता हूं ये एफटीए को और आज आपकी हमारी इस बातचीत के जरिए उनको ये समझ में आएगा कि ये एफटीए मात्र एक डिस्कशन की चीज नहीं है, एक श्रोताओं को बताने की चीज नहीं है, एक समझने की चीज है कि आप किस प्रकार उस मार्केट की ओर देख सकते हैं, अपने सामान को वहां ले जा सकते हैं जो आज तक आपने कभी नहीं देखा। आज आप यूरोप के साथ व्यापार कर सकते हैं, यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध बना सकते हैं और उसमें कमाई कर सकते हैं, लोगों को नौकरियां, देखिए दोनों तरफ इसके होने के बाद दोनों तरफ नौकरियों में इजाफा दिखाई देगा, क्योंकि जो नए यूनिट्स लगेंगे, जिस सामान की यूरोप को जरूरत है उसकी यहां फैक्ट्रियां लगेंगी, उसमें लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो कुल मिला के जो आर्थिक विकास है उसमें बहुत बड़ा ये इंजन का काम करेगा।
1: कुल मिलाकर एक बहुत बड़े इंजन का काम करेगा आर्थिक विकास की दिशा में। शरद कोहली जी, आपका आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: शुक्रिया, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी के विस्तार से व्यापार, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया यह गीत फिल्म ब्रह्मचारी से। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में सुनिए फिल्म पेइंग गेस्ट का ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना और संगीत है एस डी बर्मन का।

सपन चक्रवर्ती और आरडी बर्मन की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गोलमाल से। गुलजार का लिखा यह गीत, संगीत था आरडी बर्मन का। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म अमर अकबर एंथनी से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह ने। आनंद बख्शी का रचा हुआ यह गीत है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। मजरू का लिखा गीत, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों देखिए लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की

0: प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौते के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
3: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पोल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
4: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
5: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
6: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local populations. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and

0: दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए ये बात दोहराई कि भारत आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज बिला रुकावट नकलो हमल और तजारती सरगर्मियों की हिमायत करता है।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: भारत ने आज आबनाई हुरमुज से गुजरने के दौरान दो बहरी जहाजों एमटी अलबहिया और एमटी मुंबासा पर हमलों पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। इन दोनों बहरी जहाजों में मजमूई तौर पर 46 अफराद सवार थे, जिनमें 30 भारतीय मल्लाह भी शामिल हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली में ईरान के सिफारतखाने के मिशन के नायब सरबराह को आज सुबह वजारत की जानिब से तलब किया गया था।
1: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है, और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है, और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उस सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पे जो भी हमला हुआ है वो सबसे ज्यादा नाविकों की, हमारे देश की लोगों की जान गई है।
0: पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में एहतजाजों पर सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में जारी एहतजाज उन इलाकों में पाकिस्तान के दहाइयों से चले आ रहे सिलसिलेवार इस्तेहसाल, बुनियादी हकूक फराहम न किए जाने और इंतजामिया के जुल्म और जबर का बराह रास्त नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी तिजारती मुआहदा CETA कल से नाफिज हो जाएगा। इस तारीखी मुआहदे के तहत बरतानवी बाजार में 99% महसूल तक भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई हासिल होगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए कॉमर्स के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी तिजारती मुआहदे को ये कहते हुए भारत के तिजारती सफर में एक फैसला कुन संगे मील करार दिया कि ये दो बड़ी मईशतों के दरमियान मुस्तकबिल पर मबनी इक्तिसादी शराकत दारी कायम करेगा। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि भारत बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी तिजारती मुआहदे का नफाज भारत के आलमी सतह पर मरबूत, लचकदार और मुसाबकती मईशत बनने के सफर में एक अहम कदम है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इस मुआहदे को अवाम पर मरकूज मुआहदे के तौर पर तैयार किया गया है, जिसके फवायद पूरे मुआशरे को हासिल होंगे। CETA और DCC के एक साथ निफाज से भारतीय बरामदात के लिए अहम इम्कानात पैदा होंगे। भारतीय बरामदकारों को मुख्तलिफ शोबों में बरतानिया के महसूल मुकम्मल तौर पर खत्म होने से फायदा होगा। डिब्बाबंद खुराक पर 70% तक, समंदरी अशिया पर 21% से ज्यादा, इंजीनियरिंग साजो सामान और मोटर गाड़ियों के कलपुर्जों पर तकरीबन 18%, चमड़े और फुटवेयर अशिया पर 16% तक, टेक्सटाइल और कपड़ों पर तकरीबन 12% तक जो महसूल था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इससे बरतानिया के बाजार में भारतीय बरामदकारों की मुसाबिकती सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। किसानों, माहीगीरों, MSMEs और मैन्युफैक्चरर्स के लिए नए इम्कानात पैदा होंगे और आलमी वैल्यू चेन में भारत की पोजीशन मुस्तहकम होगी। दिल्ली से अमन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बड़ी पॉलिसी इसलाह का ऐलान करते हुए कहा है कि अब जरई खाद रिवायती बंद डब्बों की बजाय खसूसी तौर पर डिजाइन करदा कंटेनर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट की जाएगी। भारतीय रेलवेज की जदीदकारी से मुतालिक इसलाहात पर आज नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने उड़ने वाली राख यानी फ्लाई एश के ट्रांसपोर्ट में भी बड़ी इसलाह का ऐलान किया, जिसके तहत इसे खुले रेलवे वैगन्स के बजाय खसूसी तौर पर डिजाइन करदा कंटेनर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। रेलवे के वजीर ने मजीद कहा कि कंटेनर पर मबनी नए निजाम से लोडिंग, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान होने वाली धूल की आलूदगी में कमी आएगी। जनाब वैष्णो ने कंटेनर पॉलिसी के तहत मरबूत लाइसेंस निजाम का भी ऐलान किया।
3: अभी तक क्या चैलेंज आता था रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

दोस्तों अभी आप रेखा विशाल भारद्वाज की आवाज में गजल समाप्त फरमा रहे थे और कलाम था बशीर बद्र साहब का। बशीर बद्र उर्दू अदब के वो मुनफरिद मुअम्मार हैं जिन्होंने गजल को रिवायती गुलो बुलबुल और जुल्फ रुखसार के हिसार से निकाल कर एक नई जिंदगी बख्शी। उन्होंने गजल में ऐसे लफ्जों को दाखिल किया जिन्हें पहले गैर शायराना समझा जाता था, जैसे पुलोवर, रिबन, रेल और ग्लास। डॉक्टर गोपी चंद नारंग ने उनके फन को सराहते हुए ठीक ही कहा था। बशीर बद्र ने पोएट्री में नई बस्तियां आबाद की हैं। उनकी तख्लीकात जैसे इकाई, इमेज, आमद, आस, आसमान, आहट गजल के जदीद सफर के वो संगे मील हैं जिन्होंने उर्दू गजल और उर्दू दाद तबके को भी अपना गुरवेदा बना लिया। उनकी इसी अदबी खदमात के एतराफ में अदबी और सकाफती इदारों ने उन्हें मुतादिद एजाजात और अवार्ड से नवाजा। उनमें से उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और बिहार उर्दू एकेडमी के एजाजात के अलावा हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री जैसे आला अवार्ड से नवाजा और 1999 में उनके शेरी मजमुए आस पर उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड भी दिया गया। उनका विजन इतना दूरस्थ था कि उन्होंने 1984 में ही अपनी किताब आमद में 2035 के कारीन के नाम एक खत लिखा जिसमें ये दावा किया कि उनका उसलूब आने वाले अहद की गजल की बुनियाद बनेगा। उनके बदले हुए लहजे की एक झलक उनके अशार में मुलाहिजा कीजिए। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, ना कहा हुआ ना सुना हुआ। बशीर बद्र ने इंसानी रिश्तों की नफसियात को जिस तरह समझा वो उनके अशार से जाहिर है जो आज ज़बाने ज़ादे आम है, जैसे कि ये शेर। ये ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, जो कोई दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। और जिंदगी की जद्दोजहद को इस तरह बयान करते हैं इस शेर में, देखिए। रेल की पटरी पर मेरी शोहरत रख दी, बस के पहियों से रोजी रोटी बांधी। दोस्तों हम बशीर बद्र के बारे में और मजीद मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है ये गजल मुश्ताक हुसैन की आवाज में और कलाम है बशीर बद्र साहब का।

दोस्तों अभी आप बिहारी लाल राव की आवाज़ में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था बशीर बद्र साहब का। दोस्तों सफर जिंदगी के आखिरी तवील अयाम डॉक्टर बशीर बद्र ने झीलों के शहर भोपाल में अपनी दूसरी शरीक हयात डॉक्टर राहत सुल्तान के साथ गुजारे। वक्त का सितम देखें कि वो शायर जिसने करोड़ों दिलों को लफ्जों की रोशनी दी, आखिरी बरसों में अल्जाइमर जैसे मर्ज का शिकार होकर अपनी ही याददाश्त खो बैठा। उन्हें ये तक याद ना रहा कि कभी उनकी मौजूदगी मुशायरों की कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। बिलाखिर 28 मई 2026 को उर्दू गजल का ये एहसास शायर हमेशा के लिए खामोश हो गया। बशीर बद्र जिस्मानी तौर पर हम में नहीं है, लेकिन उनका ये फलसफा कि मोहब्बत में एहतियात जरूरी है हमें हमेशा याद रहेगा। जैसा कि उनका ये शेर, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। उनकी शायरी इंसानी रिश्तों की नज़ाकत को कुछ इस तरह इस शेर में बयान करते हुए दिखाई देती है। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। वो अपनी यादें हमारे पास छोड़ गए हैं, जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज बशीर बद्र की याद में ये प्रोग्राम उनके इस शेर पर खत्म करते हैं जो उनकी जिंदगी और फन का निचोड़ है। आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, जिसके होते हुए होते थे जमाने मेरे। बशीर बद्र की जिंदगी और फन पर मबनी ये खसूसी पेशकश यहाँ इख्तिताम पजीर होती है। उनके लफ्ज हमेशा जिंदा रहेंगे क्योंकि सच्ची शायरी कभी नहीं मरती। हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय और तजावीज हमें जरूर रसाल करें क्योंकि आपकी आवाज़ कहकशा की रोशनी है। हमारा पता नोट फरमाइए, उर्दू प्रोग्राम कहकशा, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, शामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। उर्दू प्रोग्राम कहकशा को बरोज मंगल रात 9:30 बजे सुनना ना भूलें। अब अपने दोस्त शीरिन खान को दीजिए इजाजत।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
0: आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। रात्रि के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म हाथ की सफाई से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

गीत सुनिए फिल्म इश्क इश्क इश्क से। इस गीत को आवाजें दी हैं किशोर कुमार और आशा भोसले ने, संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म खेल खेल में से। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, गुलशन बावरा का लिखा गीत और आर डी बर्मन का संगीत।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है

फिल्म दीवार का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में, साहिर के लिखे बोल और आर डी बर्मन का संगीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ें हैं। संतोष आनंद के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं दोस्त फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, फिल्म दोस्त के सी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए राग मालकौंस पर श्रुति अधिकारी का संतूर वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे श्रुति अधिकारी का संतूर वादन, राग था मलकौंस।
1: नसनसनी नसनसनी नसनसनी ना उत्तेजना ना उत्तेजना नशोर दिन रात नशोर दिन रात नशोर दिन रात नहीं अहंकार केवल मनोरंजन ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग

0: इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने 2 प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
2: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
1: India also expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement, FTA, concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiations.

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:51 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।